0: मने उस रीच से पराधीन होकर के, रीच की कस्टडी में वह विद्यमान है और गुफा से बाहर का उसे कोई पता नहीं, गुफा से बाहर का कुछ, लेकिन फिर भी वहां पर गुफा के अंतर्गत अज्ञान से जो है पराधीन होते हुए और उस आत्मड़ी से खेल रही। इसलिए आप जब जागृत में आते तो क्या कहते हो, बड़े सुख से सोया और कुछ भी कुछ नहीं जाना, ये अज्ञान की पराधीनता थी। और जो सुख हो रहा था वो किसका था, आत्ममणि का सुख था। और वहां पर ये दोनों, तो वहां पर हमारे जो अंतःकरण की वृत्ति सुसुप्ति अवस्था में होती है वो अज्ञान से आवृत होती है, लेकिन अज्ञान से आवृत होते हुए भी उसका आत्मा के साथ में तादात्म्य होता है, और आत्मा के साथ में तादात्म्य होने के कारण इंद्रियों से तादात्म्य हट जाने से, मन से तादात्म्य हट जाने से वह है क्या है, उस आत्मा के ही आनंद का अनुभव। जैसे वहां मणि के प्रकाश में वह खेलती, वैसे ही वह वृत्ति भी आत्मा के आनंद में, आत्मा के प्रकाश में, तो आत्मा के प्रकाश में क्या प्राप्त होगा, आत्मानंद ही प्राप्त होगा, आत्मानंद का वहां अनुभव करती है। ये है सुसुप्ति अवस्था, है ना। और भगवान फिर क्या करते, तो आगे कहते हो कि उस रीच को जगाते, और रीच को जगाते हैं तो भगवान से उसका क्या होता, का युद्ध होता है, है ना। और युद्ध होता है तो बाहर के लोग भाग आते और सिला और रख देते, लेकिन जो है भगवान का युद्ध होता है, और युद्ध होते होते फिर क्या कहते हैं आगे, कहा फिर जामवान उनको पहचान लेता, और पहचान लेता है तो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। पहले हार स्वीकार नहीं करता, अज्ञान भी पहले हार स्वीकार नहीं करता, तो हार स्वीकार कर लेता, और हार स्वीकार करके क्या करता, जिसको अपने अधीन कर रखा था, जिसे अपने अधीन कर रखा था, अब उसे क्या करता, कहा उन्हीं को समर्पित, मणि भी उन्हीं को दे देता है, और मणि पर भी अधिकार उन्हीं का, और वृत्ति को अर्थात उस कन्या को भी, और भगवान फिर उस मणि और कन्या को लेकर के पुनः आते हैं, हैं, और तब क्या करते हैं? उस सत्राजित को देते हैं। लेकिन अब सत्राजित की समझ में आ गया तो सत्राजित क्या करता, उस मणि को भी दे देता है, और मणि को ही नहीं देता, अपनी कन्या सत्यभामा, ये कौन है, नाम भी शास्त्र बड़े शोध करके रखता है ना। तो अपनी वृत्ति को जो सत्य का ही प्रकाश करने वाली है, जो सत्य का ही अनुसरण करने वाली है, ऐसी जो वृत्ति है उस वृत्ति को किसको कर दी, दे दिया, का सत्य को ही दे दिया। आत्मा क्या है, सत्य, भगवान क्या है, सत्य है, उनको ही अर्पित कर दिया। पहले नहीं किया था, पहले तो उस वृत्ति पर भी अपना काबू था, मणि पर भी अपना काबू था, है, लेकिन जब दे दिया तो फिर क्या हुआ, तो सत्राजित भी सुखी हो गया और सारा संसार भी सुखी हो गया, है ना। तो अब यहां कहने का तात्पर्य क्या, भगवान भी गीता आदि शास्त्र में यही तो कहते हैं, मई एव मन आधत्स्व, मई बुद्धिम, मेरे में ही मन को लगा दे, मेरे में ही बुद्धि को लगा दे। लेकिन अभी बुद्धि और मन को हम कहां लगाए हैं, संसार में। हम समझते हैं कि ये जागृत अवस्था को लेकर के मैं हूं, इंद्रियों से संबंध लगा हुआ, इंद्रियों को लेकर के हम सामर्थ्यवान अपने को समझ रहे हैं, ज्ञानवान समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रकाश जो है इंद्रियां करने में समर्थ, इंद्रियां भी उस आत्ममणि को लेकर के ही करने में समर्थ हैं, और बगैर उसके प्रकाश संभव नहीं। ऐसे उस आत्मा का ज्ञान कब होता है, जब इन तीनों अवस्थाओं का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रारूप क्या है, और यही वहां भागवत में बतलाया, उनको जब हम समझ लेते हैं तो फिर हमें जो, जिसे हम चतुर्थ कहते हैं, तुरीय कहते हैं, उस तुरीय का बोध होता है। और जैसे ही तुरीय अवस्था का बोध होता है तो वहां पूर्णता आ जाती है, और जहां पूर्णता आ जाती है तो क्या होता, फिर लोक व्यवहार में भी वो सुखी हो जाता, किसी को जीवन मुक्त भी कह देते हैं। और फिर जो प्रारब्ध आदि की जो कल्पना की गई उसके बाद जो है, फिर उसको क्या कहते हैं, का विदेह मुक्त भी कह देते हैं। ये स्थिति होती, लेकिन ये स्थिति कब होती है, तो ये तभी होती है जैसे वह मन भी है, सिंह भी मर गया, इंद्रियां भी मर गई, अर्थात इनको हम परास्त करते चल जाए, इनके हम पराभूत न हो, और इनके पराभूत होकर के अंत में जो अज्ञान है उसके पराभूत भी न हो, उसको भी जो है हम कर दें, हरा दें, पराभूत कर दें, तब जाकर के क्या होता है, कहने लगे तब वो वृत्ति जो आत्मड़ी से वहां खेल रही थी, तब वह अज्ञान नहीं रहेगा, तब वह जागृत में भी उसका सुख ले सके, जागृत में भी उसका सुख उसे मिलेगा। ये संकेत वहां पर किया गया और ये प्रकाश आता है। ऐसे ही जितने भी हमारे अवतार हैं ना, वो कैसे हैं, वो इन अवस्थाओं को एक खेल समझते हैं, अवस्थाओं को धारण करने वाले और खेल समझते हैं, उनके साधनों को भी समझते हैं, लेकिन मूल वस्तु क्या है इस चीज को वो जानते हैं और खेल करते हैं, लेकिन जहां पर अज्ञान से पराभूत हो जाते हैं, इसलिए लोग गाते हैं ना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना बन गया देह में ही दीवान, खेल में खेलता दुख नित झेलता ना अघाना है, मृग तृष्णा के जल में नहाना है, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जी है। तो ये सच्चिदानंद प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन इन्हीं अवस्थाओं को लेकर के इनमें जब वह इनका अतिक्रमण नहीं कर पाता है, इनसे परे जो चतुर्थ रूप है उस तक पहुंचता नहीं है, तब तक इन अवस्थाओं में लेकर के सुखी दुखी होता रहता। ये अवस्थाएं उसका क्या है, तो कहने लगे उसकी यात्रा की स्टेशने हैं, है? लेकिन हम उन्हें स्टेशन न समझ करके मंजिल ही समझ, क्यों, वहां अज्ञान कारण है, और जब तक ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक ये उपनिषदों का सिद्धांत सिद्ध नहीं होता। ये संकेत किया, और इसलिए जो अवतार की बात की, तो जहां पर अवतारों की बात, तो भगवान राम जो है जब सारे के सारे क्रियाकलापों से निवृत्त होकर के अयोध्या में आ गए, और अयोध्या में आ गए तो क्या वहां लिखा, तो लिखा राम राज बैठे, भगवान राम राज पर बैठे तो क्या है, कहा हर्षित भये गए सब शोक, तीनों लोकों में क्या हुआ, प्रसन्नता हो गई, सारे शोकों की निवृत्ति हो, लेकिन कब हो गई, उन्हीं राम के विषय में क्या कहा, राम राज्य पर बैठे हुए भी क्या कहते हैं, सारी सभा को एकत्रित करते हुए क्या कहा, जो अनित कछु भाखो भाई तो मोय वरजो भय विसराई, यदि मैं नीत से हटकर के कोई भी कार्य करता हूं, यथा नियम से हटकर के कोई भी कार्य करता हूं, तो जो है मुझे बगैर भय के आप जो है रोक सकते, और आजकल यदि ऐसा कह दो, यदि आक्षेप भी कर दो तो पिट जाओ है, और जो है बंद कर दो तुम पर ही उल्टे आरोप और आ जाएंगे, तो ये जब होता तब जाकर के वहां राम राज्य होता, तब वहां सुख होता। इसलिए ही ये जो आज का पर्व है इसको भी थोड़ा संकेत कर, पर्व क्या है, तो इतिहास ये भी कहता भगवान जब जो है अयोध्या में आ गए, राज्य पर बैठ गए, तब लोगों ने दीपावली मनाई, ये भी संकेत। कुछ कवियों ने ऐसी भी कल्पना की कि जब हम पराधीन थे तो उस पराधीनता से निवृत्त होने के लिए छायावादी रूप से हैं कविता लिखी, ऐसा भी संकेत किया। तो इस प्रकार से ये सब चर्चा की, लेकिन इसी के साथ साथ सारा संसार ही क्या है, गुलाम है, पराधीन है, उस पराधीनता से निवृत्त होने के लिए भी वो चर्चा की, और उसके लिए क्या कहा, तो कुछ लोग तो भजन गाते हैं, तो हमको गाना तो भाई नहीं आता है, लेकिन भजन याद है, भजन जो को सुना दें आप, लोग क्या गाते हैं, कहने लगे कहां जा रहा है ओ जाने वाले, अंधेरा है दिल में दिया तो जला ले, संकेत किया और आगे कहने लगे, यह जीवन सफर एक अंधा सफर है। और कहने लगे इतना ही नहीं, क्या है, कहा बहकना है मुमकिन, भटकने का डर है। संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहां जा रहा है ओ जाने, अंधेरा है दिल में दिया तो अब वो अंधकार कहीं अन्यत्र नहीं है, वो कहां है, कहा अब उसको तू जला लेगा तब तेरी यात्रा साफ होगी, नहीं तो भटक जाएगा, है बहक जाएगा। और संसार में यही तो हो रहा, क्योंकि ये जीवन का वहां भी संकेत किया, ये जीवन क्या है, एक यात्रा है। और इस यात्रा को करो, लेकिन कैसे करो, तो कहने लगे दीपक जला करके, अर्थात बुद्धि के अंतर्गत ज्ञान को धारण करके, बुद्धि हमारी प्रकाशमय हो, ज्ञानमयी हो, और फिर जब हम इस यात्रा को करेंगे तभी जो है हमारी यात्रा। और एक और संकेत किया, जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, जो गिरकर संभल जाए है जीत उसकी। जब तक जीवन में ठोकर नहीं आती तब तक इस संसार से हटकर के सोचने की इच्छा होती ही नहीं, सोचता ही नहीं कोई, संसार में ही रचा पचा रहता। सत्राजित ने भी कब विचार किया कि अब दे दो, भगवान तो पहले ही कह रहे कि मन मेरे को दे दे, मणि मेरे को दे दे, लेकिन नहीं। भगवान भी गीता में कहते मन मेरे को दे दे, बुद्धि मेरे को दे दे, लेकिन हम लोग दे पाते नहीं। हम भी भगवान को मानते तो अपनी बुद्धि के अनुसार मानते, अपनी कल्पना के अनुसार मानते, भगवान जैसा है उसने बुद्धि को समर्पित कर देना, ये सब हमसे होता, ये कब होता, कहने ठोकर खा, तो जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी। और कहने लगे ठोकर खाओगे तो गिरोगे, है क्योंकि संसार का स्वभाव क्या है, फिसलना, और जहां फिसलन होगी तो वहां गिरना भी होगा। तो क्या कहा, कहने लगे जो गिरकर संभल जाए है जीत उसकी। अब गिर तो गए, लेकिन गिरकर के पड़े पड़े रोते रहो तो बात नहीं, क्या करना है।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaiva Lahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Shaivam.org in Aanmeega Anbargalukku Vanakkam. நீங்கள் அடுத்ததாக கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவ கீர்த்தனைகள். பாடியிருப்பவர் பி கே பட்டம்மாள் அவர்கள். ஓம் நமச்சிவாய.

सर्वेशाय नमः सूर्यतापनाय नमः धर्मधाम्ने नमः क्षमाक्षेत्राय नमः भगवते नमः भगनेत्रज्ञे नमः उग्राय नमः पशुपतये नमः तार्क्ष्याय नमः प्रियभक्ताय नमः प्रियंवदाय नमः दात्रे नमः दयाकराय नमः दक्षाय नमः कपर्दिने नमः कामशासनाय नमः श्मशाननिलयाय नमः तिष्याय नमः श्मशानस्थाय नमः महेश्वराय नमः लोककर्त्रे नमः भूतपतये नमः महाकर्त्रे नमः।

नमः स्वस्तिदाय नमः सुधाम्ने नमः धात्रीधाम्ने नमः धामकराय नमः सवर्गा

नमः मखद्वेषिने नमः विष्णुकन्धरपातनाय नमः वीतदोषाय नमः अक्षयगुणाय नमः अन्तकारये नमः पूषदन्तभिदे नमः धुर्झटये नमः खण्डपरशवे नमः सकलाय नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तब विरोचन क्या करता है? इंद्रियों से दिखाई पड़े. हर व्यक्ति यही कहते हैं. तो इंद्रियों से क्या दिखाई पड़ता है? तो यही स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है सर्वत्र. सभी को या तो जड़ पदार्थ, संसार के पदार्थ दिखेंगे, और या फिर ये शरीर दिखेगा. तो वे लोग पत्थर को तो भले ही भगवान न माने, शरीर को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि उनको ये भ्रांति है. क्योंकि जो चलने फिरने वाला, बोलने वाला है, देखने सुनने वाला है, वही आत्मा हो सकता है. और वे लोग ये मानते हैं कि ये सब काम करने वाला शरीर है, पत्थर नहीं है, इसलिए शरीर ही आत्मा है. सबसे पहले इस चार बाग देहात्मवादी चार बागों का पक्ष को यहां रखा है. लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब क्रमश से सबका खंडन करने के बाद कहा भ्रांता वृषमवादिना, ये सब भ्रांत हैं. किसके द्वारा भ्रांत हैं? माया शक्ति विलास कल्पित महाभ्रांत हैं ये. तो उस माया के जो शक्ति विलास शक्ति है, उसके द्वारा ये भ्रांत हुए होने के कारण व्यामोह हुए हैं, व्यामोह को प्राप्त हुए हैं. भ्रांत ही इसलिए व्यामोह को प्राप्त हुए हैं, इसलिए शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं. इसको कहते हैं संसार का अध्यास. जैसे लोहे के गोले को आग कह देता है कोई, तो लोहे का गोला लोहा ही होगा, आग तो हो नहीं सकता है. अग्नि अलग चीज है, लोहा अलग चीज है, लेकिन अग्नि के संसर्ग से उसमें उष्णता आ जाने मात्र से लोग कहते हैं कि अग्नि का गोला है. गोला ये गोल ये आकार अग्नि की नहीं हो सकती, अग्नि निराकार है. फिर भी लोहे का जो आकार है, उस आकार में अग्नि का संचार होने के कारण भ्रांत होकर लोग कह देते हैं कि अग्नि का गोला है. और लोग कह देते हैं कि ये लोहे का गोला लाल है, जबकि लोहा लाल नहीं हो सकता है. लाल ये अग्नि का धर्म है. अग्नि के लालपना को लोहे के गोले में आरोप करके लोहे का गोला लाल है कह देते हैं. अग्नि की उष्णता को लोहे के गोले में आरोप करके लोहे का गोला गर्म है कह देते हैं. और लोहे के गोले के गोलापना आकार को अग्नि में आरोप करके अग्नि का गोला कह देते हैं. अग्नि गोल नहीं हो सकता, लोहा गर्म नहीं हो सकता. अग्नि गोल नहीं हो सकता, लोहा लाल नहीं हो सकता. फिर भी भ्रांति, इसको कहते हैं संसर्ग अध्यास, अन्योन्य अध्यास. एक का धर्म दूसरे में और दूसरे का धर्म दूसरे में आरोप करके और दूसरे को दूसरे रूप में मान लेना, इसी को अध्यास है. चैतन्य की छाया, जिस छाया से युक्त हुआ हुआ, चैतन्य की तो बात ही छोड़ दो, चैतन्य की छाया का स्पर्श हुआ है. और छाया भी शरीर में नहीं पड़ सकता है, ये ध्यान देना. कूटस्थ का प्रतिबिंब अन्नमय कोष में नहीं पड़ता है. जैसे आपकी आपका प्रतिबिंब दीवारों में नहीं पड़ सकता है, इसी तरह कूटस्थ का परमात्मा का प्रतिबिंब छाया देह में नहीं पड़ सकता है. जैसे आपके शरीर का प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ सकता है, इसी तरह परमात्मा के प्रतिबिंब तो सूक्ष्म शरीर अंतकरण में पड़ सकता है, स्थूल शरीर में नहीं पड़ता है। लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नजदीक होने के कारण स्थूल में पड़ा हुआ परमात्मा की चित छाया को अंतकरण के संपर्क से स्थूल शरीर में भ्रांति से दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। वेदांत का रहस्य है, शरीर को चैतन्य मानने का और कोई कारण नहीं है, शरीर को चैतन्य मानने का और कोई कारण नहीं, एक ही कारण है। शरीर चैतन्य होकर चैतन्य माना गया नहीं है, शरीर मूल रूप में जड़ है और चैतन्य की छाया पड़ा हुआ है अंतकरण, वो अंतकरण के नजदीक स्पर्श में आने होने के कारण छाया का स्पर्श प्राप्त हुआ है। किसको? चित छाया का स्पर्श प्राप्त हुआ शरीर को, तो भ्रांति से शरीर चैतन्य जैसा लगने लगा है, और जो वस्तु जैसा लगता है वो वस्तु वैसा होता नहीं है, तत्व तो यह है, इसलिए भ्रांति कहते हैं। देहम, तो कुछ लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, और चार्वाक इसलिए है कि सब लोगों को यही अच्छा लगता है। शरीर को आत्मा मानकर यदि कोई कह दिया जाए, उपदेश किया जाए, तो सबको यही अच्छा लगता है। शरीर को आत्मा मानने वाले के उसकी प्रशंसा करने लगे, तुम तो बड़े गोरे हो, क्या नाक फूल जाता है उसका, तुम तो बड़े सुंदर देख रहे हो, आज क्या बात है, तुम तो इतने सुंदर देख रहे हो, और क्या प्रसन्न होता है वो। और कोई कह दे कि अरे तुम तो आज तो बहुत बेकार के लग रहे हो, चेहरा भी काला नजर आ रहा है, तुम बड़े क्या बात है इत्यादि, जब उसको कह दिया जाता है तो बड़ा दुखी होता है। तो देह को आत्मा मानने वाले, देहम, देह ही आत्मा, इसी की सेवा करो, ये ठीक तो सब कुछ ठीक, ये खुश तो सब ठीक। ले जी, तो सुबह से उठकर शाम तक इसी की पूजा होती है। शंकराचार्य जी ने एक जगह विवेक चूड़ामणि में लिखा है, सवाकारम यावत भजति मनुजस्तावद सुचि। मनुष्य सुबह से शाम तक किसका भजन करता है, किसका पूजन करता है? सवाकार, सबकी पूजा करता है। सुबह उठा कि सबसे पहले है क्या करता है? पूजा में तो ये षोडशोपचार होते हैं ना, पादयो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, यही ना है, मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि। पंडित जी ने कहा मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि, मध्य पान समर्पयामि, अर्थ कर दिया, बीच बीच में जल भी चढ़ाते जाओ, मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि, और उसका संयुक्त शब्द जोड़ कर क्या किया, मध्यपानम समर्पयामि, मध्यपान समर्पण करो, किसको? सब जी को, सब पूजा में यही तो होता है, पहले उठते ही पय समर्पयामि, पय प्रतिभ्याम पयोगदी को। अब आजकल तो पय तो है ही नहीं है, तो क्या है, तो पहले चायम समर्पयामि। तो हमने कहा चाय क्यों पीते हो तुम लोग, बोले चारे भाई ये चाय भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, चाय के रूप में मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य हृदि चाहम सन्निविष्ट, सभी के हृदय में चाय के रूप में मैं विराजमान हूं। गीता बिल्कुल सार्थक है आज के युग में, भगवान और के रूप में हृदय में रहे न रहे, चाय के रूप में तो सबके हृदय में है। इसीलिए सभी लोग कहते, शंकराचार्य जी ये कहते थे, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद आत्मतत्त्वम्, प्रातः काल उठते ही मैं उस हृदय में अवस्थित उस आत्मतत्व का मैं स्मरण करता हूं। और हम भी वही करते हैं, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद चाय तत्त्वम्, उठते ही पहले हृदय में स्फुरित होने वाला उच्चार का ही स्मरण करते हैं। तो ये सब क्या है, तो सवाकारम यावत भजति, सभी लोग सब पूजा करते हैं। और ये नियम है, वो जिसकी तुम निष्ठा से पूजा करोगे वो एक दिन न एक दिन प्रसन्न होगा, प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होने पर वही चीज देगा जो उसके पास देने की क्षमता होगी। जो भी प्रसन्न होगा तो वही चीज देगा जो उसके पास देने की क्षमता होगी, और देने की क्षमता यदि उसके पास नहीं होगी तो वो नहीं देगा, चाहे कितने प्रसन्न हो जावे। भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, वह उस भक्त को वो जो चाहता है वो दे देंगे, क्योंकि उनके पास देने की क्षमता है। वो यदि संसार वैभव और भोग चाहता है तो वो भी तथास्तु कह देंगे, देने की क्षमता है, दे देंगे वो। और वह भोग नहीं चाहता है तो निवृत्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो वो भी तथास्तु दे देंगे। भोग मोक्ष दोनों ही दे सकते हैं भगवान शिव, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। और ये जो सब है, तुम जीवन भर इनकी साधना करो, सेवा करो, ये अंत में प्रसन्न होगा तो क्या देगा वो, तो वही देगा जो इसके पास है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ये तो क्योंकि ये सब के रूप में ही परिणत होना है, अभी भी सब है। सवाकारम यावत, क्योंकि मरे हुए मुर्दे के आकार में और इस आकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरने के बाद कोई कोई कहते हैं नाक टेढ़ी होती है, आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं कोई पता नहीं, यहां तक कह देते हैं कि नाक टेढ़ी हो जाए तो मरने का लक्षण है, ये भी कहते हैं। मरने से पहले ही यदि नाक टेढ़ी हो गई तो समझ लो ये मरने का लक्षण है। एक और मरने से पहले नाक टेढ़ी होगी तो मरने के बाद कहीं सीधी होगी ना, तो कोई कहते हैं कि मरने के बाद और जिंदे में यह फर्क है कि जब तक जिंदा है नाक सीधी रहती है, जब मर जाता है तो नाक टेढ़ी होती है। पता नहीं, आप लोग तो शमशान क्रिया किया होगा कई बार, और अपने तो सन्यासी हुए इसलिए किसी को शमशान में ले जाना नहीं है। हां, ले तो जाते हैं, नीलधारा विसर्जन कर देते हैं, लेकिन नाक पर कभी ध्यान नहीं दिया है हमने। अब की बार ध्यान देंगे, हो कई ऐसी मौसम, आप भी ध्यान देना, आपके जीवन में तो आता ही रहता है ना। कोई आकार प्रकार में ना कान बदल जाता है ना नाक बदल जाता है, सवाकारम, जैसा आकार है वैसे आकार। तो सवाकारम यावत भजति मनुज तावत असुचि, जब तक देह की उपासना करता रहेगा वो शुद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देह कभी भी शुद्ध ही नहीं है, अशुद्ध है। इसीलिए तो अविद्या के लक्षण करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अशुचिषु अनात्मेषु आत्मख्याति, अपवित्र में पवित्रता की ख्याति, अनात्मा में आत्मा की ख्याति, अनित्य में नित्यत्व की ख्याति, यही अविद्या है। तो असुचि अपवित्र देह में पवित्र आत्मभाव, यही अविद्या का लक्षण है, और इसी की उपासना करते हैं तो ये अंत में क्या देता है, बहुत प्रसन्न हो गया तो ये सब बना देगा, मूर्धा बना देगा, क्योंकि सवाकार हम यावत भजति मनुजस्तावत असुचि, परेभ्य स्यात् क्लेश जनन मरण व्याधि निलयम्। जन्म और मृत्यु इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण शरीर जितना भी प्रसन्न होगा तुम्हें मृत्यु ही देगा, और ये शरीर चाहे जितने ही प्रसन्न होगा तुम्हें जन्म देगा, क्योंकि इसके पास यही दो धर्म है, जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है। जो जिसके पास जो धर्म है वही धर्म से युक्त होगा और वही भाव प्रकट करेगा। तो चार्वाक ये शरीर को आत्मा मानते हुए सभी को ये कहते हुए फिरते हैं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तब ये लोग क्या कहते हैं, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, उनको विश्वास है शरीर तो फिर भी आएगा, पता नहीं ये दूसरे का अन्न दोबारे मिले चाहे न मिले, ये तो मौका है। ये चार्वाक सिद्धांत है। देहम, कुछ लोग चार्वाक का ही कुछ सुधारवादी हैं, वे हैं चार्वाक, उस सुधारवादी चार्वाक है। शरीर को आत्मा, शरीर को चैतन्य, शरीर को परम तत्व मानना न चाहने वाले जो विचारक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, प्राण आत्मा हो सकता है, क्योंकि जीवन भी तब तक सार्थक है जब तक प्राण है, प्राण रहते हुए ही सब कुछ है, शरीर प्राण के रहित शरीर रहते हुए भी वह चल नहीं सकता है, और प्राण का संचार हो जाए तो चलने लगता है। तो शरीर की अपेक्षा प्राण ही ज्यादा चैतन्य है, इसलिए प्राण ही आत्मा है, ऐसा मानने वाले दूसरा पक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण आत्मा नहीं है, क्योंकि प्राण जड़ है, गहरी निद्रा के अवस्था में जब पहुंचते हैं व्यक्ति तो प्राण संचार करता हुआ भी कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और सारे ज्ञान का एक ही साधन इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा हो सकती हैं, इसलिए इंद्रिय आत्मावादी, बहुत लोगों को यह भ्रांति है, इन्हें इंद्रिय ही आत्मा है। और लोग भी कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैं कह रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इसमें नमक है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, किसको पता चला, मुझे पता चला। आप लोग सब ये व्यवहार करते हो कि नहीं, तो ये सारे के सारे चीज इंद्रियों को लेकर है, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है मानने वाले बहुत हैं। देहम प्राणमपि इंद्रियान्यपि चलाम, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती, जागृत में ही इंद्रियां अपने अपने गोलक में रहकर विषय को ग्रहण करती हैं, लेकिन जब सोते हैं स्वप्न देखते हैं स्वप्न अवस्था में इंद्रियां तो लीन हो जाती हैं, फिर मन ही सब कुछ करता है। इसलिए कहते हैं कि मैं आज बहुत सुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, हर व्यक्ति मन को मैं कहता हुआ व्याख्या करता है, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म है और उसी मन को मैं मान रहा है, इसका मतलब मन ही आत्मा है। आज मेरी आत्मा ठीक नहीं है, और तुम्हारी आत्मा क्या ठीक नहीं होगी, मन ठीक नहीं है, लेकिन कह देते हैं कि मन को ही आत्मा मानकर मेरी आत्मा ठीक नहीं है, आज उसने ऐसा कहा कि बस मेरा, मैं बहुत दुखी हूं, और तुम क्या दुखी हो, मन दुखी है, तुम तो उस दुख के साक्षी हो, लेकिन इस बात को न जानने वाले व्यक्ति मन को ही मैं कह देता है। उसी को चलाम, अति चलायमान जो मन है यही आत्मा है। बुद्धिम च शून्यम विदुः, चलाम का अन्वय बुद्धि के साथ भी कर लेना, सुरेश्वराचार्य जी ने यह अन्वय किया है। मन भी चलायमान है, बुद्धि भी चलायमान है, क्योंकि क्षण क्षण में अलग अलग वृत्ति बन जाना यही उसकी चलायमानता है, यही उसका विचलन है। आप अनुभव करते हैं कि आपका मन एक रूप में रहता है सुबह से शाम तक, इसी का नाम चलायमान है, चलम। और बुद्धि भी चल है, क्योंकि हर क्षण में अलग अलग वृत्ति बनती है। घट देखा तो घटाकार बन गया, तो पट देखा पटाकार बन गया, मठ देखा तो मठाकार बन गया। जो दृश्य सामने आया तत्त दृश्य अनुरूप वह वृत्ति के रूप में परिणत हो जाना, इसी को चलायमान कहा है, इसको क्षणिक विज्ञान मान कहते हैं। ये बुद्ध का ही एक पक्ष है, क्षणिक विज्ञान वा, क्षणिक विज्ञानात्म। देहं प्राणम् अपि इन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः। और बुद्ध का ही एक और पक्ष है, बुद्ध में चार हैं, चार पक्ष हैं बुद्ध का, समयाचार, मध्यंदिन, मध्यमा, श्रोत्रांतरिक, वैभाषिक, ये बुद्ध के ही भेद हैं। ये लोग कोई क्षणिक विज्ञानवाद मानते हैं, कोई आत्मख्याति मानते हैं, कोई अनात्मख्याति मानते हैं, और एक बुद्ध का ही एक पक्ष है कि शून्य आत्मवाद, सारे के सारे जगत का मूल कारण शून्य है, अभाव है, अभाव से भाव की उत्पत्ति, शून्य से जगत की उत्पत्ति, असत से जगत की उत्पत्ति, पहले नहीं था वो नहीं था इससे जगत की उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं शून्यवादी। सुषुप्ति अवस्था में शून्यवाद का अनुभव होता है, न किंचित अवेदिशम, कुछ भी भान न होना, यही मूल उसका शून्यात्मवाद का उदाहरण है। सुषुप्ति अवस्था में इसका अनुभव होता है। देहं प्राणम् अपि इन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः। इस प्रकार के भ्रांत समाज में कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, और शंकराचार्य जी किस आशय से कह रहे हैं, इसको राजनीतिक नहीं बना लेना, बात समझ रहे हैं ना? मैं आप लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, शंकराचार्य जी जिधर संकेत कर रहे हैं। स्त्री बालांध जड़ोपमास्त्वहमिति भ्रांता वृषमवादिनः। ये लोक व्यवहार में भी दिख रहा है वो, इसलिए अन्यथा नहीं लेना। शरीर के श्रृंगार में शरीर आत्मवाद का भाव पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा दिखता है। लौकिक व्यवहार में आप बूढ़े हो गए इसलिए आपको ऐसा ना लग रहा हो, नहीं तो महिलाएं ऐसे हैं कि उनके हर मणिबैग में एक छोटा सा मिरर होगा ही होगा। वो मिरर का क्या होगा उचित है भाई, है उसमें मिरर का क्या मतलब है? ऐसी कोई औरत नहीं मिलेंगे जो एक छोटा सा मिरर अपने साथ में लेकर न चलती हो, लेकिन ऐसे बहुत से पुरुष हैं जो कभी भी जेब में मिरर लेकर नहीं चलते। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? मिरर किसको दिखा रहा है, है? आत्मा को दिखाता है मिरर। वो क्या आत्मदर्शन करने के लिए मिरर लेके चलते हैं? और कोई महिला हो और उसके कमरे में खाने पीने का सब कुछ दे दो, पहनने का भी बढ़िया दे दो, लेकिन उसको कह देना कि तुम कभी भी दर्पण नहीं देखना, मिरर नहीं देखना, तो उसके लिए इतना बड़ी सजा हो जाएगी, उसको तिहाड़ जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको भले खाने पीने का कुछ साधन न दो, भले खिचड़ी दे दो, आम के फजी तो दे दो, पहनने का खूब ज्वेलरी दे दो, अलग अलग आइटम, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आकृति के मैचिंग, देख लो, बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी, सब कुछ उसके कमरे में रख दो, और फुल साइज का मिरर रख दो, वो भी दो दो तीन तीन, है, लेफ्ट साइड में भी एक मिरर, फ्रंट में एक मिरर, राइट साइड में और दूसरा मिरर, क्या आनंद है। खाने के लिए तुमको बस फजी तो और खिचड़ी मिलेगा तो राजी हो जाएगी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये लौकिक, ये अनुभव में आ रहा है उसको लेकर शंकराचार्य ने ये किया है। ये कहना उनका आशय नहीं है कि स्त्री समझदार नहीं होती, ये कहने का आशय नहीं है। देह के प्रति ज्यादा लगाव होने के कारण ही यहां शंकराचार्य जी ने उनका स्मरण किया है। इसको अन्यथा राजनीति नहीं कर लेना। तो शंकराचार्य जी ने स्त्री की निंदा क्यों की करके कल फिर झंडा लेकर खड़े नहीं हो जाना। स्त्री बालांध जड़ो, जैसे बालक बच्चे हैं वो बात समझते नहीं है और छोटे छोटे बात पर ही विवाद करते हैं और कागज के नोट बनाकर खरीदारी करते हैं, पत्थर के बीवी बनाकर शादी करते हैं, पत्थर के बच्चे बनाकर दोनों को दूध पिलाते हैं, गोद में लेते हैं। गुड़िया से खेलने वाले कौन है बोलो? गुड्डा गुड़िया से खेलने वाले कौन? बच्चे। समझते नहीं है वो। इस अर्थ में स्त्री बालांध जड़, अंधा व्यक्ति, जड़ व्यक्ति, ये लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सब में अहम अहम करते हैं। जैसे स्त्री शरीर में अहम करती है तभी उसको याद्यास होता है, तभी हर समय में फुर्सत हुई, फुर्सत भी न हो तो भी उबारो उबारो हूं आऊं सुभाष, फिर अंदर जाएगी, फिर दर्पण के आगे खड़ी होगी, पति बाहर बुलाता रहेगा, मोड़ो थी गयो, उबारो उबारो हूं आऊ छू बस, फिर दर्पण के आगे खड़ी होगी। आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला ये है? तो समय 35 हो गया, फिर लेट होगा भाई, इसकी पूरी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री आत्मानंद गिरिजी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: तब विरोचन क्या करता है? इंद्रियों से दिखाई पड़े, हर व्यक्ति यही कहते हैं। तो इंद्रियों से क्या दिखाई पड़ता है? तो यही स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है सर्वत्र सभी को। या तो जड़ पदार्थ, संसार के पदार्थ दिखेंगे, और या फिर ये शरीर दिखेगा। तो वे लोग पत्थर को तो भले ही भगवान न माने, शरीर को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि उनको ये भ्रांति है। क्योंकि जो चलने फिरने वाला, बोलने वाला है, देखने सुनने वाला है, वही आत्मा हो सकता है। और वे लोग ये मानते हैं कि ये सब काम करने वाला शरीर है, पत्थर नहीं है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। सबसे पहले इस चार बाग देहात्मवादी चार बागों का पक्ष को यहां रखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब क्रमश से सबका खंडन करने के बाद कहा भ्रांता वृषमवादिना, ये सब भ्रांत हैं। किसके द्वारा भ्रांत हैं? माया शक्ति विलास कल्पित महाभ्रांत हैं ये। तो उस माया के जो शक्ति विलास शक्ति है उसके द्वारा ये भ्रांत हुए हुए होने के कारण व्यामोह हुए हैं, व्यामोह को प्राप्त हुए हैं। भ्रांत ही इसलिए व्यामोह को प्राप्त हुए हैं, इसलिए शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। इसको कहते हैं संसार का अध्यास। जैसे लोहे के गोले को आग कह देता है कोई, तो लोहे का गोला लोहा ही होगा, आग तो हो नहीं सकता है। अग्नि अलग चीज है, लोहा अलग चीज है, लेकिन अग्नि के संसर्ग से उसमें उष्णता आ जाने मात्र से लोग कहते हैं कि अग्नि का गोला है। गोला ये गोल ये आकार अग्नि की नहीं हो सकती, अग्नि निराकार है। फिर भी लोहे का जो आकार है उस आकार में अग्नि का संचार होने के कारण भ्रांत होकर लोग कह देते हैं कि अग्नि का गोला है, और लोग कह देते हैं कि ये लोहे का गोला लाल है, जबकि लोहा लाल नहीं हो सकता है। लाल यह अग्नि का धर्म है। अग्नि के लालपना को लोहे के गोले में आरोप करके लोहे का गोला लाल है कह देते हैं, अग्नि के उष्णता को लोहे के गोले में आरोप करके लोहे का गोला गर्म है कह देते हैं, और लोहे के गोले के गोलापना आकार को अग्नि में आरोप करके अग्नि का गोला कह देते हैं। अग्नि गोल नहीं हो सकता, लोहा गर्म नहीं हो सकता, अग्नि गोल नहीं हो सकता, लोहा लाल नहीं हो सकता। फिर भी भ्रांति, इसको कहते हैं संसर्ग अध्यास, अन्योन्य अध्यास, एक का धर्म दूसरे में और दूसरे का धर्म दूसरे में आरोप करके और दूसरे को दूसरे रूप में मान लेना, इसी को अध्यास है। चैतन्य की छाया, जिस छाया से युक्त हुआ हुआ, चैतन्य की तो बात ही छोड़ दो, चैतन्य की छाया का स्पर्श हुआ है, और छाया भी शरीर में नहीं पड़ सकता है, ये ध्यान देना। कूटस्थ का प्रतिबिंब अन्नमय कोष में नहीं पड़ता है, जैसे आपकी आपका प्रतिबिंब दीवारों में नहीं पड़ सकता है, इसी तरह कूटस्थ का परमात्मा का प्रतिबिंब छाया देह में नहीं पड़ सकता है, जैसे आपके शरीर का प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ सकता है, इसी तरह परमात्मा के प्रतिबिंब तो सूक्ष्म शरीर अंतकरण में पड़ सकता है, स्थूल शरीर में नहीं पड़ता है। लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नजदीक होने के कारण स्थूल में पड़ा हुआ परमात्मा की चित छाया को अंतकरण के संपर्क से स्थूल शरीर में भ्रांति से दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। वेदांत का रहस्य है, शरीर को चैतन्य मानने का और कोई कारण नहीं है, शरीर को चैतन्य मानने का और कोई कारण नहीं, एक ही कारण है। शरीर चैतन्य होकर चैतन्य माना गया नहीं है, शरीर मूल रूप में जड़ है, और चैतन्य की छाया पड़ा हुआ है अंतकरण, वो अंतकरण के नजदीक स्पर्श में आने होने के कारण छाया का स्पर्श प्राप्त हुआ है। किसको? चित छाया का स्पर्श प्राप्त हुआ शरीर को, तो भ्रांति से शरीर चैतन्य जैसा लगने लगा है, और जो वस्तु जैसा लगता है वो वस्तु वैसा होता नहीं है, तत्व तो यह है, इसलिए भ्रांति कहते हैं। देहम, तो कुछ लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, और चार्वाक इसलिए है कि सब लोगों को यही अच्छा लगता है, शरीर को आत्मा मानकर यदि कोई कह दिया जाए, उपदेश किया जाए, तो सबको यही अच्छा लगता है। शरीर को आत्मा मानने वाले के उसकी प्रशंसा करने लगे, तुम तो बड़े गोरे हो, क्या नाक फूल जाता है उसका, तुम तो बड़े सुंदर देख रहे हो, आज क्या बात है, तुम तो इतने सुंदर देख रहे हो, और क्या प्रसन्न होता है वो। और कोई कह दे कि अरे तुम तो आज तो बहुत बेकार के लग रहे हो, चेहरा भी काला नजर आ रहा है, तुम बड़े क्या बात है इत्यादि, जब उसको कह दिया जाता है तो बड़ा दुखी होता है। तो देह को आत्मा मानने वाले, देहम, देह ही आत्मा, इसी की सेवा करो, ये ठीक तो सब कुछ ठीक, ये खुश तो सब ठीक। ले जी, तो सुबह से उठकर शाम तक इसी की पूजा होती है। शंकराचार्य जी ने एक जगह विवेक चूड़ामणि में लिखा है, सवाकारम यावत भजति मनुजस्तावद सुचि, मनुष्य सुबह से शाम तक किसका भजन करता है, किसका पूजन करता है, सवाकार सबकी पूजा करता है। सुबह उठा कि सबसे पहले है क्या करता है, पूजा में तो ये षोडशोपचार होते हैं ना, पादयो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, है यही ना है, मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि, पंडित जी ने कहा मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि, मध्य पान समर्पयामि, अर्थ कर दिया बीच बीच में जल भी चढ़ाते जाओ, मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि, और उसका संयुक्त शब्द जोड़ कर क्या किया, मध्यपानम समर्पयामि, मध्यपान समर्पण करो किसको, सब जी को, सब पूजा में यही तो होता है, है? पहले उठते ही पय समर्पयामि, पय प्रतिज्ञा पयोगदी को, और आजकल तो पय तो है ही नहीं है तो क्या है, तो पहले चायम समर्पयामि। तो हमने कहा चाय क्यों पीते हो तुम लोग, बोले चारे भाई ये चाय भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, हा? चाय के रूप में मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य हृदि चाहम सन्निविष्ट, सभी के हृदय में चाय के रूप में मैं विराजमान हूं। गीता बिल्कुल सार्थक है आज के युग में, है? भगवान और के रूप में हृदय में रहे न रहे, चाय के रूप में तो सबके हृदय में है, इसीलिए सभी लोग कहते, शंकराचार्य जी ये कहते थे प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद आत्म तत्त्वम, प्रातः काल उठते ही मैं उस हृदय में अवस्थित उस आत्म तत्व का मैं स्मरण करता हूं, और हम भी वही करते हैं, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद चाय तत्त्वम, उठते ही पहले हृदय में स्फुरित होने वाला उस चाय का ही स्मरण करते हैं। तो ये सब क्या है, तो सवाकारम यावत भजति, सभी लोग सब पूजा करते हैं, और ये नियम है, वो जिसकी तुम निष्ठा से पूजा करोगे वो एक दिन न एक दिन प्रसन्न होगा, प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होने पर वही चीज देगा जो उसके पास देने की क्षमता होगी, जो भी प्रसन्न होगा तो वही चीज देगा जो उसके पास देने की क्षमता होगी, और देने की क्षमता यदि उसके पास नहीं होगी तो वो नहीं देगा, चाहे कितने प्रसन्न हो जावे। भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, वह उस भक्त को वो जो चाहता है वो दे देंगे, क्योंकि उनके पास देने की क्षमता है। वो यदि संसार वैभव और भोग चाहता है तो वो भी तथास्तु कह देंगे, देने की क्षमता है दे देंगे वो, और वह भोग नहीं चाहता है तो निवृत्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है तो वो भी तथास्तु दे देंगे, भोग मोक्ष दोनों ही दे सकते हैं भगवान शिव, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। और ये जो सब है, तुम जीवन भर इनकी साधना करो, सेवा करो, ये अंत में प्रसन्न होगा तो क्या देगा, वो तो वही देगा जो इसके पास है। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम, ये तो क्योंकि ये सबके रूप में ही परिणत होना है, अभी भी सब है, सवाकारम यावत, क्योंकि मरे हुए मुर्दे के आकार में और इस आकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरने के बाद कोई कोई कहते हैं नाक टेढ़ी होती है, आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं, कोई पता नहीं, यहां तक कह देते हैं कि नाक टेढ़ी हो जाए तो मरने का लक्षण है, ये भी कहते हैं, मरने से पहले ही यदि नाक टेढ़ी हो गई तो समझ लो ये मरने का लक्षण है, एक, और मरने से पहले ही नाक टेढ़ी होगी तो मरने के बाद क्या सीधी होगी नाक, तो कोई कहते हैं कि मरने के बाद और जिंदे में यह फर्क है कि जब तक जिंदा है नाक सीधी रहती है, जब मर जाता है तो नाक टेढ़ी होती है, पता नहीं आप लोग तो शमशान क्रिया किया होगा कई बार, और अपने तो सन्यासी हुए इसलिए किसी को शमशान में ले जाना नहीं है। हाँ, ले तो जाते हैं, नीलधारा विसर्जन कर देते हैं, लेकिन नाक पर कभी ध्यान नहीं दिया है हमने। अब की बार ध्यान देंगे, हो कई ऐसी अब मौसम, आप भी ध्यान देना, आपके जीवन में तो आता ही रहता है ना। कोई आकार प्रकार में न कान बदल जाता है न नाक बदल जाता है, सवाकारम, जैसा आकार है वैसे आकार। तो सवाकारम यावत भजति मनुज तावत असुचि, जब तक देह की उपासना करता रहेगा वह शुद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देह कभी भी शुद्ध है ही नहीं है, अशुद्ध है। इसीलिए तो अविद्या के लक्षण करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अशुचिषु अनात्मेषु आत्मख्याति, अपवित्र में पवित्रता की ख्याति, अनात्मा में आत्मा की ख्याति, अनित्य में नित्यत्व की ख्याति, यही अविद्या है। तो अशुचि अपवित्र देह में पवित्र आत्मभाव, यही अविद्या का लक्षण है, और इसी की उपासना करते हैं तो ये अंत में क्या देता है, बहुत प्रसन्न हो गया तो ये सब बना देगा, मूर्धा बना देगा, क्योंकि सवाकार हम यावत भजति मनुजस्तावत असुचि, परेभ्य स्यात् क्लेश जनन मरण व्याधि निलयम। जन्म और मृत्यु इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण शरीर जितना भी प्रसन्न होगा तुम्हें मृत्यु ही देगा, और ये शरीर चाहे जितने ही प्रसन्न होगा तुम्हें जन्म देगा, क्योंकि इसके पास यही दो धर्म है, जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है। जो जिसके पास जो धर्म है वही धर्म से युक्त होगा और वही भाव प्रकट करेगा। तो चार्वाक ये शरीर को आत्मा मानते हुए सभी को ये कहते हुए फिरते हैं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तब ये लोग क्या कहते हैं, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, उनको विश्वास है शरीर तो फिर भी आएगा, पता नहीं ये दूसरे का अन्न दुआ

क्योंकि जीवन भी तब तक सार्थक है जब तक प्राण है। प्राण रहते हुए ही सब कुछ है, शरीर प्राण के रहित शरीर रहते हुए भी वह चल नहीं सकता है, और प्राण का संचार हो जाए तो चलने लगता है। तो शरीर की अपेक्षा प्राण ही ज्यादा चैतन्य है, इसलिए प्राण ही आत्मा है, ऐसा मानने वाले दूसरा पक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण आत्मा नहीं है, क्योंकि प्राण जड़ है। गहरी निद्रा के अवस्था में जब पहुंचते हैं व्यक्ति, तो प्राण संचार करता हुआ भी कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और सारे ज्ञान का एक ही साधन इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा हो सकती हैं। इसलिए इंद्रिय आत्मवादी बहुत लोगों को यह भ्रांति है, इन्हें इंद्रिय ही आत्मा है। और लोग भी कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैं कह रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इसमें नमक है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, किसको पता चला, मुझे पता चला। आप लोग सब ये व्यवहार करते हो कि नहीं? तो ये सारे के सारे चीज इंद्रियों को लेकर है, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है मानने वाले बहुत हैं। देहं प्राणमपि इंद्रियान्यपि चलाम। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती। जागृत में ही इंद्रियां अपने अपने गोलक में रहकर विषय को ग्रहण करती हैं, लेकिन जब सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न अवस्था में इंद्रियां तो लीन हो जाती हैं, फिर मन ही सब कुछ करता है। इसलिए कहते हैं कि मैं आज बहुत सुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। हर व्यक्ति मन को मैं कहता हुआ व्याख्या करता है, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म है, और उसी मन को मैं मान रहा है, इसका मतलब मन ही आत्मा है। आज मेरी आत्मा ठीक नहीं है, और तुम्हारी आत्मा क्या ठीक नहीं होगी, मन ठीक नहीं है, लेकिन कह देते हैं कि मन को ही आत्मा मानकर मेरी आत्मा ठीक नहीं है। आज उसने ऐसा कहा कि बस मेरा, मैं बहुत दुखी हूं, और तुम क्या दुखी हो, मन दुखी है, तुम तो उस दुख के साक्षी हो, लेकिन इस बात को न जानने वाले व्यक्ति मन को ही मैं कह देता है। उसी को चलाम, अति चलायमान जो मन है यही आत्मा है। बुद्धिम च शून्यम विदुहु। चलाम का अन्वय बुद्धि के साथ भी कर लेना, सुरेश्वराचार्य जी ने यह अन्वय किया है। मन भी चलायमान है, बुद्धि भी चलायमान है, क्योंकि क्षण क्षण में अलग अलग वृत्ति बन जाना यही उसकी चलायमानता है, यही उसका विचलन है। आप अनुभव करते हैं कि आपका मन एक रूप में रहता है सुबह से शाम तक, इसी का नाम चलायमान है, चलम। और बुद्धि भी चल है, क्योंकि हर क्षण में अलग अलग वृत्ति बनती है। घट देखा तो घटाकार बन गया, तो पट देखा पटाकार बन गया, मठ देखा तो मठाकार बन गया, जो दृश्य सामने आया तत्त दृश्य अनुरूप वह वृत्ति के रूप में परिणत हो जाना, इसी को चलायमान कहा है। इसको क्षणिक विज्ञान मान कहते हैं, ये बुद्ध का ही एक पक्ष है, क्षणिक विज्ञान वा, क्षणिक विज्ञान आत्मा। देहं प्राणम अपि इंद्रियान्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुहु। और बुद्ध का ही एक और पक्ष है, बुद्ध में चार हैं, चार पक्ष हैं बुद्ध का, समयाचार, माध्यंदिन, मध्यमा, स्रोत्रांतरिक, वैभाषिक, ये बुद्ध के ही भेद हैं। ये लोग कोई क्षणिक विज्ञानवाद मानते हैं, कोई आत्मख्याति मानते हैं, कोई अनात्मख्याति मानते हैं, और एक बुद्ध का ही एक पक्ष है कि शून्य आत्मवाद, सारे के सारे जगत का मूल कारण शून्य है।

0: अभाव है, अभाव से भाव की उत्पत्ति, शून्य से जगत की उत्पत्ति, असत से जगत की उत्पत्ति, पहले नहीं था वो नहीं था, इससे जगत की उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं शून्यवादी। सुषुप्ति अवस्था में शून्यवाद का अनुभव होता है, न किंचित अवेदिशम, कुछ भी भान न होना, यही मूल उसका शून्यात्मवाद का उदाहरण है। सुषुप्ति अवस्था में इसका अनुभव होता है। देहं प्राणमपि इन्द्रियान्यपि चलाम बुद्धिं च शून्यं विदुः। इस प्रकार के भ्रांत समाज में कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, और शंकराचार्य जी किस आशय से कह रहे हैं, इसको राजनीतिक नहीं बना लेना। बात समझ रहे हैं ना, मैं आप लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, शंकराचार्य जी जिधर संकेत कर रहे हैं। स्त्री बालांध जड़ोपमास्त्वहमिति भ्रांता वृषमवादिनः। ये लोक व्यवहार में भी दिख रहा है वो, इसलिए अन्यथा नहीं लेना। शरीर के श्रृंगार में शरीर आत्मवाद का भाव पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा दिखता है। लौकिक व्यवहार में आप बूढ़े हो गए इसलिए आपको ऐसा न लग रहा हो, नहीं तो महिलाएं ऐसे हैं कि उनके हर मणिबैग में एक छोटा सा मिरर होगा ही होगा। वो मिरर का क्या होगा उचित है भाई, है उसमें मिरर का क्या मतलब है? ऐसी कोई औरत नहीं मिलेंगे जो एक छोटा सा मिरर अपने साथ में लेकर न चलती हो, लेकिन ऐसे बहुत से पुरुष हैं जो कभी भी जेब में मिरर लेकर नहीं चलते। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? मिरर किसको दिखा रहा है, है? आत्मा को दिखाता है मिरर। वो क्या आत्मदर्शन करने के लिए मिरर लेके चलते हैं? और कोई महिला हो और उसके कमरे में खाने पीने का सब कुछ दे दो, पहनने का भी बढ़िया दे दो, लेकिन उसको कह देना कि तुम कभी भी दर्पण नहीं देखना, मिरर नहीं देखना, तो उसके लिए इतना बड़ी सजा हो जाएगी, उसको तिहाड़ जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको भले खाने पीने का कुछ साधन न दो, भले खिचड़ी दे दो, आम के फजी तो दे दो, पहनने का खूब ज्वेलरी दे दो, अलग अलग आइटम, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आकृति के मैचिंग, देख लो बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी, सब कुछ उसके कमरे में रख दो, और फुल साइज का मिरर रख दो, वो भी दो दो तीन तीन, है लेफ्ट साइड में भी एक मिरर, फ्रंट में एक मिरर, राइट साइड में और दूसरा मिरर, क्या आनंद है। खाने के लिए तुमको बस फजी तो और खिचड़ी मिलेगा तो राजी हो जाएगी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये लौकिक, ये अनुभव में आ रहा है, उसको लेकर शंकराचार्य ने ये किया है। ये कहना उनका आशय नहीं है कि स्त्री समझदार नहीं होती, ये कहने का आशय नहीं है। देह के प्रति ज्यादा लगाव होने के कारण ही यहां शंकराचार्य जी ने उनका स्मरण किया है। इसको अन्यथा राजनीति नहीं कर लेना। तो शंकराचार्य जी ने स्त्री की निंदा क्यों की करके कल फिर झंडा लेकर खड़े नहीं हो जाना। स्त्री बालांध जड़ो, जैसे बालक बच्चे हैं वो बात समझते नहीं है, और छोटे छोटे बात पर ही विवाद करते हैं, और कागज के नोट बनाकर खरीदारी करते हैं, पत्थर के बीवी बनाकर शादी करते हैं, पत्थर के बच्चे बनाकर दोनों को दूध पिलाते हैं, गोद में लेते हैं। गुड़िया से खेलने वाले कौन है बोलो? गुड्डा गुड़िया से खेलने वाले कौन? बच्चे। समझते नहीं है वो। इस अर्थ में स्त्री बालांध जड़, अंधा व्यक्ति, जड़ व्यक्ति, ये लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सब में अहम अहम करते हैं। जैसे स्त्री शरीर में अहम करती है तभी उसको याद्यास होता है, तभी हर समय में फुर्सत हुई, फुर्सत भी न हो तो भी हाँ उबारो उबारो हूं आऊं सुभाष, फिर अंदर जाएगी, फिर दर्पण के आगे खड़ी होगी। पति बाहर बुलाता रहेगा, मोड़ो थी गयो, उबारो उबारो हूं आऊं छू बस, फिर दर्पण के आगे खड़ी होगी। आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला ये है? तो समय 35 हो गया, फिर लेट होगा भाई, इसकी पूरी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज हिंदी स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन Nayanmar Puranam. The title is Kootruva Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum sunenge aur ek Dakshin Bharatiya sant ya Nayanmar ki kahani, jinka naam Kutaruvar hai. Prachin kaal mein Tamil Nadu ke Kalundai namak nagar mein ek bhumipati Kutaruvar rehte the. Unhone apne bahubal se kai rajaon ko yuddh mein haraya और कई छोटे भूपतियों को अपने अधीन कर लिया। इस भांति वे स्वयं राजा बन गए। उनके पास अपार धन संपदा ऐश्वर्य सब कुछ था, पर राजाओं द्वारा धारण किया हुआ मुकुट या किरीट नहीं था। कुटरुवर तिल्ले नगरी चिदंबरम के ब्राह्मणों के पास गए और अपने राज्याभिषेक का अनुरोध किया। तिल्ले के ब्राह्मणों ने उन्हें स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि वे चोल राजाओं के अतिरिक्त किसी को मुकुट नहीं पहना सकते। ब्राह्मणों ने इनकार तो कर दिया, पर राजा से दंडित होने के भय से वे चेर राज्य पलायन कर गए। चोल राज्य के योग्य मुकुट प्राप्त न होने पर शिव भक्त राजा कुटरुवर को शिवजी ने स्वप्न में अपने चरण कमलों से उनके शीश पर स्पर्श किया। उन्हीं चरण कमलों को शीश पर धारण कर वे उसी में संतुष्ट रहे और न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। कुटरुवर के पास चतुरंगिनी सेना थी, पर वे सदा त्रिशूलधारी शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करते थे। शिव सिद्धांत दर्शन में ईश्वर और मानव रूप से दो हैं, पर जब भक्त अपनी पूर्ण चेतना शिव के साथ जोड़ लेता है तो वास्तव में वे अनुभव के धरातल पर एक ही हो जाते हैं। कुटरुवर को जब रत्नजड़ित मुकुट धारण करवाने से तिल्लई के ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो उन्होंने न तो शक्ति प्रयोग किया और न ही न्याय का मार्ग छोड़ा। अपने प्रभु शिव के साथ तदात्म्य कर सेवा भावना से राज्य कार्य करने लगे। तमिलनाडु में तिल्लई ब्राह्मणों द्वारा परंपरा के अनुसार चेर चोल और पांड्य वंशों के राजाओं को ही मुकुट धारण करने का पात्र माना जाता है। अपनी नीति में दृढ़ता और प्राणों की चिंता न करते हुए स्पष्ट वचन कहने का उनका साहस प्रशंसनीय है। दूसरी ओर कुटरुवर के पास शक्ति थी, पर अपनी सहनशीलता और उदारता दिखाते हुए वे ब्राह्मणों को कोई क्षति या हानि नहीं पहुंचाए। इस कथा से यही परिलक्षित होती है, इसीलिए कुटरुवर एक महान संत या नायनमार माने जाते हैं। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय।
5: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
4: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Pugalchoda Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. दोस्तों, अभी हम एक वीर संतिया नायनमार की कहानी सुनेंगे, जिनका नाम पुगलचोलर है। अति प्राचीन काल में चोल वंश के नरेश पुगलचोलर एक निष्ठावान शिवभक्त राजा थे। उनकी राजधानी उरैयूर थी। केरिपत्तर नामक एक शिवभक्त ने जब शिव अपराध होने पर उनके हाथी की सूंड को काट दिया, तो हाथी का स्वामी स्वयं को मानते हुए उन्होंने अपने आप को दोषी माना और राजा ने अपनी तलवार एरिपत्तर को सौंप दी। पर एरिपत्तर राजा के हृदय में व्याप्त शिवभक्ति भावना को जानकर हाथी को सूंड को काटने के लिए स्वयं को ही दोषी मानने लगे। पुगलचोलर की दूसरी राजधानी कुरुवत थी। एक दिन महाराज ने उन छोटे राजाओं की सूची देखी जिन्होंने वार्षिक कर राशि नहीं दी थी। पर्वत प्रदेश मलयनाडु के एक राजा अधिगन की वार्षिक कर राशि बकाया थी। महाराजा को क्रोध आ गया। उन्होंने आदेश दिया, अधिगन की इतनी हिम्मत कि चोल साम्राज्य का इसका सामना करे, अभी आक्रमण करो और उनके किले को नष्ट कर दो। महाराज के आदेश के अनुसार घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अधिगन पराजित हो गए। उस युद्ध की प्रथा के अनुसार युद्ध में मारे गए योद्धाओं के सर राजा को दिखाए गए। इनमें से एक सिर पर जटाभार था और माथे पर शिव चिन्ह भस्म लेपित था। शिव भक्त के वध पर महाराज को इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने उस शीश को स्वर्ण की थाली में रखकर उसके साथ अग्नि प्रवेश कर लिया। यह एक विशेष घटना थी। एक सम्राट के रूप में कर राशि न देने वाले छोटे राज्य को दंडित करना राजकीय दायित्व का पालन है, पर युद्ध में शिव भक्त के की अनजाने में भी हत्या हो जाए, यह जानकर शासक को अधीनस्थ के अपराध का
0: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Narasingha Munayarayar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम सुनेंगे और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी, जिनका नाम नरसिंह मुनैयर है। तमिलनाडु के तिरुमुनईपाड़ी क्षेत्र में नरसिंह मुनैयर शासन करते थे। इनको हम सुंदरमूर्ति नायनार के धर्मपिता के रूप में भी स्मरण करते हैं। सुंदरमूर्ति का बचपन का नाम नंबी आरूर था। एक दिन जब वे गली में खेल रहे थे तो उधर से नरसिंह मुनैयर निकले। बालक के प्रति उनके हृदय में इतना प्रबल प्रेम भाव उत्पन्न हुआ कि वे बालक नंबी आरूर को उसके माता पिता की अनुमति से अपना दत्तक पुत्र बनाकर राजमहल ले आए। नंबी आरूर ने भी राजवंश की संतान रूप में विभिन्न कलाओं और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। नरसिंह मुनैयर के जीवन का लक्ष्य था शिव भक्ति करना और शिव भक्तों की सेवा करना। नरेश नरसिंह मुनैयर तिरुवादिरई आर्द्रा नक्षत्र के दिन शिव भक्तों को अपने यहाँ आमंत्रित करते, उनका पूजन करते और प्रत्येक भक्त को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप प्रदान करते। इस सेवा से उन्हें अपार आनंद आता था। एक बार शिव भक्तों के समूह में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो अनियंत्रित काम भोग के कारण भयंकर चर्म रोग उपदंश से पीड़ित था। उसने शिव चिन्ह तो धारण किए हुए थे पर अपने हाव भाव के कारण दूसरे संतों के तिरस्कार का भागी बन रहा था। अन्य भक्त उसे तुत्कार कर अलग कर रहे थे। इस पर मुनैयर ने टिप्पणी की, शील और सदाचार में खोट करने होने पर भी भस्म धारण किए हुए व्यक्ति का अपमान उचित नहीं। उन्होंने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा दुगुनी दक्षिणा दी, सोने की 200 मुद्राएं भेंट कर सादर विदा किया। शिव वेश धारण करने का प्रभाव मानव को दुर्गुणों से परे रहने की प्रेरणा देता है। अतः शिव वेशधारी का सम्मान करने की एक पुरानी प्रथा है। शिव वेश अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित किसी भी जाति का व्यक्ति धारण कर सकता है। वेश धारण करने वालों की खोज संभव नहीं, अतः नरेश नरसिंह मुन्नैयार प्रत्येक शिव वेशधारी को सम्मान प्रदान करते हैं। 12 शती पूर्व की यह पौराणिक कथा उस युग के चिंतन के एक पक्ष को प्रस्तुत करती है। नरसिंह मुन्नैयार एक अत्यंत बड़े शिव भक्त या संत थे, जो कि हर शिव भक्त को एक समान देखते थे और उनका सादर सत्कार करते थे, इसलिए उनका नाम पेरिय पुराण में शामिल हुआ। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Adibhatta Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhaktam, yeh Shravan ka mahina hai, kyunki Shiv ke liye atyant lokpriya hai. Aaj hum sunte hain aur ek Nayanmar ya sant ki kahani, jinka naam Atipattar hai. Nagapattinam mein machuaron ke ek samudra kul mein Atipattar नायनमार का जन्म हुआ। वे प्रतिदिन समुद्र में जाकर मछली पकड़ते और इस भांति अपनी जीविका चला रहे थे। उनका एक प्रण था कि जब भी मछली पकड़ें, सबसे पहली मछली सृष्टि में नृत्य कर रहे नटराज को अर्पण करके फिर से समुद्र में छोड़ देते थे। एक समय की बात है, कई दिन लगातार अतिपत्र के जाल में केवल एक ही मछली आती और अपने प्रण के अनुसार वे प्रतिदिन उस एकमात्र मछली को शिव अर्पित करके समुद्र के जल में छोड़ देते थे। भोजन के अभाव से शरीर दुर्बल हो गया था, पर प्रण के अनुसार शिव के प्रति समर्पण भावना से मछली समुद्र में फेंकना बंद नहीं हुआ। एक दिन उनके जाल में अद्भुत सुनहरे रंग की स्वर्ण और रत्न जड़ित एक मछली फंसी। उसे देखकर अतिपत्र ने विचार किया, यह देखने से मछली है पर रत्न जड़ित होने के कारण मेरे प्रभु को अर्पित करने के लिए भी उपयुक्त है। और प्रभु जिससे मुझे अपने दास के रूप में स्वीकारा है, उनके चरणों में इसे अर्पित करता हूँ। यह विचार कर वह बहुमूल्य मछली तरंगों से उद्वेलित सागर में शिव को भेंट कर दी। उसी क्षण उन्हें वृषभ पर आरूढ़ शिव के आकाश में दर्शन हुए। नीलकंठ प्रभु की असीम अनुकंपा हुई और करबद्ध प्रणाम करते हुए शिव भक्त हरिपत्र को शिवलोक में स्थान मिला। सुविधा संपन्न लोगों द्वारा व्रत और पूजा पर महत्व दिया जाता है। सुविधाओं के अभाव में भी सच्चे भक्त अपने व्रत और प्रण का किसी भांति भी पालन करते हैं। इस कथा में यह दर्शाया गया है, तमिल प्रदेश के लोगों ने अनेकानेक मंदिरों का निर्माण किया, किंतु उनकी यह मान्यता कदापि नहीं कि ईश्वर केवल मंदिर में निवास करते हैं। वे वन उपवन, ताल तलैया, नदी, चौराहा, सशामंच, पर्वत आदि स्थानों पर सर्वत्र व्याप्त हैं और उपासना करने वालों के लिए उनकी भावना और इच्छा के अनुसार प्रकट होकर वरदान देते हैं। ऐसा विचार तिरुमुर्गा तरुपड़ई नामक प्राचीन तमिल तीर्थ कविता में आता है। नर्तित नटराज, तिल्लई के स्वर्ण मंदिर और तिरुवालम काड़ू के ही समान अधिपत्तर की नाव के निकट समुद्र की उत्ताल तरंगों पर भी नृत्य करते हैं। इसलिए शिव भक्त हरिपत्र अपने हाथ में आने वाले हर पहले कौर या मछली को ईश्वर अर्पित करते हैं। निरंतर कई दिन तक उपवास के बाद भी नवरत्न जड़ित सुनहरी मछली मिलने पर भी हरिपत्र ने उसे बेचकर निर्धनता से मुक्ति पाने का विचार तक नहीं किया। उस दिन की एकमात्र पहली मछली प्रण के अनुसार नृत्यशील नटराज को समर्पित हुई। यही भक्त को अपने प्रण के प्रति अटूट निष्ठा का प्रमाण है। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kalikamba Nayanar Puranam, presented by ஸ்ரீ சிங்கப்பூர் சங்கர நாராயணன். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய். பக்தோ, அபி ஹம் ஒரு தட்சிண பாரதிய சந்த் யா நாயன்மார் கி கஹானி சுனேங்கே, ஜின்கா நாம் கலிகம்பர் ஹை. பென்னாடகம் நகர் மே ஏக் வணிக் பரிவார் ரஹதா தா. உஸ் பரிவார் மே கலிகம்பர் கா ஜன்ம ஹுவா. வே பிரதிதின் மந்திர் ஜாதே, பக்தி பாவ் சே சிவ் பூஜன் கர்தே ஔர் படே பிரேம் சே சிவ் பக்தோ கோ போஜன் கராதே தே. भोजन कराने से पहले वे श्रद्धापूर्वक पत्नी के साथ शिव भक्तों के चरण पखारते थे, पखारते यानी सेवा करते थे। एक दिवस नित्य नियमानुसार उनकी पत्नी कलश में पानी भरकर भक्तों के पांव पर उड़ेल रही थी और कालिकम्बर हाथों से उनके चरण धो रहे थे। अचानक पत्नी की दृष्टि शिव भक्तों में से एक के चेहरे पर पड़ी। वह पहचान गई कि यह तो वही व्यक्ति है जो कुछ समय पूर्व घर में सेवक था और बिना सूचना दिए भाग गया था। मन में विचार आया कि आज यह स्थिति आ गई कि ऐसे व्यक्ति के भी पांव धोने पड़ रहे हैं। इसी चिंतन प्रक्रिया में कलश से पानी डालने में बाधा पड़ गई। कलिकम्बर ने यह देखा, पत्नी की मनस्थिति को समझा और तुरंत उसे दंडित कर दिया। पुराणम के रचयिता चिक्किलर ने इस घटना पर एक विचार दिया है। हम अपने समक्ष खड़े व्यक्ति की पहचान उसकी वेशभूषा, बात करने और काम करने के ढंग, हाव भाव आदि से करते हैं। जिन्हें हम पहले से जानते हैं, बहुत समय बाद भी यदि उनसे भेंट होती है तो उनके प्रति हमारी पूर्व धारणा बनी रहती है। इस बीच कितना परिवर्तन हुआ है, कालक्रम में उस व्यक्ति ने विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं अथवा पतन की ओर, हम इसका विचार नहीं करते। इन सब सूचना बातों को आधार बनाकर समक्ष आए व्यक्ति का मूल्यांकन असंभव है। धनी समृद्ध उच्च अधिकारी को यदि उनकी मनोवृत्ति के आधार पर तोलें तो अनेक ऐसे होंगे जिनका हम सम्मान नहीं कर पाएंगे। भक्त वेशधारी सभी भक्त नहीं होते। मुक्त नादन और अतिशूरन इसके उदाहरण हैं। इसलिए प्राचीन काल में हमारे पूर्वज वेश और चिन्ह को आदर देने लगे। शिव चिन्ह को शिव रूप में देखकर उसकी उपासना का यही आधार है। कलिकम्बर भी इस तथ्य को जानते थे, अतः शिव भक्त के वेश में आए प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते थे। उनकी पत्नी इस विचार को आत्मसात नहीं कर पाई थी। इससे उनके हृदय में भेदभाव उत्पन्न हुआ। कुछ समय पूर्व जो घर का नौकर था प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था और पति को उनके पांव धोने पड़ रहे हैं, यह विचार उसे दुख प्रदान कर रहा था। कलिकम्बर ने उसे दंड दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो ठीक नहीं है, आगत व्यक्ति पुराना नौकर है, यह जानते हुए भी उसे आदर सत्कार शिवभक्त जैसा ही मिले, यही उनकी इच्छा थी। इसीलिए यह देखा जाता है कि कलिकम्बर हर एक शिवभक्त को एक समान देखते थे, इसीलिए वे एक महान नायनमार या संत हैं। ओम नमः शिवाय।
3: Om Namah Shivaya. You are listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
4: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Dehaye Nityam Mahesam Rajata Girinivam चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परसुमृगवर वीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिलभयहरम् पंचवक्त्रम त्रिनेत्र नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंद योगींद्र मताश शिष्यं श्री शंकराचार्य मताश पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति शांति

0: चंद्रशेखर रक्ष माम, चंद्रशेखर रक्ष माम। ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित तथा दैया परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत सायंकालीन ये प्रवचन का कार्यक्रम कल 16 तारीख से शुरू हुआ और ये 29 तारीख तक चलेगा। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर ये प्रवचन माला चिंतन माला 3 वर्ष पहले आरंभ हुई थी। 100 श्लोक का यह शिवानंद लहरी स्तोत्र है। गत वर्ष तक के चिंतन के क्रम में 66 श्लोक तक का चिंतन किया था और उसी के बाद के श्लोकों पर विचार आरंभ किया। कल 2 श्लोकों पर विचार हुआ, आज 69वां श्लोक 69 इस पर हम विचार करेंगे कि शंकराचार्य जी भगवान शिव जी से कौन सा भाव व्यक्त करते हैं, किस प्रकार का भाव अपने व्यक्त करते हैं। हमने कल कहा था कि स्तुति प्रार्थना भाव प्रदान होता है, प्रार्थना भावना से की जाती है, शब्द और भावना, तो भावना की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होता है। महात्मा लोग कहते हैं शब्द तो साधारण व्यक्ति भी सुन लेता है, तो साधारण व्यक्ति और परमात्मा में यही अंतर है कि परमात्मा भावना को भी सुनता है, निःशब्द भावना को भी सुनने की क्षमता परमात्मा में है। तो ये श्लोक के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी किस प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं अभ्यास करें। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदा भरणस्य नास्मि किं पात्रम्। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदा भरणस्य नास्मि किं पात्रम्। अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या वरिवसि तुम सुलभः प्रसन्न मूर्ति अगणित फलदायक प्रभुर्मे। जगदधिको हृदि राजसि कुरोऽस्ति अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या वरिवसि तुम सुलभ प्रसन्न मूर्ति अगणित फलदायक प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्धिया। भगवान शंकराचार्य जी, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव से कहते हैं कि महाराज, आप मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? मेरा तिरस्कार आप क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? जहां तक है कि मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं, हर व्यक्ति अपना मूल्यांकन अपने आप करे वो गलत है। व्यक्ति के मूल्यांकन कोई दूसरा करे तो वो सही होता है। अपने आप को महान व्यक्ति तो हर व्यक्ति कहेगा, दूसरा व्यक्ति तुम्हें महान कहता है कि नहीं इस पर निर्भर करता है तुम्हारी महानता में। अपने आप को महानता तो हर व्यक्ति कहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मुझमें बहुत सी कमी कमजोरियां हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा तिरस्कार करने योग्य तो नहीं हूं। मुझे लगता है कि आपके अनुग्रह का पात्र मैं बन सकता हूं, लेकिन आज तक आपके अनुग्रह का पात्र क्यों नहीं बना? तीन चार चीज को यहां प्रस्तुत किया है, जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वम, ये चार चीज है। जहां तक कि मुझ में ये चार भाव नहीं है, जड़त भाव भी नहीं, मैं इंसान हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं जीवंत हूं, मैं जड़ नहीं हूं। और ये मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं कि मैं बिल्कुल ही जड़ नहीं हूं, जड़ हो सकता हूं, जड़ भी हो सकता हूं, लेकिन इतनी मात्रा से आप मुझे परित्याग कर दें, स्वीकार न करें, तिरस्कार करें, ये गलत है। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं इंसान हूं, पशु तो नहीं हूं। शायद विषयों के प्रति आसक्त होने के कारण या अपने ही कर्म बंधन से बंधे हुए के कारण कुछ पशु भाव मुझमें भी हो सकते हैं। पशुता सर्वथा पशुता नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता हूं। मुझमें कुछ बंधन है और शायद उन्हीं बंधनों के चलते मैं मुझमें पशुता हो सकती है, लेकिन इतनी मात्र से आपके द्वारा मैं सर्वथा तिरस्कृत हूं, आप मुझे सर्वथा तिरस्कार कर दें, ये बात तो नहीं जचती है। कलंकिता तीसरा भाव है, जहां तक ख्याल है कि मुझे कि जीवन में मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया। कहने के लिए तो हर इंसान ये कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं की है, गलत काम करते हुए भी वो यही कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं की है, क्योंकि अपने कर्मों का मूल्यांकन जो है वो अपनी वासना से प्रेरित होकर करता है। हम कभी किसी को कहते हैं, व्यापारियों को कहते हैं कि तुम ईमानदारी से व्यापार करो, तो व्यापारी जवाब देते हैं, महाराज हम बड़े ईमानदारी से व्यापार करते हैं, और सारी दुनिया ही जानती है कि व्यापारी कितनी ईमानदारी से व्यापार करते हैं। हर व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे तो समाज में कोई मिलावट नहीं हो सकती है। लेकिन आज समाज में भी आप कोई सामान खरीदने जाओ तो हर सामान में मिलावट मिलता है। शुद्ध वस्तु मिलना तो आजकल असंभव हो गया। और हर व्यापारी को कहो कि ईमानदारी से व्यापारी क्या करो, बोले महाराज हम बड़े ईमानदारी से व्यापार करते हैं। और उसी के सामने कहा कि ये देखो तुम्हारी ईमानदारी, इसमें ये मिलावट की है, ये गड़बड़ी किया है। तो बड़ी शालीनता से, मधुर भाषा से, बड़े शिष्ट भाषा से जवाब देता है, महाराज थोड़ा बहुत तो इस जमाने में करना ही पड़ता है। बड़ी शालीनता से जवाब देता है, विनम्रता से जवाब देता है। ये थोड़े बहुत नीचे ऊपर न करो, इधर उधर न करो तो महाराज चलेगा ही नहीं जमाना में। आज के जमाने में ये सब करना ही पड़ता है। अपने कर्म को इस तरह वेरिफिकेशन कर रहा है, बिल्कुल प्रमाणित कर रहा है कि मैं शुद्ध ईमानदारी से काम कर रहा हूं। जो हेर फेर हुई, नीचे ऊपर हुई है, वो तो अनिवार्य है, बाध्यता है, समसापेक्ष है, तो कैसे मूल्यांकन होगा। और हर व्यक्ति स्वयं गलत काम करते हुए भी उद्घोष नहीं कर सकता, सार्वजनिक नहीं कर सकता, घोषणा नहीं कर सकता कि मैं गलत काम करने वाला व्यक्ति हूं। कर सकता है? ऐसा मिला है आपको समाज में आज तक कोई जो गलत काम करने के बाद स्वयं उसने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की हो, ये समाज के लोगों सुन लो, देख लो, मैंने ये अपराध की है, ऐसा कहने वाला कहीं मिला है आपको? कलंकिता। इसलिए कहते हैं कि करना पड़ता है। हमें जवाब देते हैं, महाराज गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में थोड़ी बहुत तो नीचे ऊपर होती है, यानी गृहस्थ आश्रम में गलत काम चल जाता है, नहीं? क्योंकि हम गृहस्थी हैं, गृहस्थ में ये सब चल जाता है। अब आश्चर्य की बात यह है, हम गृहस्थ होकर ये सब गलत काम कर लें तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप साधु होकर गलत काम करो, ये अपराध है। ये कहते हैं कि नहीं, बोलो हैं? यही कहते हैं कि नहीं? पब्लिक होकर गलत काम करे ये तो ठीक है, ये हजम हो जाता है समाज को, लेकिन पुलिस होकर गलत काम करे समाज को हजम होता है? अब जबकि साधु ये कहे तुम गृहस्थ हो, तुम गलत काम करो तो तुम्हारे समाज में चलता है, तो तुम्हारी रोटी खाकर हम भी गलत काम करें तो वो क्यों नहीं चलता है? है? चलना चाहिए ना, उसको भी चला लो भाई। दाल रोटी तो तुम ही खिला रहे हो। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं ईमानदारी से, मैं ये नहीं कह सकता गारंटी के साथ कि मुझ में कोई कलंक नहीं, कोई गलती नहीं है। जहां तक ख्याल है मैं अपनी मूल्यांकन में खुद करूं तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की। आप भी ये कहोगे कि नहीं? बोलो, आप भी यही कहोगे कि नहीं? लेकिन जब गलती की है कि नहीं अनुसंधान करने लगेंगे तो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, गलती के बाद गलती सामने जब आता रहेगा तो कहेगा ये तुमने गलती की है या तुमने गलती की है। तो तुम जवाब क्या दोगे? महाराज ये संसार में तो ऐसा होता ही रहता है, तो अपने बचाव में तुम ये बात कहोगे कि नहीं बोलो? हम कहते हैं कि नहीं, अपने बचाव में ये शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं? महाराज ये तो होता ही रहता है, जमाना ऐसा है, समाज ऐसा है, थोड़ी बहुत नीचे ऊपर न करो, हेर फेर न करो तो ये समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वम च नास्ति मई देव। दो संबोधन है शिव जी के लिए, शंकराचार्य जी दो संबोधन कर रहे हैं, एक देवा ये संबोधन कर रहे हैं, हे देवा मई मुझ में जड़ता नास्ति पशुता नास्ति कलंकिता नास्ति कुटिलचारत्वं च नास्ति। तब मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे हो? और यदि अस्ति, हे राजमौले, ये संबोधन है राजमौले, हे राजमौले यदि अस्ति आपके दृष्टि से मुझ में ये दोष यदि हैं, हालांकि मेरे दृष्टि से मुझ में ये दोष नहीं है, मैंने भूमिका में कह दिया ना, हर व्यक्ति अपने गलती को नहीं देखता है, दूसरे को गलती को जल्दी देखता है, अपने गलती को नहीं देखता है, ये जीव का स्वभाव है। आपके दृष्टि से यदि मुझ में ये दोष हैं भी तो, हैं भी तो, ध्यान देना, क्योंकि जड़ पदार्थों के सेवन करते करते और जड़ वस्तुओं के साथ आत्म तादात्म्य करने के कारण आध्यात्मिक जड़ पदार्थों के साथ संबंध से मुझ में जड़ता आपके दृष्टि से हो सकती है। आप नहीं मानोगे कि मैं जड़ हूं। आप लोग यहां बैठे हो, आप अपने को जड़ मानते हो कुर्सी की तरह? बोलो है? सही रूप में विचार करें, आपका शरीर और कुर्सी में अंतर नहीं है। सही रूप में विचार करें तो आपका ये जो कुर्सी, यदि 100% जड़ है तो आपका शरीर भी 100% क्या है? जड़ है। लेकिन कुर्सी को 100% जड़ आप मानने को तैयार है, लेकिन अपने शरीर को 100% जड़ मानने को तैयार है?
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Che Achar Par Yati Viram Aur Aagi Gara Achar Par. Aap Isme Gini Ke Dekh Sakte Hain. हर छठवें अक्षर पर विराम होता है और बाद में ग्यारह अक्षर पर. रसई रुद्रई छिन्ना इसके लक्षण भी घटा दिया है. रसई रुद्रई छिन्ना छह हो गए. रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी, इस शिखरिणी छंद है और इसके देवता है भगवान शंकर और आचार्य पुष्पदंताचार्य. पुष्पदंताचार्य जी का नियम था हमेशा एक बगीची से फूल चुरा कर लाते और भगवान शंकर की पूजा करते. पुष्पदंताचार्य जी का हर दिन का एक काम था. उनके पास अंतर्धान होने की शक्ति थी, सामर्थ्य था. राजा ने अपने नौकरों को डांटा कि तुम लोग ठीक से हमारे बगीची की सुरक्षा नहीं करते हो, क्योंकि बगीची के फूल चोरी हो जाते हैं. नौकरों ने कहा कि राजन, हम लोग बड़ी सावधानी से तत्परता से फूलों की रक्षा करते हैं, पर न जाने कौन आता है और फूलों को चुराके ले जाता है, दिखाई नहीं पड़ता. राजा ने समझा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास अंतर्धान होने की शक्ति, उस शक्ति से चुराता होगा. राजा ने नौकरों को बुलाया और कहा कि भगवान शंकर के निर्माल्य, निर्माल्य बोलते हैं जो शिव जी पर चढ़ा हुआ, जो चावल हो, पुष्प हो, बिलपत्र, उसका नाम निर्माल्य है. निर्माल्य को उस पुष्प वाटिका के चारों तरफ बिखेर दिया. गंधर्व राज पुष्प दंताचार्य जी जैसे ही आए और आकर फूल तोड़कर जैसे ही आकाश गमन करना चाहे, शक्ति कुंठित हो गई, क्योंकि भगवान शंकर का अपराध हो गया, निर्माल्य का अतिक्रमण कर दिए. वैसे भी नियम है प्राचीन, आजकल तो लोग ध्यान ही देते हैं कि अपने से बड़े का, बुजुर्ग का, श्रेष्ठ का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए. अतिक्रमण कि वो आगे जा रहा है तो रास्ता काट के न जाए, उसके आगे न चले. तो भगवान शंकर के निर्माल्य का अतिक्रमण करने से अंतर्धान होने की शक्ति कुंठित हो गई, नष्ट हो गई. उन्हें विचार किया हमसे क्या अपराध हुआ. उन्हें मालूम हुआ कि हमने कोई न कोई अनजाने में अपराध किया है. वहीं विचारने लगे, ध्यान से देखा तो भगवान शंकर का निर्माल बिखेरा हुआ था. सोचे कि अब तो भगवान शंकर को ही प्रसन्न करना पड़ेगा, अन्यथा राजा पकड़ेगा, बंदी बना लेगा, दंडित करेगा, बहुत पीड़ा होगी. वहीं पर तत्परता से खड़े होकर भगवान शंकर की वंदना करने लगे. जब मनुष्य को मौत दिखाई पड़ती है तो एकाग्रता से भगवान का स्मरण करता है, और दिन तो बस खाना पूर्ति करता, औपचारिकता बस करना इसलिए करता है. देखिए कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि दवाई खाना इसलिए दवाई खाते हैं, चाहे स्वास्थ्य हो या ना हो, बस दवाई खाना है, नियम बना लिया. ऐसे ही हम लोग और दिन तो बस भगवान का स्तोत्र करते हैं, तत्परता नहीं होती है, पर जब मौत दिखाई पड़े तत्परता हो जाता है, एकाग्रता आती है. पुष्पदंताचार्य ने एकाग्रता से आंख बंद करके भगवान शंकर की स्तुति प्रारंभ कर दी. उसी स्तुति का नाम है शिव महिमना स्तोत्र. जरा हम लोग उच्चारण कर लें, इसके बाद अर्थ. तो आप ध्यान रखना, छह पर और ग्यारह पर रुकना है. महिम्ना पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुति ब्रह्मादीना मपि तद्वसन्ना स्वयि गिर अथा

कर। हाथ जोड़कर दंताचार्य जी अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ते महिमना पारम, पहले संबोधन यहाँ पर हरा है, देखिए हरा जो नीचे है ना, सबसे चौथे चरण में है, संबोधन है। हे हरा, हर का अर्थ होता है हरतीति, हर की महर्ति, कोई धन हरण करता है, कोई सोना चुराता है, कोई किसी का आजीविका। यहाँ पर एक सर्वान पापान हरतीति हर, जो हमारे कस्मल को पाप को हरण करे उसका नाम हर है। उपनिषद में आता है ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, मनुष्यों को ज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब पापी या कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे बाहर की नजर के लिए ये पतली सी दीवाल प्रतिबंधक है, जब तक पतली सी दीवाल है तब तक बाहर के नजारे को हम देख नहीं सकते। ऐसे ही ज्ञान रूपी सूर्य का प्रतिबंधक पापीय कर्म है। जो लोग विमान में यात्रा किए होंगे उन्हें पता है कि जब विमान ऊपर जाता है तो बादल

कसमल कहते हैं। इसके क्षीण होते ही तत्व का साक्षात्कार होता है, इसलिए संबोधन किया, हे हर, हमारे पापों का हरण करने वाले ते मतलब आपकी महिमना कारते महिमा परम पारम, आपकी महिमा के पार को कोई भी नहीं समझता है। देखिए आप परम पारम दो शब्द है, परम कार्य सर्वोत्कृष्ट और पारम कार्य की सीमांकन करना, जैसे नदी के पार जाना, सागर के पार जाना, गांव कुछ पार जाना, मतलब सीमा का अतिक्रमण करना। इस प्रकार से भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप महिमा का कोई अतिक्रमण पार नहीं कर सकता, सीमा को जान नहीं सकता। जैसे किसी व्यक्ति के सीमा को हम जानते हैं, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतने गुण वाला है, इतनी इसमें कारीगरी है, पर भगवान शंकर के सर्वोत्कृष्ट महिमा को सीमा को कोई भी नहीं जानता है। अविदुषः, नहीं जानने वाले। स्तुति मतलब स्तवन, यदि मतलब अगर असदृशी, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो त्वयि अवसन्ना, आपके अनुकूल नहीं है, अयोग्य है। अवसन्ना का अर्थ अयोग्य, आपका अनुकूल योग्य नहीं है। जैसे कि आज के लोग प्रशंसा करते किसी की, अब प्रशंसा करते हैं उसको नहीं जानकर, तो प्रशंसा भी एक तरह से उत्तेजक हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज आपको बड़ी मोटी बुद्धि है, बहुत बड़ी बुद्धि है। अब ये प्रशंसा है कि जो है अवज्ञा है। अब भोला वाला व्यक्ति इसको पता नहीं है, वो तो अपने हिसाब से प्रशंसा करता है कि बड़ी मोटी बुद्धि, बहुत बड़ी बुद्धि, मतलब कि जरा जो है ज्यादा बुद्धिमान है। उसके भाव में दोष नहीं, शब्द भले उत्तेजक हो पर भाव शुद्ध है। ऐसी पुष्पदंताचार्य जी करते हैं, हम आपके महिमा को, स्वरूप को न जान करके यदि आपके अयोग्य स्तुति करते हैं, स्तुति आपके अनुरूप नहीं है, तो फिर ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण भी आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि वह किसी के बुद्धि का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, तो वह भी अयोग्य है, वह भी ठीक नहीं है। यदि उनकी प्रार्थना, उनकी मतलब ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर की प्रार्थना स्वीकृत है, योग्य है, अनुकूल है, तो फिर हमारा भी यह प्रार्थना उचित होना चाहिए। क्योंकि तो सभी व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो अपने बुद्धि के अनुसार, देखा ना, स्वमति परिणामा व अधिग्रहण, अपने मति के अनुसार ही कोई किसी का तारीफ करता है, चाहे ब्रह्मा करते हो आपकी प्रशंसा, या विष्णु करें, या इंद्र कुबेर वरुण करें। तो मैं भी आपके अपने बुद्धि अनुसार आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, यह भी आपको स्वीकार होना चाहिए, निरपवाद होना चाहिए। जैसे आकाश में अपने सामर्थ्य के अनुसार मच्छर भी उड़ता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार चील गिद्ध भी पक्षी उड़ते हैं। मच्छर थोड़ा उड़ता है, चील गिद्ध 10-20 किलोमीटर उड़ेंगे, तो गरुड़ जी बहुत ज्यादा उड़ सकते हैं, परंतु उस आकाश के पार को, सीमा को, न गरुड़ जी पा सकते हैं, न मच्छर, न चील, न गिद्ध। अब आप कहो कि भाई जब आप आकाश की सीमा को पार ही नहीं कर सकते हो, तो फिजूल में क्यों उड़ते हो बिना मतलब का, उड़ना बेकार है, ये व्यर्थ होगा कथन। भाई मच्छर भी उड़ता है अपने शक्ति अनुसार, अपना काम चला लेता है, चील गिद्ध भी उड़ते, गरुड़ भी उड़ते हैं। ऐसे ही जैसे कि आकाश का कोई भी सीमा बांध नहीं सकता है, पार नहीं कर सकता है, फिर भी अपने शक्ति अनुसार उड़ते हैं, अपना काम चलाते हैं, ऐसे मैं भी अपने बुद्धि अनुसार आपकी स्तुति प्रार्थना को कर रहा हूँ। इस प्रकार से पुष्पदंताचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना किया है। तव तत्त्वम न जानामि, भगवान के तत्व को न जान करके भी आप जैसे वैसे उसी प्रकार से हमारे प्रार्थना को स्वीकार करना। अक्सर क्या होता है, जब हम किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसके रहस्य को न जानने के बाद हमारा मन बाया दाया होता है ना कई बार। यदि आप किसी स्तोत्र के शब्द के अर्थ को ठीक से जानते हो,

0: तो ठीक से जानने के बाद हमारी मन हमारा बुद्धि उसमें लग जाता है। एक बड़े भारी विद्वान थे, अक्सर वेदांत पढ़ाते थे, आम ब्रह्मा से तत्मसि इत्यादि, उसमें से कहीं से प्रसंग आ गया जो है दृष्टान्त उष्ट्रमुख चंद्रमुख आता ना संस्कृत में, चंद्रमुख तो प्रसिद्ध है, उष्ट्रमुख आया कहीं तो जिज्ञासु ने पूछा क्या उष्ट्रमुख का उदाहरण दे रहे, उष्ट्रमुख क्या होता है, उष्ट किसे कहते हैं। अब बेचारे जो है ऊंट को देखे नहीं थे, काशी में ऊंट होता भी नहीं, उन्होंने कहीं सुन रखा था कि उष्ट जो है उड़ता है, उष्ट में उड़ने में बोले देख भाई उड़ने वाले पक्षी का नाम ऊंट है। दस से व्याकरण में बताया उष्ट नाम पक्षी विशेष, उष्ट पक्षी विशेष का नाम है। विद्यार्थी ने कहा गुरु जी जब पक्षी है मतलब उड़ता होगा, उड़ता होगा तो यहां भी दिखाई देना चाहिए। तो विद्यार्थी ने कहा कि गुरु जी ये बात संगत नहीं, तो उसमें राजस्थान एक था, उसने कहा उष्ट उड़ता नहीं, वो तो एक पशु विशेष है। तो कई बार क्या होता है ना कि शब्दों का ठीक से ज्ञान न होने से मनुष्य भटक जाता है। पर यहां पर दंताचार्य जी कहते हैं कि आपके स्वरूप को शब्द के अर्थ को कोई भी नहीं जानता है, खाली हम उस शब्द का भाषांतर अनुवाद कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए शिव शब्द है, विष्णु है, कृष्ण है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद शब्द है, इन शब्दों का हम लोग अपनी भाषा में अनुवाद कर लेते हैं और समझते कि हमने शब्द का ठीक से अर्थ कर लिया। जैसे इंग्लिश में एक शब्द आता है पीओटी पॉट होता ना, पॉट का अर्थ है बर्तन। आप किसी को बोलो कि ब्रिंग अ पॉट तो घड़ा ला कर रख देता है, प्रवास में पॉट शब्द का अर्थ घड़ा नहीं, उसका तो अर्थ है कि जिसमें जल रखा जाए, दूध रखा जाए, उसका नाम पॉट है। परंतु हमने भाषांतर में अनुवाद कर लिया घड़ा अपने समझने समझाने के लिए, पर पॉट शब्द का अर्थ घड़ा नहीं होता, उसका अर्थ है जिसमें दूध दही जल रखा जाए, उसका नाम पॉट है। ऐसे हम लोग अपने बुद्धि के अनुसार शिव विष्णु कृष्ण इत्यादि इन शब्दों के अर्थ को परिकल्पित कर लेते हैं। तो शास्त्र के अनुसार जो भगवान की महिमा है उसको अपरंपार कर दिया। भगवान शिव की ऐसी महिमा है कि चाहे कोई कैसे भी भगवान की उपासना करे, ये अवघड़ दानी भोले बाबा है। काशी विश्वनाथ की कोई पूजा करे और पूजा करते समय सोने के घड़े में गंगा जी के जल को चढ़ाए, इसके बाद में केसर युक्त चंदन का लेप कर दे, सुंदर कीमती चंपा बेली की मालाएं हो या कमल के मालाओं से भगवान शंकर को आच्छादित कर दे, ढक दे, चढ़ा दे, इसके बाद मानो कोई बुढ़िया आई, अब बुढ़िया तो गरीब है, टूटी फूटी, उसके पास लोटिया है, अब हाँ उंगली से छिद्र को बंद किया, जल भरा और उस महादेव पर हर हर महादेव करके छोड़ दिया। सामने वो सेठ खड़ा है पर वो बोल नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं कि भाई हमने सोने के बर्तन में गंगा जल को चढ़ाया, इतना सुंदर माला सजाया, केसर युक्त चंदन का लेप किया, और तूने जो फूटी टूटी लोटिया में जल डालकर सब धुल दिया, ऐसा बोल सकता है भाई? सेठ का सामर्थ था, सोने के घड़ा मिलाकर जल चढ़ाया, कमल के फूल से पूजा किया, केसर युक्त चंदन का लेप किया, पर बुढ़िया के अंदर सामर्थ्य जब टूटी फूटी लोटिया में से ही जल चढ़ा देती है, और वह बेचारे गेंद के फूल को चढ़ा दिया, उसके फूल को हटा करके, तो भी न भगवान शंकर आक्षेप करते हैं न वो सेठ करता है। भगवान शंकर ये मस्त पड़े हैं, सेठ भी साहब ने देख रहा है कि भगवान शंकर ऐसे हैं कि चाहे जैसे भी हो आप इनकी पूजा करो, महिमा गुणगान करो, ये हमेशा प्रसन्न ही होते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण भी भगवान श्री के महिमा को नहीं जान सके तो सामान्य व्यक्ति कैसे जान सकता है? एक बार की घटना है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि चतुर्भुजधारी कोई पुरुष आ रहा, भगवान विष्णु, उनसे पूछा तुम कौन हो? विष्णु भगवान ने कहा कि मैं जगत को उत्पन्न करने वाला तुम्हारा पिता भगवान विष्णु हूं। ब्रह्मा ने कहा आश्चर्य की बात है, सारा दुनिया को हमने बनाया, लोग हमें प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं, परम पिता कहते हैं, और तुम कहते हो कि हमने तुमको उत्पन्न किया। झूठ मूठ की बात है, कोई प्रमाण नहीं। अब भगवान विष्णु कहे कि मैं तुम्हारा पिता, ब्रह्मा जी कहे मैं पिता, मैं जगत को उत्पन्न किया और तुमको ही हमने बनाया। ब्रह्मा जी ने तर्क दिया, यदि तुम मुझे उत्पन्न किए होते तो तुम दुनिया को भी बना लेते। मैं दुनिया को बनाता हूं इसीलिए तुमने हमको उत्पन्न किया है। अब दोनों विवाद बढ़ गया, कौन बड़ा, कौन पिता, कौन पुत्र। उनके सामने विवाद को देख करके ज्योतिर्मय एक लिंग प्रादुर्भूत व स्तंभ, एक पिलर बहुत लंबा। दोनों ने विचार किया कि हम में से जो सबसे पहले इसके अंत को, पार को जान लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा, वही पूजित होगा। ब्रह्मा जी रजोगुणी थे, झट हंस पर सवार होके और सीधा ऊपर चले गए। जो रजोगुणी होता है ना अहंकारी, वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखता है। अब ब्रह्मा विष्णु जी सत्वगुणी देवता है, उन्होंने जो है अपने गरुड़ पर सवार होकर नीचे गए। कई दिव्य वर्षों तक जाते रहे पर पता नहीं लग पाया इसका ओर छोर कहाँ है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कहीं ऐसा न हो कि हमारे से पहले विष्णु सीमा को जान करके और आ गया हो, तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। उन्होंने बीच में देखा एक गौ आ रही है और केतकी फूल। दोनों को बहुत समझाया बुझाया और ईश्वर दिया, घोष दिया, कहा कि ऐसा है तुम खाली साक्षी बन जाना, गवाह बन जाना, गर्दन हिला देना और कह देना कि हम जो है शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कर रही थी। अब फूल को सिखाया कि तुम कहना कि मैं बरसों से ऊपर से गिरते हुए आ रहा हूं, और ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। केतकी को साक्षी बना लिया और गौ को, दोनों को साक्षी बना करके और प्रलोभन दिया कि तुम्हारी पूजा होगी, हर तरह से तुम्हें जो है मैं श्रेष्ठ बनाऊंगा। दोनों साथ आ गए। भगवान विष्णु आराम से नीचे करके बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने हंस कर कहा देखो हमने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया, ज्योतिर्लिपिंड का। विष्णु का अच्छा साक्षात्कार कर ली, साक्षी क्या, गवाह क्या। ब्रह्मा जी ने कहा देखो दो दो गवाह हैं, एक गौ दूसरा केतकी फूल। गौ ने भी गर्दन हिला दिया, केतकी ने भी हां भर दी। इस झूठ को भगवान शंकर सहन न कर सके, तुरंत अट्टहास हुआ, भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शंकर ने कहा अरे ब्रह्मा तो लोकपाल है, और लोकपाल हो कितना झूठ बोला कि मैंने इस ज्योतिर्पिंड का साक्षात्कार कर लिया, सीमांकन कर लिया, जा तेरी आज से पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु कहा कि तुम हमारे समान पूज्य बंद हो गए क्योंकि तुमने झूठ नहीं बोली। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दे डाला। देखो एक बार झूठ बोलने से ब्रह्मा जी की पूजा बंद, आज ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती। और गौ ने झूठ बोला तो क्या हुआ, श्राप दिया कि तू जो है ना क्या मलिन, अशौच, अशुद्ध पदार्थों को खाएगी। इसीलिए गाय जो जब रास्ता में चलती है तो झट से जो है ना जो भी मलिन टट्टी मट्टी सब खा लेती है। एक बार गाय के झूठ बोलने से उसे इतना दंडित किया, पर जो लोग हमेशा झूठ बोलते उन्हें क्या खाना पीना पड़ता होगा, कल्पना कर लो। और केतकी का बहिष्कार कर दिया हमेशा के लिए। केतकी फूल कितना सुंदर सुगंधित होता है, तो भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ता है। तो यहां पर जब ब्रह्मा और विष्णु भी भगवान शिव के महिमा को नहीं जान सके तो सामान्य प्राणी भला कैसे उनकी महिमा को जान सकता, असंभव है। परंतु मनुष्य अपने बुद्धि से जो भी कुछ करता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आगे बढ़े क्योंकि बहुत कुछ करना है ना, अभी एक और उच्चारण कर लें। अतीत पंथानम तवच महिमा मां मनसयो रत व्यावृत्यायम चकितमभिदक्ते श्रुतिरपि सकस्यस्तोतव्य कतिविध गुण कश्य विषयः पदे त्वर्वार्चीने पतति न मन कश्य न वचः। अतीतः पंथानम्, आप वाणी मन के रास्ते से अतीत हैं, परे हैं। भगवती श्रुति भी आश्चर्यचकित होकर नेति नेति निषेध मुख से आपके स्वरूप का प्रतिपादन करती है। सकस्य स्तोतव्य, वह किसके द्वारा स्तोत्र अर्थात किसी के द्वारा स्तुति का विषय नहीं बन सकता है। कतिविध गुण कस्य विषय, क्योंकि आप नाम रूप से अतीत हैं। जहाँ पर नाम होता है वह वाणी का विषय होता है, जिसमें रूप होता है उसको हम मन से चिंतन करते हैं। और आप असंग होने से किसी के संग से भी आपकी महिमा नहीं हो सकती। तो नाम रूप से परे होने कारण से मन वाणी की आप विषय नहीं है। फिर जब मन वाणी के विषय नहीं तो आपका भगवत तो स्मरण कैसे कर सकते हैं, महिमा कैसे गाई जा सकती है। तब जाकर बताया कि आपका जो एक सगुण साकार विग्रह है, जैसे एक ही जल के तीन स्वरूप है, सूक्ष्म तरल और ठोस। सूक्ष्म वाष्प रूप है जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, और तरल है जो हमारे प्यास को बुझाता है, ठोस है जो हिमालय की यात्रा में सेतु का काम करता है। जल का एक ठोस स्वरूप है बर्फ। इसी प्रकार से उस परमात्मा का तीन स्वरूप है, निर्गुण निराकार जिसको ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार जिसका नाम ईश्वर है, जिसमें तीनों गुण है जगत का करता है पर उसके आकार प्रकार नहीं। तीसरा सगुण साकार है। सगुण साकार को यहाँ पर अर्वाचीन शब्द से कहा गया है, लिखा ना पदे त्वर्वाचीने। जो अर्वाचीन मतलब सगुण साकार विग्रह है उसमें कस्य मना कस्य वचः न पदति, किसका मन किसकी वाणी नहीं लगती, अर्थात सबका मन और सबकी वाणी उसमें लग जाती है। इसीलिए आपका जो सगुण साकार विग्रह है उसी का लोग जो है प्रार्थना करते हैं। लोग सनातन धर्म पर बार बार आक्षेप करते हैं, खासकर ईसाई और इस्लाम धर्म वाले, कहते ये लोग बहुदेववाद है, बहुत देवता मानते हैं, परंतु ये ना समझी का कथन है। स्वयं ऋग्वेद में कहा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वह एक ही चैतन्य है उसको नाना शब्दों से नामों से कहा जाता है। वह एक ही चैतन्य है, शिव बन जाता है, ब्रह्मा बनता, विष्णु बनता, कृष्ण बन जाता, राम बन जाता, दुर्गा देवी बन जाता है। दुर्गा सप्तमी में आता है कि जब शुंभ ने आक्षेप किया कि मैं तो अकेले संग्राम कर रहा हूं और तू अनेक रूप में हमसे लड़ रही, अधर्म है, उस समय देवी ने कहा एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया कावा ममा परा। पुराण में भी तत्व का एकत्व प्रतिपादन है, स्वयं भगवती ने कहा कि मैं एक ही वाहम, मैं अकेले हूँ, द्वितीया कावा, द्वितीया कुछ भी नहीं है। और ऐसा कथन करने के बाद सारी विभूतियां ब्रह्माणी रुद्राणी उस देवी के शरीर में अंतर्भूत हो गई। तब जाके महासंग्राम हुआ। उपनिषद में आता है एको देव सर्वभूतेश गुड्ढ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। आप विचार करें चाहे पौराणिक दृष्टि से या वैदिक दृष्टिकोण से, तो हमारे यहां भी एक ही देव एक ही चैतन्य है, वही नाना रूप धारण करके भक्तों का कल्याण करता है। परंतु अज्ञान से वे कहते हैं कि बहुदेववादी है, एक देव नहीं मानते हैं। सुनने में आता है कि मक्का में 365 मूर्तियां थी, पर मोहम्मद साहब ने 365 को खंडित करके केवल एक अल्लाह को छोड़ दिया। ऐसे ईसाई लोग बार बार आक्षेप करते हैं कि एकमात्र उनका यहोवा देवता है, बस वही देवता है, सारे देवता शैतान है, उनके यहाँ सब शैतान का है। पर वास्तव में हमारे यहाँ भी एक ही देवता माने गए हैं, पर अनंत जो है लीलाओं को करने के लिए अनंत स्वरूप को धारण किया है। जैसे कि रंग मंच पर जब रास करना होता है तो अनेक प्रकार से वहां पर साजबाज करने पड़ते हैं, रूप बनाने पड़ते हैं, कोई रावण बन गया, कोई जो है राम बन गया, कोई लक्ष्मण बन गया, कोई हनुमान बन गया। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य नाना रूप में परिणत हो जाता है या लीला करने के लिए। और यह भी तार्किक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ सभी सत्संग से बाहर जाएं, किसी ने आपकी चप्पल चुरा ली, तो आप इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? प्रधानमंत्री से करेंगे, राष्ट्रपति से, किससे करेंगे? चप्पल चोरी हो गई या दसवीं जगह का पर्स गुम हो गया तो पहले प्रेमपुरी आश्रम के व्यवस्थापक मैनेजर से करना पड़ेगा। इसके बाद ऊपर यहाँ के अध्यक्ष के पास शिकायत पहुंचेगी, वहां समाधान नहीं हुआ तो थाने में जाएगी, पर पहले यहाँ करना पड़ेगा। और सीधा थाने में जाएंगे या राष्ट्रपति के पास तो लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे बड़ा बेवकूफ है। ऐसे ही हमारे यहाँ ये व्यवस्था बनाई है, तत्त्व कामनाओं के लिए तत्त्व देवी देवताओं का उपयोग है। जैसे कि एक देश को चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं, एक प्रधानमंत्री है, एक वित्त मंत्री, एक रक्षा मंत्री, तरह तरह के विभाग बटे आवंटित हैं। ऐसे यहाँ पर भी देवताओं को उस चैतन्य विभाग बांट दिए हैं। यदि आपको विघ्न बाधा दूर करना है तो चंडी हैं, विनायक हैं, हनुमान जी हैं। धन प्राप्त करना है तो लक्ष्मी जी की उपासना, ज्ञान प्राप्त करना तो भगवान शंकर की, ज्ञानम इच्छित शंकरात, स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो भगवान भास्कर की उपासना करें, सूर्य की। एक वाक्य है, आरोग्य काम भास्करम यजेत, आरोग्य की कामना से भास्कर भगवान सूर्य की उपासना करे। यहाँ पर तत्त्व कामनाओं को लेकर तत्त्व उपासनाओं का विधान किया गया है, पर एक ही चैतन्य चैतन्य यहाँ पर दो नहीं है, यह भी एक ईश्वरवाद है। अब समय पूरा हुआ, कल विचार करेंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 8.

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ் 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரி உபநிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பூமௌ ஸ்கலித் பாதானாம் பூமி ரேவாவலம்பனம். பிருத்வி பர் ஹம் கிர கே, தோ கிரே கான் பிருத்வி பர். அப் ஜஹா பிருத்வி பர் கிரே ஹோ தோ பிருத்வி கோ ஹி ஆப் கோஸ்தே ரஹோ, இஸ் பிருத்வி நே கிரா தியா, யே துஷ்ட ஹே. லேகின் கிராயா தோ ஹே, ஓ வஹி பிருத்வி கியா ஹே, கஹா ஆப்கோ உடானே மே பி சஹயோக் கர்னே வாலி. தோ பூமௌ ஸ்கலித் பாதானாம் பூமி ரேவாவலம்பனம், ஆலம்பன் பி வஹி பனேகி. तो इसका मतलब सर्वथा हम शरीर का, संसार का, ये मिथ्या जरूर है. ये हमारे लिए जो है क्या है, के लिए हमारे आनंद की अवरोधक है, हमको गिराने वाली. लेकिन उसका सहयोग उठेंगे भी हम तो इसी के द्वारा. तो भूमो उसका निपादा नाम भूमि रहेगा अवलंबनम, अवलंबन भी ये बनेगा, अवलंबन बनेगा, सहारा बनेगा, लेकिन मंजिल नहीं. इसलिए कहा कि जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, और जो गिरकर समल जाए है जीत उसकी. निशा मंजिले ये पैरों के छाले, कहां जा रहा है वो जाने. ये सारी की सारी हमारी जो मंजिलें हैं, जो हमने तय कर रखी है ना, जिनको हमने मंजिल समझा, वो सब क्या है, निशा रूप, अंधकार रूप, अज्ञान रूप. जिन्हें हम मंजिल समझते वो वास्तव में मंजिल नहीं. फिर आगे कहा, कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहां है, कभी ये विचार किया कि वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है. कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहां है. और आगे कहा, बहे से जहां में तेरा दर कहां है. ये संसार क्या है, प्रवाह रूप है. और इस प्रवाह रूप संसार में कभी विचार किया कि वास्तव में मेरा घर कहां. और आगे संकेत कर दिया, इतना ही नहीं. तो अब जब ये सब स्थिति बतला दी, तो और कहने लगे कि बांधे थे बंधन क्यों तोड़ डाले हैं? तो अब क्या है, सारे हमने संबंध बनाए, लेकिन क्या कोई संबंध हमारा साथ देता है. जितने भी हमने संबंध बना लिए, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, मैं ज्ञानी हूं इस प्रकार के जो है अपने विद्या और जो है बुद्धि के संबंध बना लेना, लेकिन ये कोई भी संबंध साथ देता और कोई भी मंजिल रूप नहीं है, तो ये जो है संकेत किया. इसलिए कहा, कहां जा रहा है हो जाने वाले, अंधेरा है दिल में दिया तो. दिवाली तो है, और किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी,

किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी, क्या लिखा, दीपक तो जलाओ, हम लोग भी दीपक जलाते, दीपक जला लिए हैं, फटक्के चला लिए, मिठाइयां खा ली, दिवाली हो गई, लेकिन दिवाली का मतलब क्या। कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जाए। और कैसे दीपक जलाओ, संकेत किया,

न जाए, संकेत किया। हम लोग भी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान तो प्राप्त हो, ज्ञान का दीपक जले, हमारे जीवन में विद्या आए, हमारे जीवन में कला आए, लेकिन वो कला वो विद्या कैसी होनी चाहिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर, और कहा नई ज्योत के धर नए पंख जिल मिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग। क्या सुंदर का, उसमें वह प्रकाश होना चाहिए जो हमने दीपक जलाया है। तो क्या होना चाहिए, तो कहने लगे वो प्रकाश वो होना चाहिए कि जिसके द्वारा हम जो है जिस पृथ्वी धरातल पर है नीचे पड़े हुए हैं, तो वहां से जो है वो प्रकाश हमको उठा करके क्या करे, गगन स्वर्ग छू ले, ऐसी ऊंचाई तक हमको ले जाने वाला हो, हमें उस उत्थान की तरफ ले जाने वाला हो, ऐसा प्रकाश ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में, तो उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छू ले। यह मर्त लोक की, तो मर्त क्या है, जहां मर धर्म जन्मना मरना है, पुनरप जननम पुनरप मरणम, तो इससे हमारी निवृत्ति हो, इस मृत्यु के स्थल से हम उठ जाएं, अर्थात हमारी मृत्यु न हो और मृत्यु न हो, और क्या है तो उस आकाश की असास गगन की है, उस चिदाकाश की हमें प्राप्ति हो, ऐसे दीपक हमारे जीवन में जलने चाहिए। तो जो हमारी पराधीनता है, जो सुख दुखों की श्रृंखला है, वो ही समाप्त हो जाए। और संकेत किया, नई ज्योत के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी है, ऐसा प्रकाश आ जाए कि वहां अंधकार जो है, उस अंधकार के होने पर भी वो अंधकार का है क्या है कि वहां अंधकार में तम प्रकाश जो है प्रवेश न कर पाए, माने वही मार्ग भूल जाए, अर्थात वो माने अंधकार हमें पराभूत, अज्ञान हमें पराभूत न कर। लेकिन होता क्या, संसार के अंतर्गत व्यवहार में जब हम लोग वर्तते हैं, और व्यवहार में वर्तते हैं, तो आप देखते हो दो भाई हैं, भाई भाई में क्या व्यवहार होना चाहिए, और भाई भाई में जब वो व्यवहार होता है तो दोनों सुखी होते हैं, लेकिन वहीं अज्ञान को लेकर के जब राग द्वेष आ जाता है तो भाई भाई को मारने को तैयार। इसलिए संकेत किया कि वो तम हमारे में न आ पाए, ऐसी रोशनी हमारे जीवन में आए, ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में आए कि जिसको लेकर के वो तम ही मार्ग भूल जाए, और जब वो मार्ग भूल जाएगा तो राग और द्वेष आएगा नहीं। और इसी को भगवान कहते राग द्वेष भी युक्त इसु विषयान इंद्रियम, जीवन में जियो लेकिन कैसे जियो, तो राग द्वेष से रहे, तो जितना भी उपद्रव होता है वो सब किसको लेकर के होता है, राग और द्वेष को लेकर। तो लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का है वह कृण द्वार जगमग, उसा जा न पाए निशा। वो ज्ञान हमारे से अलग न हो, वो ज्ञान हमारे में सर्वदा बना रहे, वो इस प्रकार की जब स्थिति बनी रहेगी तब ये जो है, हर्षित भये गए सब सोखा, ये बात होगी, तभी सारा संसार प्रसन्न होगा, चारों तरफ आनंद की स्थिति होगी। और जब तक ये नहीं होता है तो हम दीपक तो जलाते रहें लेकिन फिर भी अंधकार मिटने वाला, तब तक वो दिवाली हमारे काम आने वाली नहीं। तो दीपावली का लक्ष्य क्या है वो हम समझें। और आगे तो बड़ा सुंदर उस कवि ने लिखा, सृजन है अधूरा अगर वे सुभर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी,

न जाए। क्या कल्पना, सृजन है अधूरा। आप जो अपने को कर्मयोगी मानते हो, तब तक आपका कर्म अभी अधूरा है। किसका? मानव का। सृजन है अधूरा, तब तक आपकी सृष्टि, आपका कर्तव्य है जो आपाधापी चल रही है, वो सब तब तक निरर्थक है, न्यून को प्राप्त है। सृजन है अधूरा, अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। यदि कहीं पर भी शारीरिक दृष्टि से ले लो, यदि किसी भी हमारी इंद्रिय के अंतर्गत बेचैनता है, तो समझ लेना अभी जो है हमने अपने में ठीक ज्ञान नहीं कर पाया और ठीक ढंग से अपने को नहीं समझ पाए, और तभी हमारे अंदर कहीं ना कहीं विक्षेप और दुख बैठा। और ऐसे ही समष्टि की दृष्टि से सृजन है अधूरा, अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। और कहने लगे, मानव जीवन की सार्थकता मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, तब तक मनुज शब्द का प्रयोग कर दिया, मनुजता, तो मनुज क्यों है, क्या है, तो मनोरपथ्यम इति मानवा भी बनता है, होशी मनोर जाता है तो मनुजा बनता। तो जिस मन से, जिस अंतःकरण से तुम्हारा उदय हुआ है, तो ज्ञान भी उसी से उदय होता है। और जो मनु पूर्व में कह दिए गए, जो ब्रह्मा के पुत्र आदि, लेकिन उन मनु की स्थिति क्या थी, जिससे सारी सृष्टि को माना गया, वही मनु शत्रुपा भी कहा गया और मनु श्रद्धा भी कहा गया, जो कामायनी आदि ग्रंथ हैं हिंदी के, उनमें आता, उनसे सारी सृष्टि को स्वीकार किया गया। लेकिन वो मनु ने जब सृष्टि की तो कैसे की, तो तप पूर्वक, यज्ञ पूर्वक। और तप किया तो मनु ने कैसा तप किया, तो रामायण में आप सुनते हो, ठाड़े रहे एक पग दो ऊ, इतना तप किया मनु और शत्रुपा ने मिलकर के कि दोनों जो है एक पग पर खड़े रहे। और जब एक पग पर खड़े रहे तो भगवान आए, और भगवान ने जो है उनको जो है उनके तप का फल देने के लिए कहा, वरदान के लिए कहा, तो उन्होंने क्या मांगा, तब समान शुत, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। अब जब ये कहा तो कौन आ गया, स्वयं भगवान ही आ गए। लेकिन ये कब हुआ, उसी समय नहीं हुआ, ये फल उसी समय नहीं मिला, कब मिला, तो मनु, तो मन को आप क्या कहते, मन समय दृष्टि की दृष्टि दे रहे हो, तो हमारा मन ही मनु है, इसके बगैर सृष्टि नहीं होती। और मनु के साथ में रहने वाली उनकी धर्मपत्नी कौन है, शतरूपा है, सततः रूपाण यस्य सा शतरूपा, सैकड़ों है रूप जिसके, मन की जो वृत्ति है उसका कोई एक रूप, तो मन की वृत्ति ही क्या है, सैकड़ों रूप। लेकिन जब वही मन क्या करता है, तप करता है, और तप करता है तो तप करने के समय जो शत्रुपा उसका साथ देती है, वो वृत्ति भी उसका साथ देती, और वृत्ति जब साथ देती है तो दोनों क्या होते हैं, ठाड़े रहे एक पग दो, अब उनके अंदर विविधता नहीं, एक में स्थित हो जाते हैं, एक रूपता आ जाती है। और जब एक रूप आ जाती है तभी उन्हें मनु और श्रद्धा कह दिया जाता, तब वो सत्य को ही धारण करने वाले होते। तो श्रुत दधानाति श्रद्धा, जो सत्य को ही धारण करने वाली वृत्ति है उसी का नाम है श्रद्धा। और जब ये जीवन में आता है तो फिर दूसरे जन्म में वो क्या हुए, राजा दशरथ बने मनु, और जो है तीन उनकी रानियां हुई, माने तीन वृत्तियां हुई। वो कौन सी वृत्ति, तो कौशल्या ज्ञानात्मिका और कैकेयी क्रियात्मिका और सुमित्रा उपासना। और दशरथ अर्थात इंद्रियों पर जो है संयम रखने वाले ऐसे राजा दशरथ हुए। फिर उनके यहां कौन आए, तो चारों पुरुषार्थी आ गए, मुदित अवधपत है, सकल सुत बदुन समेत निहार, जनु पाए महिपाल मन है, क्या है, जन क्रियन सहित फल चार, ये संकेत कर दिया। तो ये श्री, तो कहने का तात्पर्य है
कि यहां पर भी जो कह रहे हैं कि मनुष्य का अर्थात मनुष्य की सार्थकता क्या है, हम अपने पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर लें और पुरुषार्थ चतुष्टय जब हमको प्राप्त हो जाते हैं तभी मानव जीवन की सार्थकता होती है। ऐसा नहीं कि कोई यदि छूट जाए तो बात नहीं बनेगी, चारों ही पुरुषार्थों की प्राप्ति होनी चाहिए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों ही उपादेय, लेकिन परम उपादेय कौन है तो वो है मोक्ष, इसकी चर्चा भी कर रहे। अब जो है यहां पर इस प्रकार से मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यास, तब तक जो है मानव की मानवता सार्थक नहीं है। यदि जरा भी कहीं पर है क्या है उपद्रव खड़ा हुआ है राग देश को लेकर के, तो अपने ही अंतर्द्वंद चलता रहता व्यक्ति के अंदर ही क्या होता अंतर्द्वंद, और जब तक उसके अंदर संकल्प विकल्प अंतर्द्वंद चलता रहता है तब तक उसके जीवन में शांति होती। अशांति हमारे जीवन में तभी होती है जब हमारा संकल्प मात्र रह जाता है और विकल्प ही समाप्त, या उन संकल्प और विकल्पों में राग और द्वेष निकल जाता है, उसमें केवल एक ही प्रकाश होता है, तो जो है वहां पर हमको शांति होती है, और यदि ऐसा नहीं तो शांति भी नहीं। इसलिए कहा सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के। अब आपने कुछ इंद्रियों को तो बस में कर लिया और कुछ इंद्रिय अभी जो है बस में नहीं हुई, तो तब तक क्या है, तब तक शरीर में युद्ध चलता, तब तक उपद्रव। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय के अंतर्गत आपकी वह बोलता, तो इसीलिए आत्मानम रथिनम विद्धि जो संकेत उपनिषद ने किया, तो इसीलिए क्योंकि हम आत्मा के अनुसार हमारी बुद्धि हो, उस मणि को लेकर के बुद्धि चले और बुद्धि के अनुकूल मन रहे और मन के अनुकूल हमारी इंद्रियां रहें, और ये होगा तो राम राज्य, तो वहां प्रसन्नता हमेशा रहेगी। इसलिए यही मनुष्य का धर्म है, यही मानव जीवन है। इसलिए कहा मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लोहू के लिए भूमि प्यास, चलेगा सदा नाश का खेली हुई, और तब तक ये जन्म मरण का श्रृंखला जो है वो समाप्त होने वाली नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। तो चलेगा सदा नाश का खेली हुई भले ही दिवाली, तो हम ज्ञान हम आपको बताएं, आप हमको बताओ, बड़ी शिक्षाएं चल रही हैं, नई नई शिक्षाएं निकाली जा रही, लेकिन हम खड़े कहां, हम वहीं के वहीं। इसलिए संकेत किया कि वह ज्ञान होना चाहिए, वह दीपक हमारे जीवन में आना चाहिए जो हमारे अंधकार को मिटा करके और हमें एक मानवता प्रदान कर सके, और मानवता प्रदान जब हमारे में होगी तभी हम सब सुखी हो पाए। ये संकेत, और इतना ही नहीं कहा, आगे और बड़ी सुंदर बात कही।

0: अकेला कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब स्वयं धर्म मनुज दीप का रूप आए जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो क्या संकेत किया, कहा केवल दीपक की दीप्ति से काम चलने वाला, अर्थात केवल हम एक विषय का ज्ञान प्राप्त कर लें उससे भी काम चलने वाला, मगर दीप की दीप्त से सिर्फ जग में, और जो है सारे विषयों का ज्ञान कर लें का तो भी चलने वाला है। उतरन क्यों ना आवे नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा, ये तब तक प्रकाश हो सकता नहीं, ये कब होगा। कहने लगे कटेगी तभी यह अंधेरी गिरी, इस अज्ञान की निवृत्ति तभी हो सकती है जब क्या है स्वयं धर्म मनुज दीप का रूप, सारे मनुष्यों के अंतर्गत ये आत्मसत्ता का ज्ञान जब हो जाता है और एक आत्मसत्ता को जब देखने लगते हैं तो सर्वत्र जो है समदृष्टि, तब क्या होता है तो भगवान जो गीता में कहते हैं आत्मउपमेन सर्वत्र शमम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो। वो कहा योगी नहीं, कौन है कहा, जो व्यवहार में समत्व को धारण करने वाला है, ऐसा जो ज्ञान रखने वाला है, ऐसे जो अपने बुद्धि रूपी दीपक को जलाने वाला है। तो कहने लगे उसके लिए तो फिर क्या है, सुख दुख में जब सम हो गया तो वो योगी नहीं परम योगी। गुफा में बैठ करके, मंदिर मस्जिद में बैठ करके समाधि लगाने वाला, एकांत स्थल में बैठ करके समाधि लगाने वाला योगी होगा, लेकिन ये कौन है, कहा ये योगी नहीं है, ये तो परम योगी, मैंने उस योगी का भी योगी। तो ये संकेत कर दिया, तो ये कब होगा, तो तब। सच तो ये है भारतवर्ष की संस्कृति, इसलिए क्या कहा गया, गायंत देवा किल गीत कानी धन्यासुते भारत भूमि भागे। संकेत किया देवता लोग जो है भारतवर्ष की का जो है गाथा गाते, अमेरिका की क्यों नहीं गाते, जापान की क्यों नहीं गाते, ये प्रश्न आप कर सकते हो कि वो तो बहुत विकास, कहा विकास तो उन्होंने किया लेकिन वो विकास सारा कहां है, कहा भटकने में ही है, वो विकास है लेकिन जो है जिस उत्थान को प्राप्त होना चाहिए वो उत्थान उनको प्राप्त, वो संस्कृति कहां थी, भारतवर्ष में थी, इसलिए भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है उसके वो गीत का गायंत देवा किल गीत कानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे। ये संकेत स्वर्ग अपवर्गा करके आगे भी संकेत कर दिया। तो ये क्यों, क्योंकि यहां की संस्कृति ही बड़ी उदात्त संस्कृति हमेशा रही, आज हम उस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हमारे रीत रिवाजों में दैनिक चर्या में हमारी संस्कृति को बांध दिया गया था, जिसके अंदर एक वैज्ञानिकता भी थी। वैसे तो मास दिन पुराणों में आप देखो मास भी बड़े सोच समझ के नाम रखे गए, जैसे आप ज्वेलर्स स्मिथ के नाम से जो है पाश्चात्य लोगों ने जौलाई नाम रख दिया, उनके ऐसे नाम पड़े, लेकिन आपका उसी जिसे जौलाई आदि कहते वो हमारे यहां शुरू हुई हुआ श्रावण, क्या हुआ, और श्रावण का मतलब क्या, तो पहले ये साधन नहीं थे, ऋषि लोग घूमते थे विचरण करते थे और जब वर्षा ऋतु आ जाती थी तो एक जगह रह के चातुर्मास किया, अब तो फॉर्मेलिटी होती है ना, चातुर्मास में नियम था कि हम उस परमात्मा का अनुष्ठान करते थे और सब शास्त्रों का श्रवण और मनन करते, इसका नाम था चातुर्मास। तो इसलिए श्रवणे भवायति श्रावण, श्रवण से होने वाला जो मास है उसी का नाम है श्रावण, और जब श्रवण करेंगे तो विवेक होगा, और विवेक होगा तो विवेक के अनुसार जो है आगे हम फिर उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे, इसलिए आगे रखा था कि जो कल्याण का मार्ग है उस कल्याण के मार्ग पर हम चलें, तो भाद्रपद रखा था, क्या रखा था, भद्रे भवायति भाद्र, तो भाद्रपद माने जिस मार्ग का हम अनुसरण करें वो हमारा कल्याण का मार्ग हो, और फिर भी जब कल्याण के मार्ग में चलते कोई ना कोई अवरोध आ जाते तो आश्विन मास को करके दे दिया, और अवरोध आ जाते हैं, वर्षा भी होती है तो वृक्ष गिर जाते हैं, रास्ते रुक जाते हैं, तो क्या करना, तो आगे कार्तिक मास आया था, क्रांति कतरनी अर्थ में धातु, कहा जो मार्ग में अवरोध आ गया जिसे गीता में भी संकेत किया उसे काट डालो, ये कार्तिक मास था, ये महीनों के नाम भी बड़े सोच के रखे, और उस कार्तिक मास में जब आपका विघ्न समाप्त हो गया तभी तो दिवाली आएगी, और वर्षा ऋतु से जो जीव जंतु वो भी सब वैज्ञानिक रूप भी था, लेकिन उसकी चर्चा करने समय फिर ज्यादा हो जाए। तो इस प्रकार से कार्तिक आदि मास दिए गए थे और उसी कार्तिक में फिर दीपावली की बात कही गई थी, जिसमें दीपक जलाने पर हैं सारे सारे जो कीटाणु रह भी जाते हैं सफाई करने के बाद, और तो क्या होता कहा वो दीपक की लौ के पास आते हैं और वो भी जल करके, ये सब बहुत शोध करके रखा गया था। और उसके बाद आगे अगहन शब्द आता है, मने कहने लगे इतना करने के बाद भी यदि कोई पाप रह जाए, कोई विरोध बीच में आ जाए, तो कहा उसका भी हनन कर दो, और उसका भी हनन कर दो तब क्या होगा, तो पौष मास आया, तब जो है जब सारे पाप तुम्हारे निवृत्त हो गए, सारे विघ्न निवृत्त हो गए, तो जीवन में पुष्टि आती है, हैं पूषे भवायति पौष्य, तब हमारे जीवन में पोषण होता है। और फिर भी अब जो है ध्यान रखना, माघ माने नहीं अग माने पाप, अब आगे कोई पाप या कोई अशोक मार्ग का अनुसरण नहीं करना। और तब जब आ जाएगा फिर क्या करना, तो आगे फाल्गुन शब्द, फल्गु शब्द का अर्थ होता व्यर्थ, तो फल्गु का क्या करो, तो कहने जला दो उसको, इसलिए होली रखी गई थी, है ना, फाल्गुन माने वो जो जो भी फल्गु अब जो व्यर्थ है उसको जला डालो। और भी उसके वैज्ञानिक अर्थ है अंध विद्यार्थि को लेके, और तब क्या आएगा, जब जो व्यर्थ था तुम्हारे पास पड़ा हुआ उसको भी जला दिया, तब कहने लगी तब नई चेतना आती। ऋतु भी यही संकेत करती, वसंत ऋतु सारे पतझड़ों को वृक्ष छोड़ देते हैं, प्रकृति भी संदेश देती है और उसमें एक नई चेतना आती है। और इसी प्रकार से है चैत्र शब्द ही उसको रखा गया, माने नई चेतना आती है। और जब नई चेतना आ गई तो नई चेतना भी किसका आश्रय ले, वैशाख, वही है सवई श्रेष्ठा सवई ज्येष्ठा, जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को क्या करो, वैशाखी कहते ना सहारा, उसी को अवलंब बनाओ, अब अन्य को अवलंब नहीं बनाओ। और जब ये करोगे तो क्या होगा, आषाढ़ आसमंता साढ़यति आनंदयति इति आषाढ़, तब जीवन में सम्यक रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। ये सारे के सारे थे, तो इसलिए चर्चा कर दी दीपावली के कारण। तो हमारे जीवन में भी दीपावली का वास्तव में क्या रूप है, कि राम राज्य जैसे हुआ वैसे ही हमारे जीवन में भी सबके जीवन में सुख आए, और वो कब आएगा तो मानवता, और वो मानवता कब आएगी कि हम सबको ज्ञान दें और हम स्वयं भी ज्ञान के अनुसार चलें और दूसरों को भी ज्ञान के मार्ग से चलाएं। वास्तव में तो समाज शब्द हम लोग बोलते हैं, पार्टियां भी बनी है समाजवादी पार्टी है आर्य समाज क्या क्या, लेकिन समाज शब्द का अर्थ क्या, समम सह यजंत यत्र स समाजा, किसी भेड़ों के इकट्ठे होने के नाम का को लेकर के समाज नहीं कहा जाता, जहां पर सब ज्ञान पूर्वक मिलकर एक साथ चलें उसका नाम है। तो ये सारे उद्देश्य हैं, अब ज्यादा चर्चा न करते, ओम सचिद,
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

पूर्वम पूर्वियम सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्मा पूर्वियम तत्र योनिम् कृणवसे नहि ते पूर्त मक्षिपात। अब कहते हैं, पहले आपको बतलाया कि तीन प्रकार के क्या अग्नियाधान और सोम समाधि कहाँ ध्यान कहाँ करना चाहिए बताया था। आनी बस अभी समाधि लगाने की तरीका बता रहे हैं। सवित्रा प्रसवेन, सवित्रा यहाँ तृतीयांत है, सविता शब्द है, सविता सविता सूर्य को भी कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं। तो सवित्रा प्रसवेन, सविता माने सविता देव आदित्य भगवान सूर्य नारायण। तो सविता देव प्रसवेन, सवित्रा देव के द्वारा प्रसवेन माने उत्पन्न करने से। तो यहाँ क्या, सवित्रा देव के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके, हमने पहले प्रार्थना किया है ना, ध्यान करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की गई, अनुज्ञा लिया, अनुज्ञा लेकर के देवताओं से अनुज्ञा लेकर के ध्यान में बैठा। तो सवित्रा प्रसवेन पूर्वम ब्रह्म जुषेत, पूर्व माने पहले, पूर्व शब्द आया, पूर्वीय वेद का मंत्र होने से पूर्वीय उच्चारण करने के लिए, वेद का मंत्र जो ना डबल डबल उच्चारण करना पड़ता, याद रखना, पूर्वीय पहले ब बोलेगा फिर बी बोलेगा। ब्रह्म जुषेत, ब्रह्म की सेवा करना चाहिए। पूर्व माने पहले, ब्रह्म कैसा है कहते, पूर्व है। अभी ब्रह्म पूर्व कैसे है अभी इसको बाद में बताएंगे। तत्र योनिम किण्वसे, तत्र माने तस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में, योनिम माने समाधिम, किण्वसे करना चाहिए। यहाँ योनि का शब्द होता है निष्ठा, आनी बात। तो तत्र ब्रह्मणि योनिम निष्ठाम अथवा समाधिम किण्वसे, समाधि करना न करने से क्या होगा, समाधि नहीं लगाने से क्या होगा, ब्रह्म को नहीं जाने क्या होगा। तो कहते नहीं ते पूर्तम अक्षिपत, अगर यदि तुम इसको नहीं करोगे तो पूर्तम अक्षिपत, पूर्तमाने पूर्त कर्म, दो प्रकार के कर्म होते हैं ना, इष्ट और पूर्त, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, पूर्त कर्म। तो पूर्त कर्म तुमको बांधेगा, अगर समाधि नहीं लगाया तो क्या होगा, पूर्त कर्म तुमको संसार में बांधेगा। तो देखो यहाँ इस पर ध्यान देना, पूर्व्यम ब्रह्म जुषेत, ब्रह्म पूर्व है, पूर्व माने पहले है, पहले माने सबसे आगे है, आगे का मतलब सबका कारण है, सबका अधिष्ठान कहो, कारण कहो, आश्रय कहो, तो सबका किसका है, सबका कारण, सब क्या आशीज है, ये है। अभी देखो आप सामने तुम्हारा एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ है, गुलाब का फूल देखा, अरे ना,
तो गुलाब के फूल को जो तुमने देखा, गुलाब का फूल पहले से था? तो नहीं था तो देखा कैसे? नहीं, गुलाब का फूल है, था तब देखा। तो था का शब्द क्या है? गुलाब का फूल था, ये भूतकाल हो गया, था गुलाब का फूल था, और आपका जो गुलाब का फूल है अभी वर्तमान है, तुमने गुलाब का फूल है ऐसे देख रहे हो। एक गुलाब के फूल को

आनी बात। और मन से पहले कौन है? बुद्धि है। बुद्धि से पहले कौन है? अहंकार। अहंकार, अहंकार से पहले कौन है? महातत्व। महातत्व से पहले कौन है? ब्रह्म तत्व से पहले कौन है? आज बात प्रकृति। हाँ, प्रकृति, प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्रा, पंचतन्मात्रा से गणस्व षोडश, ये क्रम आया। और प्रकृति से पहले कौन है? पहले कौन है? आत्मा है। आनी बात। तो सबसे पहले कौन हुआ? तो सबसे पूर्वम ब्रह्म है। तो ब्रह्म पूर्वम जुषेता सेवता, सेवा करना, ब्रह्म की सेवा करना चाहिए। तो सेवा का मतलब क्या होता है उसको जानना चाहिए सबसे पहले जो है। तो ब्रह्म को जानने के लिए करना क्या चाहिए? जो ब्रह्म को जानना है सबसे पहले जो ब्रह्म है, आत्मा है, एक साक्षी भाव है, उसको जानना चाहिए। तो कैसे जानोगे? तो जानने का साधन जानना चाहिए ना। जाने बिना कल्याण नहीं होने वाला है। जाने बिना कल्याण नहीं होगा। अब जानने के लिए क्या चाहिए? का इष्टापूर्त कर्म, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, ये यहां बताते। तत्र योनिम कुरियात, तत्र निष्ठाम कुरियात, कस्मिन ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में निष्ठा करने चाहिए। निष्ठा माने समाधि लगना चाहिए। कौन से ब्रह्म? अरे अभी बताए ना, सबसे पहले जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में निष्ठा करना चाहिए। निष्ठा माने समाधि, समाहित हो जाना चाहिए। और नहीं समाहित होने, वो ब्रह्म में निष्ठा नहीं करने से, ब्रह्म का आश्रय नहीं लेने से, ब्रह्म को न जानने से हानि किया है। तब वो आगे का श्रुति बताती है, नहीं थे पूर्तम अक्षिपत। पूर्त कर्म होता है। इष्ट कर्म, पूर्त कर्म, दोनों कर्म द्वारा बांधता है। जैसे इष्ट कर्म है, ज्योतिष तुमादि है, बड़े बड़े यज्ञ, राजसीय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, अरे बात सोम यज्ञ है, राजा राजसूय न जीता की विधि बनाया। राजा लोगों को राजसूय यज्ञ करना चाहिए। अश्वमेध न जजेता, सर्व काम वही ज्योतिषो में न जजेता, ब्राह्मणा बृहस्पति जपे न जजेता, ये सब विधि बनाया, ये सब नियम बनाया। आप राजा है तो कौन सा यज्ञ करेंगे? राजसूय यज्ञ करेंगे, अथवा अश्वमेध यज्ञ। जैसे राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया कि नहीं? अश्व को छोड़ा था, पूरा देश घूम करके आया। तो फिर तो जो राजा राजसूय यज्ञ न जजेता, अश्वमेधे न जजेता, स्वर्ग काम ज्योतिषो में न जजेता, सोमजाग करो, ब्राह्मण और बृहस्पति जाग करो, ये विधि है। ये विधि से बंधा हुआ सब है। ये बड़े बड़े यज्ञ जो करते हैं, बड़े बड़े जो अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े राजा लोग करते हैं, पैसा वाला लोग करते हैं, धनाढ्य लोग कराते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ भी करते हैं। पुत्र काम हुए पुत्रेष्टि ना जजीता, जिसको पुत्र चाहिए वो पुत्र से यज्ञ करावे। तो ये सब कर्म सब बंधन का हेतु है। और इसी प्रकार समझ लेना, ये तो बड़े बड़ों के लिए। अब पूर्त कर्म जो करते हैं, पूर्त कर्म आनी बात, पूर्ति के लिए जो करते, सामाजिक सेवा के लिए करते, दान करते हैं, यज्ञ दान तप कर्म करते हैं, बावड़ी बनाते हैं,

0: धर्मशाला बनाते हैं, मंदिर बनाते, सत्संगाल बनाते, गौशाला बनाते हैं, यज्ञशाला बनाते हैं, है नहीं बात? पूर्तवानी अभाव की पूर्ति के लिए जो समाज करते हैं एक पूर्त कर्म, परंतु इसके पीछे यदि अहम भाव जोड़े तो बंद जाएगा, याद रखना। तुम कितना भी करो, सब कुछ करो, परंतु उसके साथ जो अहम जोड़ गया, मैं और मेरा, तब कर्म जो है ना आपको फल दिए बिना पीछा नहीं छोड़ेगा, फल देगा। तो फल भुग करने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, बंधन जाएगा। पूर्त कर्म पंच महायज्ञ होते हैं गृहस्थ आश्रम में, पंच पापात प्रमुच्यते है। गृहस्थ आश्रम में पांच पाप होता है, अन्य बात ख्याल आए कि नहीं? हाँ, पेशानी, पेशानी माने पीसने वाला, हाँ चुल्ली, पेशानी, हाँ उदकुंभ, जल का जो घड़ा रखते हैं ना, आजकल तो सब नलका से आता है घड़ा रखते, फिर भी तक कीड़ी जो आ जाती है, जहाँ टालना है। अभी कितना भी माला में जाओ, वहाँ कहाँ से लाल लाल कीड़ी पैदा हो जाता है, मूंगी मूंगी, पेशानी, उदकुंभी, है नहीं बात? जल का पात्र जो घड़ा रखते थे, वही है ना, झाड़ू लगाने वाला, झाड़ू लगाते हैं ना, वहां भी कीड़े मकोड़े तो मरते ही है। पंच पापात पंचयज्ञात पंच पाप प्रमुच्यते है। तो यहां भी पांचों पापों से मुक्त होने के लिए पांच महायज्ञ करते हैं गृहस्थ में। ब्रह्मयज्ञ, नृयज्ञ, भूतयज्ञ, आने पास नृयज्ञ, ये यज्ञ किया जाता है, पशु को देना, पितरों को देना, आनी बात, मनुष्य का अतिथि सेवा करना, ये सब यज्ञ होते। तो पंचयज्ञ पंच पाप प्रमुच्यते, पांच प्रकार के यज्ञ करोगे, पांच प्रकार के पापों से मुक्त हो जाओगे। अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। अब वो मानना न मानना सुनने वाला का काम है, सुनने वाला माने चाहे न माने, तो कहेगा कि वो तो शास्त्र में लिखा, हमारे लिए थोड़े लिखा है। तो शास्त्र में जो लिखा, संविधान बनाया, शास्त्र एक संविधान है, संविधान यानी बात, आश्रमियों के लिए शास्त्र एक संविधान है, और संविधान ने न मानने से क्या होगा, दंड का भागी बनना पड़ेगा, संविधान नहीं मानने से। जैसे समझो यहाँ लाल बत्ती है, हरा बत्ती है, पीला बत्ती है, आए कि नहीं सिग्नल पर? अच्छा, ये क्या चीज है? ये संविधान है। लाल बत्ती देखोगे तो कैसा क्या करोगे, हरा बत्ती देखोगे क्या करोगे, पीला देखोगे क्या करोगे? पीला क्या बतलाता आपको? होशियार हो जाओ, तैयारी करो, और हरा बत्ती चल पड़ो, और लाल बत्ती तो ये तो पुलिस रहे सा नहीं रहे, पर आपको करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्यों क्यों? कोई इधर इधर देखती आज चल दिया तो कोई पुलिस आए नहीं, इधर भी देखा, इधर भी कोई कोई करता है ऐसा, इधर देखा, इधर देखा, चल पड़ा। ठीक है, तुम एक एक आध जगह से बच जाओगे, तीसरे जगह में पकड़ जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट होता है कि नहीं ऐसे आदमियों का? तो ठीक इसी प्रकार समझना, संविधान है, सरकारी संविधान है, तो सरकार के संविधान को नहीं मानने से जैसे हमको दंड भोगना पड़ता है, चाहे भलाई पुलिस रहे चाहे नहीं रहे, हाथ उठे चाहे नहीं उठे, हमको मानना चाहिए। ऐसे ईश्वरीय संविधान है शास्त्र, शास्त्र में जो लिख करके गया है वो शास्त्र को लिखा को मानना, और नहीं मानेंगे तो कुछ बोलेगा कोई नहीं, परंतु ईश्वरीय दंड भोगना पड़ेगा, याद रखना दंड भोगना पड़ेगा। जैसे आप आए ना वकील साहब है ना, म्यूनिसिपल या टैक्स नहीं भरे तो भरने पर भी दंड भरना पड़ता है, नोटिस आ जाता है, देखो सरकार कैसे कैसे कर रहा है। तो कहने का मतलब इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, हाँ ये कर्म क्या करता है, कर्म करने वाला को हाँ? ये सकाम भाव से करोगे बंधन होगा, और निष्काम भाव से करोगे तो कल के प्रसंग में बताया था अंतकरण की शुद्धि होगी। हाँ क्यों, गीता में भी कल बतलाया था कि नहीं, यज्ञदान तप कर्म न त्यज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञदान तपस्य पावनानि मनीषिणाम, एतान्यभित कर्माणि इन कर्मों को भी करो, संगम त्यक्त्वा फलानि च, संगो नाम आसक्ति ही, संग नाम तो कर्म के फल की आसक्ति, कर्म फल को त्याग करके करना चाहिए, आनी बात कर्म फल को छोड़ देना, और कर्म ये कर्म मैं कर रहा हूं ये कर्तृत्व अभिमान भी जोड़ना नहीं चाहिए। जहां हमारे कर्तृत्व अभिमान जुड़ गया किसी भी कर्म के प्रति, तो कर्म फल दिए बिना पीछा नहीं छोड़ा, ना भुक्तम क्षियते कर्म, आपने हजारों बार सुने हैं, अनिवार्य कल्प कोटि शतरपि करोड़ों कल्प व्यतीत हो जाए फिर भी कर्म फल दिए बिना पीछा नहीं छोड़ता। और कर्म तो हम जानबूझ करके करो, सांझन से करो, ये यहां बतलाते हैं पूर्तम अक्षिपत्ति नहीं थे। चलिए इसे भाष्य देखिए, सवित्रा प्रसवेन शस्य प्रसवेन इति जावत, सवित्रा का अर्थ कर दिया, यहां तृतीय अंत है ना, सवित्रा देख लेना, हाँ सवित्रा सवित्री शब्द है, सवित्री हाँ? सवित्री जैसे पितृ शब्द आएगी ना, भ्रातृ शब्द पितृ शब्द स्वश्री शब्द ऐसे सवित्री शब्द है, तो तृतीय अंत में सवित्रा, ये आगे प्रसव है ना, ये विशेषण दिया, प्रसव माने उत्पन्न करने का, प्रसव है ना इति जावत, तो सवित्रा माने सविता, भगवान जो है, भगवान जो सविता है उनके द्वारा प्रसूत, हाँ जो प्रसूत है, प्रसूत माने उत्पन्न किया हुआ है, प्रसूत है ना, जूषित सेवित ब्रह्म पूर्वम चिरंतनम, हाँ तो सविता से अनुज्ञा ले करके क्या करना चाहिए, हाँ ब्रह्म की सेवा करना चाहिए। तो सेवा का मतलब क्या है, चिरंतनम ब्रह्म सेवते जूषित सेवित, सेवा करना, सेवा करना, ब्रह्म की सेवा करो माने क्या है तो आगे बतलाया, तस्मिन तत्र तस्मिन ब्रह्मणि निष्ठाम समाधि लक्षणम कुरुस्व कृण्वसे कुरुस्व, तस्मिन ब्रह्मणि उस ब्रह्म में जो सबसे पहले ब्रह्म है ना, क्यों ब्रह्म देवानाम प्रथमा संभवुव विश्वस्य कर्ता भुवनेश्वर गुप्ता स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वाय प्राह अथर्वणय प्रभदेत ब्रह्म काम पूर्ववास ब्रह्म विद्या अंगिरसे। देखो आपने मुंडक उपनिषद पढ़ा होगा, मुंडक उपनिषद में पहले पहले आता है, ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संभव हुआ, सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्मा को उत्पन्न किया कि नहीं? यो यो हई ब्रह्मण देवानाम प्रभा संभव हुआ, यो ब्रह्माणाम विदधाति पूर्वम, यो वै वेदान स प्रहीणति तस्मै, तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, मुमुक्षुर वही शरणमहम प्रबद्धे। ये पढ़ा कि नहीं? कहाँ आया ये? अरे इसी में आएगा, इसी में आएगा, आगे आएगा, समझे ना? शांति पाठ में करते हैं। यानी वह सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ? ब्रह्मा जी। ऐसा कहते हैं ना, ब्रह्मा जो है भगवान के नाभि कमल से पैदा हुए, आए नहीं बहन? वो तो भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। तो ब्रह्मा में और ब्रह्म में अंतर क्या है? एक डंडा है जिसमें, ब्रह्मा में डंडा है तो ब्रह्मा बन गया। तो बहुत से आदमी जो है ना, दोनों को एक ही समझते हैं। तो डंडा काट देते गलती से, यहाँ आकार आ गया।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
2: ஓம் சிவாய நம. shaivam.org அன்பான நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருப்பது சிவ கீர்த்தனைகள். பாடல் பாபநாசம் சிவன் இயற்றிய உமையூர் பாகனே. ராகம் நாட்டை. பாடியவர் ஸ்மிருதி ஸ்ரீதர். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.

स्वस्तिदाय नमः सुधाम्ने नमः धात्रीधाम्ने नमः धामकराय नमः सवर्गाय नमः सर्वगोचराय नमः

महावीर्याय नमः, भूतचारिणे नमः, पुरंदराय नमः, निशाचराय नमः, प्रेतचारिणे नमः, महाशक्तये नमः, महाद्युतये नमः, अनुर्देश्यवपुषे नमः, श्रीमते नमः, सर्वाकर्षकराय नमः, मताय नमः, बहुश्रुताय नमः, बहुमायाय नमः, नियतात्मने नमः, अभयोद्भवाय नमः, ओजसे नमः, तेजसे नमः, द्युतिधराय नमः, नर्तकाय नमः, सर्वनायकाय नमः, नित्यघंटाप्रियाय नमः, नित्यप्रकाशात्मने नमः, प्रतापनाय नमः, रुद्धाय नमः, स्पष्टा

सुषेणाय नमः, सुरशत्रुघ्ने नमः, अमेयाय नमः, अरिष्टमथनाय नमः, मुकुन्दाय नमः, विगतज्वराय नमः, स्वयं ज्योतिषे नमः, अणुज्योतिषे नमः, अचलाय नमः, परमेश्वराय नमः, पिंगलाय नमः, कपिलश्मश्रवे नमः, शास्त्रनेत्राय नमः, त्रयीतनवे नमः, भगाय नमः, विवस्वते नमः, आदित्याय नमः, योगाचाराय नमः,

0: Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmanand Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तब विरोचन क्या करता है? इंद्रियों से दिखाई पड़े. हर व्यक्ति यही कहते हैं. तो इंद्रियों से क्या दिखाई पड़ता है? तो यही स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है सर्वत्र. सभी को या तो जड़ पदार्थ, संसार के पदार्थ दिखेंगे, और या फिर ये शरीर दिखेगा. तो वे लोग पत्थर को तो भले ही भगवान न माने, शरीर को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि उनको ये भ्रांति है. क्योंकि जो चलने फिरने वाला, बोलने वाला है, देखने सुनने वाला है, वही आत्मा हो सकता है. और वे लोग ये मानते हैं कि ये सब काम करने वाला शरीर है, पत्थर नहीं है, इसलिए शरीर ही आत्मा है. सबसे पहले इस चार बाग देहात्मवादी चार बागों का पक्ष को यहां रखा है. लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब क्रमश से सबका खंडन करने के बाद कहा भ्रांता वृषमवादिना, ये सब भ्रांत हैं. किसके द्वारा भ्रांत हैं? माया शक्ति विलास कल्पित महाभ्रांत हैं ये. तो उस माया के जो शक्ति विलास शक्ति है, उसके द्वारा ये भ्रांत हुए होने के कारण व्यामोह हुए हैं, व्यामोह को प्राप्त हुए. भ्रांत ही इसलिए व्यामोह को प्राप्त हुए हैं, इसलिए शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं. इसको कहते हैं संसार का अध्यास. जैसे लोहे के गोले को आग कह देता है कोई, तो लोहे का गोला लोहा ही होगा, आग तो हो नहीं सकता है. अग्नि अलग चीज है, लोहा अलग चीज है, लेकिन अग्नि के संसर्ग से उसमें उष्णता आ जाने मात्र से लोग कहते हैं कि अग्नि का गोला है. गोला ये गोल ये आकार अग्नि की नहीं हो सकती, अग्नि निराकार है. फिर भी लोहे का जो आकार है, उस आकार में अग्नि का संचार होने के कारण भ्रांत होकर लोग कह देते हैं कि अग्नि का गोला है. और लोग कह देते हैं कि ये लोहे का गोला लाल है, जबकि लोहा लाल नहीं हो सकता है. लाल ये अग्नि का धर्म है. अग्नि के लालपना को लोहे के गोले में आरोप करके लोहे का गोला लाल है कह देते हैं. अग्नि की उष्णता को लोहे के गोले में आरोप करके लोहे का गोला गर्म है कह देते हैं. और लोहे के गोले के गोलापना आकार को अग्नि में आरोप करके अग्नि का गोला कह देते हैं. अग्नि गोल नहीं हो सकता, लोहा गर्म नहीं हो सकता. अग्नि गोल नहीं हो सकता, लोहा लाल नहीं हो सकता. फिर भी भ्रांति, इसको कहते हैं संसर्ग अध्यास, अन्योन्य अध्यास. एक का धर्म दूसरे में और दूसरे का धर्म दूसरे में आरोप करके और दूसरे को दूसरे रूप में मान लेना, इसी को अध्यास है. चैतन्य की छाया, जिस छाया से युक्त हुआ हुआ, चैतन्य की तो बात ही छोड़ दो, चैतन्य की छाया का स्पर्श हुआ है. और छाया भी शरीर में नहीं पड़ सकता है, ये ध्यान देना. कूटस्थ का प्रतिबिंब अन्नमय कोश में नहीं पड़ता है. जैसे आपकी आपका प्रतिबिंब दीवारों में नहीं पड़ सकता है, इसी तरह कूटस्थ का परमात्मा का प्रतिबिंब छाया देह में नहीं पड़ सकता है. जैसे आपके शरीर का प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ सकता है, इसी तरह परमात्मा के प्रतिबिंब तो सूक्ष्म शरीर अंतकरण में पड़ सकता है, स्थूल शरीर में नहीं पड़ता है। लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नजदीक होने के कारण स्थूल में पड़ा हुआ परमात्मा की चित छाया को अंतकरण के संपर्क से स्थूल शरीर में भ्रांति से दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। वेदांत का रहस्य है, शरीर को चैतन्य मानने का और कोई कारण नहीं है, शरीर को चैतन्य मानने का और कोई कारण नहीं, एक ही कारण है। शरीर चैतन्य होकर चैतन्य माना गया नहीं है, शरीर मूल रूप में जड़ है और चैतन्य की छाया पड़ा हुआ है अंतकरण, वो अंतकरण के नजदीक स्पर्श में आने होने के कारण छाया का स्पर्श प्राप्त हुआ है। किसको? चित छाया का स्पर्श प्राप्त हुआ शरीर को, तो भ्रांति से शरीर चैतन्य जैसा लगने लगा है और जो वस्तु जैसा लगता है वो वस्तु वैसा होता नहीं है, तत्व तो यह है, इसलिए भ्रांति कहते हैं। देहम, तो कुछ लोग देह को ही आत्मा मानते हैं और चार्वाक इसलिए है कि सब लोगों को यही अच्छा लगता है। शरीर को आत्मा मानकर यदि कोई कह दिया जाए, उपदेश किया जाए, तो सबको यही अच्छा लगता है। शरीर को आत्मा मानने वाले के उसकी प्रशंसा करने लगे, तुम तो बड़े गोरे हो, क्या नाक फूल जाता है उसका, तुम तो बड़े सुंदर देख रहे हो, आज क्या बात है, तुम तो इतने सुंदर देख रहे हो, और क्या प्रसन्न होता है वो है। और कोई कह दे कि अरे तुम तो आज तो बहुत बेकार के लग रहे हो, चेहरा भी काला नजर आ रहा है, तुम बड़े क्या बात है इत्यादि, जब उसको कह दिया जाता है तो बड़ा दुखी होता है। तो देह को आत्मा मानने वाले, देहम, देह ही आत्मा, इसी की सेवा करो, ये ठीक तो सब कुछ ठीक, ये खुश तो सब ठीक। लेव जी, तो सुबह से उठकर शाम तक इसी की पूजा होती है। शंकराचार्य जी ने एक जगह विवेक चूड़ामणि में लिखा है, सवाकारम यावत भजति मनुजस्तावद सुचि। मनुष्य सुबह से शाम तक किसका भजन करता है, किसका पूजन करता है? सवाकार, सबकी पूजा करता है। सुबह उठा कि सबसे पहले है क्या करता है? पूजा में तो ये षोडशोपचार होते हैं ना, पादयो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, यही ना है, मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि। पंडित जी ने कहा मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि, मध्य पान समर्पयामि, अर्थ कर दिया बीच बीच में जल भी चढ़ाते जाओ, मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि। और उसका संयुक्त शब्द जोड़ कर क्या किया, मद्यपानम समर्पयामि, मद्यपान समर्पण करो, किसको? सब जी को, सब पूजा में यही तो होता है, पहले उठते ही पय समर्पयामि, पय प्रतिभ्याम पयोगदी को। अब आजकल तो पय तो है ही नहीं है, तो क्या है, तो पहले चायम समर्पयामि। तो हमने कहा चाय क्यों पीते हो तुम लोग, बोले चारे भाई ये चाय भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, चाय के रूप में मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य हृदि चाहम सन्निविष्ट, सभी के हृदय में चाय के रूप में मैं विराजमान हूं। गीता बिल्कुल सार्थक है आज के युग में, है? भगवान और के रूप में हृदय में रहे न रहे, चाय के रूप में तो सबके हृदय में है, इसीलिए सभी लोग कहते, शंकराचार्य जी ये कहते थे, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्मतत्त्वम्, प्रातःकाल उठते ही मैं उस हृदय में अवस्थित उस आत्मतत्व का मैं स्मरण करता हूं। और हम भी वही करते हैं, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद चायतत्त्वम्, उठते ही पहले हृदय में स्फुरित होने वाला उस चाय का ही स्मरण करते हैं। तो ये सब क्या है? तो सवाकारम यावत भजति, सभी लोग सब पूजा करते हैं। और ये नियम है, वो जिसकी तुम निष्ठा से पूजा करोगे वो एक दिन न एक दिन प्रसन्न होगा, प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होने पर वही चीज देगा जो उसके पास देने की क्षमता होगी। जो भी प्रसन्न होगा तो वही चीज देगा जो उसके पास देने की क्षमता होगी, और देने की क्षमता यदि उसके पास नहीं होगी तो वो नहीं देगा, चाहे कितने प्रसन्न हो जावे। भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, वह उस भक्त को वो जो चाहता है वो दे देंगे, क्योंकि उनके पास देने की क्षमता है। वो यदि संसार वैभव और भोग चाहता है तो वह भी तथास्तु कह देंगे, देने की क्षमता है, दे देंगे वो। और वह भोग नहीं चाहता है तो निवृत्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो वो भी तथास्तु दे देंगे। भोग मोक्ष दोनों ही दे सकते हैं भगवान शिव, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। और ये जो सब है, तुम जीवन भर इनकी साधना करो, सेवा करो, ये अंत में प्रसन्न होगा तो क्या देगा वो? तो वही देगा जो इसके पास है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम, ये तो क्योंकि ये सबके रूप में ही परिणत होना है, अभी भी सब है। सवाकारम यावत, क्योंकि मरे हुए मुर्दे के आकार में और इस आकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरने के बाद कोई कोई कहते हैं नाक टेढ़ी होती है, आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं कोई पता नहीं, यहां तक कह देते हैं कि नाक टेढ़ी हो जाए तो मरने का लक्षण है, ये भी कहते हैं। मरने से पहले ही यदि नाक टेढ़ी हो गई तो समझ लो ये मरने का लक्षण है, एक। और मरने से पहले नाक टेढ़ी होगी तो मरने के बाद कहीं सीधी होगी ना? तो कोई कहते हैं कि मरने के बाद और जिंदे में ये फर्क है कि जब तक जिंदा है नाक सीधी रहती है, जब मर जाता है तो नाक टेढ़ी होती है। पता नहीं, आप लोग तो शमशान क्रिया किया होगा कई बार, और अपने तो सन्यासी हुए इसलिए किसी को शमशान में ले जाना नहीं है। हाँ, ले तो जाते हैं, नीलधारा विसर्जन कर देते हैं, लेकिन नाक पर कभी ध्यान नहीं दिया है हमने। अब की बार ध्यान देंगे, हो कई ऐसी मौसम, आप भी ध्यान देना, आपके जीवन में तो आता ही रहता है ना। कोई आकार प्रकार में न कान बदल जाता है न नाक बदल जाता है, सवाकारम, जैसा आकार है वैसे आकार। तो सवाकारम यावत भजति मनुज तावद असुचि, जब तक देह की उपासना करता रहेगा वह शुद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देह कभी भी शुद्ध है ही नहीं है, अशुद्ध है। इसीलिए तो अविद्या के लक्षण करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अशुचिषु अनात्मेषु आत्मख्याति, अपवित्र में पवित्रता की ख्याति, अनात्मा में आत्मा की ख्याति, अनित्य में नित्यत्व की ख्याति, यही अविद्या है। तो असुचि अपवित्र देह में पवित्र आत्मभाव, यही अविद्या का लक्षण है, और इसी की उपासना करते हैं तो ये अंत में क्या देता है? बहुत प्रसन्न हो गया तो ये सब बना देगा, मुर्दा बना देगा, क्योंकि सवाकारम यावत भजति मनुजस्तावद असुचि, परेभ्य स्यात् क्लेश जनन मरण व्याधि निलयम, जन्म और मृत्यु इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण शरीर जितना भी प्रसन्न होगा तुम्हें मृत्यु ही देगा, और ये शरीर चाहे जितना ही प्रसन्न होगा तुम्हें जन्म देगा, क्योंकि इसके पास यही दो धर्म है, जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है। जो जिसके पास जो धर्म है वही धर्म से युक्त होगा और वही भाव प्रकट करेगा। तो चार्वाक ये शरीर को आत्मा मानते हुए सभी को ये कहते हुए फिरते हैं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तब ये लोग क्या कहते हैं, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, उनको विश्वास है शरीर तो फिर भी आएगा, पता नहीं ये दूसरे का अन्न दोबारा मिले चाहे न मिले, ये तो मौका है। ये चार्वाक सिद्धांत है। देहम, कुछ लोग चार्वाक का ही कुछ सुधारवादी हैं, वे हैं चार्वाक, उस सुधारवादी चार्वाक है। शरीर को आत्मा, शरीर को चैतन्य, शरीर को परम तत्व मानना न चाहने वाले जो विचारक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, प्राण आत्मा हो सकता है, क्योंकि जीवन भी तब तक सार्थक है जब तक प्राण है। प्राण रहते हुए ही सब कुछ है, शरीर प्राण के रहित शरीर रहते हुए भी वह चल नहीं सकता है, और प्राण का संचार हो जाए तो चलने लगता है। तो शरीर की अपेक्षा प्राण ही ज्यादा चैतन्य है, इसलिए प्राण ही आत्मा है, ऐसा मानने वाले दूसरा पक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण आत्मा नहीं है, क्योंकि प्राण जड़ है। गहरी निद्रा के अवस्था में जब पहुंचते हैं व्यक्ति, तो प्राण संचार करता हुआ भी कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और सारे ज्ञान का एक ही साधन इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा हो सकती हैं। इसलिए इंद्रिय आत्मवादी, बहुत लोगों को यह भ्रांति है, इन्हें इंद्रिय ही आत्मा है। और लोग भी कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैं कह रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इसमें नमक है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, किसको पता चला, मुझे पता चला। आप लोग सब ये व्यवहार करते हो कि नहीं? तो ये सारे के सारे चीज इंद्रियों को लेकर है, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है मानने वाले बहुत हैं। देहम प्राणमपि इंद्रियान्यपि चलाम, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती। जागृत में ही इंद्रियां अपने अपने गोलक में रहकर विषय को ग्रहण करती हैं, लेकिन जब सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न अवस्था में इंद्रियां तो लीन हो जाती हैं, फिर मन ही सब कुछ करता है। इसलिए कहते हैं कि मैं आज बहुत सुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। हर व्यक्ति मन को मैं कहता हुआ व्याख्या करता है, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म है, और उसी मन को मैं मान रहा है, इसका मतलब मन ही आत्मा है। आज मेरी आत्मा ठीक नहीं है, और तुम्हारी आत्मा क्या ठीक नहीं होगी, मन ठीक नहीं है, लेकिन कह देते हैं कि मन को ही आत्मा मानकर मेरी आत्मा ठीक नहीं है। आज उसने ऐसा कहा कि बस मेरा, मैं बहुत दुखी हूं, और तुम क्या दुखी हो, मन दुखी है, तुम तो उस दुख के साक्षी हो, लेकिन इस बात को न जानने वाले व्यक्ति मन को ही मैं कह देता है। उसी को चलाम, अति चलायमान जो मन है यही आत्मा है। बुद्धिम च शून्यम विदुः, चलाम का अन्वय बुद्धि के साथ भी कर लेना, सुरेश्वराचार्य जी ने ये अन्वय किया है। मन भी चलायमान है, बुद्धि भी चलायमान है, क्योंकि क्षण क्षण में अलग अलग वृत्ति बन जाना यही उसकी चलायमानता है, यही उसका विचलन है। आप अनुभव करते हैं कि आपका मन एक रूप में रहता है सुबह से शाम तक, इसी का नाम चलायमान है, चलम। और बुद्धि भी चल है, क्योंकि हर क्षण में अलग अलग वृत्ति बनती है। घट देखा तो घटाकार बन गया, तो पट देखा पटाकार बन गया, मठ देखा तो मठाकार बन गया। जो दृश्य सामने आया तत्त दृश्य अनुरूप वह वृत्ति के रूप में परिणत हो जाना, इसी को चलायमान कहा है। इसको क्षणिक विज्ञान मान कहते हैं। ये बुद्ध का ही एक पक्ष है, क्षणिक विज्ञान वा, क्षणिक विज्ञानात्म। देहं प्राणम् अपि इन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः। और बुद्ध का ही एक और पक्ष है, बुद्ध में चार हैं, चार पक्ष हैं बुद्ध का, समयाचार, मध्यंदिन, मध्यमा, श्रोत्रांतरिक, वैभाषिक, ये बुद्ध के ही भेद हैं। ये लोग कोई क्षणिक विज्ञानवाद मानते हैं, कोई आत्मख्याति मानते हैं, कोई अनात्मख्याति मानते हैं, और एक बुद्ध का ही एक पक्ष है कि शून्य आत्मवाद। सारे के सारे जगत का मूल कारण शून्य है, अभाव है, अभाव से भाव की उत्पत्ति, शून्य से जगत की उत्पत्ति, असत से जगत की उत्पत्ति, पहले नहीं था वो नहीं था, इससे जगत की उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं शून्यवादी। सुषुप्ति अवस्था में शून्यवाद का अनुभव होता है, न किंचित अवेदिशम, कुछ भी भान न होना, यही मूल उसका शून्यात्मवाद का उदाहरण है। सुषुप्ति अवस्था में इसका अनुभव होता है। देहं प्राणम् अपि इन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः। इस प्रकार के भ्रांत समाज में कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, और शंकराचार्य जी किस आशय से कह रहे हैं, इसको राजनीतिक नहीं बना लेना। बात समझ रहे हैं ना, मैं आप लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, शंकराचार्य जी जिधर संकेत कर रहे हैं। स्त्री बालांध जड़ोपमास्त्वहमिति भ्रांता वृषम वादिनः। ये लोक व्यवहार में भी दिख रहा है वो, इसलिए अन्यथा नहीं लेना। शरीर के श्रृंगार में शरीर आत्मवाद का भाव पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादा दिखता है। लौकिक व्यवहार में आप बूढ़े हो गए इसलिए आपको ऐसा ना लग रहा हो, नहीं तो महिलाएं ऐसे हैं कि उनके हर मणिबैग में एक छोटा सा मिरर होगा ही होगा। वो मिरर का क्या होता औचित्य भाई है, उसमें मिरर का क्या मतलब है? ऐसी कोई औरत नहीं मिलेंगे जो एक छोटा सा मिरर अपने साथ में लेकर न चलती हो, लेकिन ऐसे बहुत से पुरुष हैं जो कभी भी जेब में मिरर लेकर नहीं चलते। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? मिरर किसको दिखा रहा है, है? आत्मा को दिखाता है मिरर। वो क्या आत्मदर्शन करने के लिए मिरर लेके चलते हैं? और कोई महिला हो और उसके कमरे में खाने पीने का सब कुछ दे दो, पहनने का भी बढ़िया दे दो, लेकिन उसको कह देना कि तुम कभी भी दर्पण नहीं देखना, मिरर नहीं देखना, तो उसके लिए इतना बड़ी सजा हो जाएगी, उसको तिहाड़ जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको भले खाने पीने का कुछ साधन न दो, भले खिचड़ी दे दो, आम के फजी तो दे दो, पहनने का खूब ज्वेलरी दे दो, अलग अलग आइटम, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आकृति के मैचिंग, देख लो, बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी, सब कुछ उसके कमरे में रख दो, और फुल साइज का मिरर रख दो, वो भी दो दो तीन तीन है, लेफ्ट साइड में भी एक मिरर, फ्रंट में एक मिरर, राइट साइड में और दूसरा मिरर, क्या आनंद है। खाने के लिए तुमको बस फजी तो और खिचड़ी मिलेगा, तो राजी हो जाएगी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये लौकिक ये अनुभव में आ रहा है उसको लेकर शंकराचार्य ने ये किया है, ये कहना उनका आशय नहीं है कि स्त्री समझदार नहीं होती, ये कहने का आशय नहीं है। देह के प्रति ज्यादा लगाव होने के कारण ही यहां शंकराचार्य जी ने उनका स्मरण किया है। इसको अन्यथा राजनीति नहीं कर लेना। हाँ, तो शंकराचार्य जी ने स्त्री की निंदा क्यों की करके कल फिर झंडा लेकर खड़े नहीं हो जाना। स्त्री बालांध जड़ो, जैसे बालक बच्चे हैं वो बात समझते नहीं है और छोटे छोटे बात पर ही विवाद करते हैं और कागज के नोट बनाकर खरीदारी करते हैं, पत्थर के बीवी बनाकर शादी करते हैं, पत्थर के बच्चे बनाकर दोनों को दूध पिलाते हैं, गोद में लेते हैं। गुड़िया से खेलने वाले कौन है बोलो? गुड्डा गुड़िया से खेलने वाले कौन? बच्चे। समझते नहीं है वो। इस अर्थ में स्त्री बालांध जड़, अंधा व्यक्ति, जड़ व्यक्ति, ये लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सब में अहम अहम करते हैं। जैसे स्त्री शरीर में अहम करती है तभी उसको याद्यास होता है, तभी हर समय में फुर्सत हुई, फुर्सत भी न हो तो भी हाँ उबारो उबारो हूं आऊं सुभाष, फिर अंदर जाएगी, फिर दर्पण के आगे खड़ी होगी, पति बाहर बुलाता रहेगा, मोड़ो थी गये, उबारो उबारो हूं आऊं छू बस, फिर दर्पण के आगे खड़ी होगी। आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला ये है? तो समय 35 हो गया, फिर लेट होगा भाई, इसकी पूरी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: तब विरोचन क्या करता है? इंद्रियों से दिखाई पड़े, हर व्यक्ति यही कहते हैं। तो इंद्रियों से क्या दिखाई पड़ता है? तो यही स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है सर्वत्र। सभी को या तो जड़ पदार्थ, संसार के पदार्थ दिखेंगे, और या फिर ये शरीर दिखेगा। तो वे लोग पत्थर को तो भले ही भगवान न माने, शरीर को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि उनको ये भ्रांति है, क्योंकि जो चलने फिरने वाला, बोलने वाला है, देखने सुनने वाला है, वही आत्मा हो सकता है। और वे लोग ये मानते हैं कि ये सब काम करने वाला शरीर है, पत्थर नहीं है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। सबसे पहले इस चार बाक देहात्मवादी चार बाकों का पक्ष को यहां रखा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब क्रमश से सबका खंडन करने के बाद कहा भ्रांता वृषमवादिना, ये सब भ्रांत हैं। किसके द्वारा भ्रांत हैं? माया शक्ति विलास कल्पित महाभ्रांत हैं ये। तो उस माया के जो शक्ति विलास शक्ति है उसके द्वारा ये भ्रांत हुए हुए होने के कारण व्यामोह हुए हैं, व्यामोह को प्राप्त हुए हैं, भ्रांत ही इसलिए व्यामोह को प्राप्त हुए हैं, इसलिए शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। इसको कहते हैं संसार का अध्यास। जैसे लोहे के गोले को आग कह देता है कोई, तो लोहे का गोला लोहा ही होगा, आग तो हो नहीं सकता है। अग्नि अलग चीज है, लोहा अलग चीज है, लेकिन अग्नि के संसर्ग से उसमें उष्णता आ जाने मात्र से लोग कहते हैं कि अग्नि का गोला है। गोला ये गोल ये आकार अग्नि की नहीं हो सकती, अग्नि निराकार है, फिर भी लोहे का जो आकार है उस आकार में अग्नि का संचार होने के कारण भ्रांत होकर लोग कह देते हैं कि अग्नि का गोला है। और लोग कह देते हैं कि ये लोहे का गोला लाल है, जबकि लोहा लाल नहीं हो सकता है। लाल यह अग्नि का धर्म है। अग्नि के लालपना को लोहे के गोले में आरोप करके लोहे का गोला लाल है कह देते हैं, अग्नि की उष्णता को लोहे के गोले में आरोप करके लोहे का गोला गर्म है कह देते हैं, और लोहे के गोले के गोलापना आकार को अग्नि में आरोप करके अग्नि का गोला कह देते हैं। अग्नि गोल नहीं हो सकता, लोहा गर्म नहीं हो सकता। अग्नि गोल नहीं हो सकता, लोहा लाल नहीं हो सकता। फिर भी भ्रांति, इसको कहते हैं संसर्ग अध्यास, अन्योन्य अध्यास। एक का धर्म दूसरे में और दूसरे का धर्म दूसरे में आरोप करके और दूसरे को दूसरे रूप में मान लेना, इसी को अध्यास है। चैतन्य की छाया, जिस छाया से युक्त हुआ हुआ, चैतन्य की तो बात ही छोड़ दो, चैतन्य की छाया का स्पर्श हुआ है, और छाया भी शरीर में नहीं पड़ सकता है, ये ध्यान देना। कूटस्थ का प्रतिबिंब अन्नमय कोश में नहीं पड़ता है, जैसे आपकी आपका प्रतिबिंब दीवारों में नहीं पड़ सकता है, इसी तरह कूटस्थ का परमात्मा का प्रतिबिंब छाया देह में नहीं पड़ सकता है, जैसे आपके शरीर का प्रतिबिंब दर्पण में ही पड़ सकता है, इसी तरह परमात्मा के प्रतिबिंब तो सूक्ष्म शरीर अंतःकरण में पड़ सकता है, स्थूल शरीर में नहीं पड़ता है। लेकिन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नजदीक होने के कारण स्थूल में पड़ा हुआ परमात्मा की चित छाया को अंतःकरण के संपर्क से स्थूल शरीर में भ्रांति से दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। वेदांत का रहस्य है, शरीर को चैतन्य मानने का और कोई कारण नहीं है, शरीर को चैतन्य मानने का और कोई कारण नहीं, एक ही कारण है। शरीर चैतन्य होकर चैतन्य माना गया नहीं है, शरीर मूल रूप में जड़ है, और चैतन्य की छाया पड़ा हुआ है अंतःकरण, वो अंतःकरण के नजदीक स्पर्श में आने होने के कारण छाया का स्पर्श प्राप्त हुआ है। किसको? चित छाया का स्पर्श प्राप्त हुआ शरीर को, तो भ्रांति से शरीर चैतन्य जैसा लगने लगा है, और जो वस्तु जैसा लगता है वो वस्तु वैसा होता नहीं है, तत्व तो यह है, इसलिए भ्रांति कहते हैं। देहम, तो कुछ लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, और चार्वाक इसलिए है कि सब लोगों को यही अच्छा लगता है। शरीर को आत्मा मानकर यदि कोई कह दिया जाए, उपदेश किया जाए, तो सबको यही अच्छा लगता है। शरीर को आत्मा मानने वाले के उसकी प्रशंसा करने लगे, तुम तो बड़े गोरे हो, क्या नाक फूल जाता है उसका, तुम तो बड़े सुंदर दिख रहे हो, आज क्या बात है, तुम तो इतने सुंदर देख रहे हो, और क्या प्रसन्न होता है वो। और कोई कह दे कि अरे तुम तो आज तो बहुत बेकार के लग रहे हो, चेहरा भी काला नजर आ रहा है, तुम बड़े क्या बात है इत्यादि, जब उसको कह दिया जाता है तो बड़ा दुखी होता है। तो देह को आत्मा मानने वाले, देहम, देह ही आत्मा, इसी की सेवा करो, ये ठीक तो सब कुछ ठीक, ये खुश तो सब ठीक। ले जी, तो सुबह से उठकर शाम तक इसी की पूजा होती है। शंकराचार्य जी ने एक जगह विवेक चूड़ामणि में लिखा है, सवाकारम यावत भजति मनुजस्तावद सुचि। मनुष्य सुबह से शाम तक किसका भजन करता है, किसका पूजन करता है? सवाकार, सबकी पूजा करता है। सुबह उठा कि सबसे पहले है क्या करता है? पूजा में तो ये षोडशोपचार होते हैं ना, पादयो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि, यही ना है, मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि। पंडित जी ने कहा मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि, मध्यपान समर्पयामि, अर्थ कर दिया बीच बीच में जल भी चढ़ाते जाओ, मध्य मध्य पानीयम समर्पयामि। और उसका संयुक्त शब्द जोड़ कर क्या किया, मध्यपानम समर्पयामि, मध्यपान समर्पण करो, किसको? सब जी को, सब पूजा में यही तो होता है। पहले उठते ही पय समर्पयामि, पय प्रतिभ्याम पयो गदी को। अब आजकल तो पय तो है ही नहीं है, तो क्या है? तो पहले चायम समर्पयामि। तो हमने कहा चाय क्यों पीते हो तुम लोग? बोले चारे भाई ये चाय भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, चाय के रूप में मैं सभी के हृदय में विद्यमान हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य हृदि चाहम सन्निविष्ट, सभी के हृदय में चाय के रूप में मैं विराजमान हूं। गीता बिल्कुल सार्थक है आज के युग में है? भगवान और के रूप में हृदय में रहे न रहे, चाय के रूप में तो सबके हृदय में है। इसीलिए सभी लोग कहते, शंकराचार्य जी ये कहते थे, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरद आत्मतत्त्वम्, प्रातःकाल उठते ही मैं उस हृदय में अवस्थित उस आत्मतत्व का मैं स्मरण करता हूं। और हम भी वही करते हैं, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुर चाय तत्त्वम्, उठते ही पहले हृदय में स्फुरित होने वाला उस चाय का ही स्मरण करते हैं। तो ये सब क्या है? तो सवाकारम यावत भजति, सभी लोग सब पूजा करते हैं। और ये नियम है, वो जिसकी तुम निष्ठा से पूजा करोगे वो एक दिन न एक दिन प्रसन्न होगा, प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होने पर वही चीज देगा जो उसके पास देने की क्षमता होगी। जो भी प्रसन्न होगा तो वही चीज देगा जो उसके पास देने की क्षमता होगी। और देने की क्षमता यदि उसके पास नहीं होगी तो वो नहीं देगा, चाहे कितने प्रसन्न हो जावे। भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, वह उस भक्त को वह जो चाहता है वो दे देंगे, क्योंकि उनके पास देने की क्षमता है। वो यदि संसार वैभव और भोग चाहता है तो वह भी तथास्तु कह देंगे, देने की क्षमता है, दे देंगे वो। और वह भोग नहीं चाहता है तो निवृत्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो वो भी तथास्तु दे देंगे। भोग मोक्ष दोनों ही दे सकते हैं भगवान शिव, क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। और ये जो सब है, तुम जीवन भर इनकी साधना करो, सेवा करो, ये अंत में प्रसन्न होगा तो क्या देगा वो? तो वही देगा जो इसके पास है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम, ये तो क्योंकि ये सब के रूप में ही परिणत होना है, अभी भी सब है। सवाकारम यावत, क्योंकि मरे हुए मुर्दे के आकार में और इस आकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरने के बाद कोई कोई कहते हैं नाक टेढ़ी होती है, आप लोगों ने अनुभव किया है कि नहीं कोई पता नहीं, यहां तक कह देते हैं कि नाक टेढ़ी हो जाए तो मरने का लक्षण है, ये भी कहते हैं मरने से पहले ही यदि नाक टेढ़ी हो गई तो समझ लो ये मरने का लक्षण है। एक और मरने से पहले ही नाक टेढ़ी होगी तो मरने के बाद कहीं सीधी होगी ना? तो कोई कहते हैं कि मरने के बाद और जिंदे में ये फर्क है कि जब तक जिंदा है नाक सीधी रहती है, जब मर जाता है तो नाक टेढ़ी होती है। पता नहीं, आप लोग तो श्मशान क्रिया किया होगा कई बार, और अपने तो सन्यासी हुए इसलिए किसी को श्मशान में ले जाना नहीं है। हाँ, ले तो जाते हैं, नीलधारा विसर्जन कर देते हैं, लेकिन नाक पर कभी ध्यान नहीं दिया है हमने। अब की बार ध्यान देंगे हो कई ऐसे मौसम आप भी ध्यान देना, आपके जीवन में तो आता ही रहता है ना। कोई आकार प्रकार में न कान बदल जाता है न नाक बदल जाता है, सभाकारम जैसा आकार है वैसे आकार। तो सभाकारम यावत भजति मनुज तावत असुचि, जब तक देह की उपासना करता रहेगा वह शुद्ध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देह कभी भी शुद्ध है ही नहीं है, अशुद्ध है। इसीलिए तो अविद्या के लक्षण करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं अशुचिषु अनात्मेषु आत्मख्याति, अपवित्र में पवित्रता की ख्याति, अनात्मा में आत्मा की ख्याति, अनित्य में नित्यत्व की ख्याति, यही अविद्या है। तो अशुचि अपवित्र देह में पवित्र आत्मभाव, यही अविद्या का लक्षण है, और इसी की उपासना करते हैं तो ये अंत में क्या देता है, बहुत प्रसन्न हो गया तो ये सब बना देगा, मूर्धा बना देगा, क्योंकि सभाकार हम यावत भजति मनुजस्तावत अशुचि, परेभ्य स्यात् क्लेश जनन मरण व्याधि निलयम। जन्म और मृत्यु इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण शरीर जितना भी प्रसन्न होगा तुम्हें मृत्यु ही देगा, और यह शरीर चाहे जितने ही प्रसन्न होगा तुम्हें जन्म देगा, क्योंकि इसके पास यही दो धर्म है, जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है। जो जिसके पास जो धर्म है वही धर्म से युक्त होगा और वही भाव प्रकट करेगा। तो चार्वाक ये शरीर को आत्मा मानते हुए सभी को ये कहते हुए फिरते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तब ये लोग क्या कहते हैं, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, उनको विश्वास है शरीर तो फिर भी आएगा, पता नहीं ये दूसरे का अन्न दोबारे मिले चाहे न मिले, ये तो मौका है। ये चार्वाक सिद्धांत है। देहम, कुछ लोग चार्वाक का ही कुछ सुधारवादी हैं, वे हैं चार्वाक, उस सुधारवादी चार्वाक है। शरीर को आत्मा, शरीर को चैतन्य, शरीर को परम तत्व मानना न चाहने वाले जो विचारक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, प्राण आत्मा हो सकता है, क्योंकि जीवन भी तब तक सार्थक है जब तक प्राण है, प्राण रहते हुए ही सब कुछ है। शरीर प्राण के रहित शरीर रहते हुए भी वह चल नहीं सकता है, और प्राण का संचार हो जाए तो चलने लगता है। तो शरीर की अपेक्षा प्राण ही ज्यादा चैतन्य है, इसलिए प्राण ही आत्मा है, ऐसा मानने वाले दूसरा पक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण आत्मा नहीं है, क्योंकि प्राण जड़ है। गहरी निद्रा के अवस्था में जब पहुंचते हैं व्यक्ति, तो प्राण संचार करता हुआ भी कुछ भी ज्ञान नहीं होता, और सारे ज्ञान का एक ही साधन इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा हो सकती हैं। इसलिए इंद्रिय आत्मवादी बहुत लोगों को भ्रांति है, इन्हें इंद्रिय ही आत्मा है। और लोग भी कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैं कह रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इसमें नमक है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, किसको पता चला, मुझे पता चला। आप लोग सब ये व्यवहार करते हो कि नहीं? तो ये सारे के सारे चीज इंद्रियों को लेकर है, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है मानने वाले बहुत हैं। देहम प्राणम अपि इंद्रियान्यपि चलाम, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंद्रियां आत्मा नहीं हो सकती, जागृत में ही इंद्रियां अपने अपने गोलक में रहकर विषय को ग्रहण करती हैं, लेकिन जब सोते हैं स्वप्न देखते हैं स्वप्न अवस्था में इंद्रियां तो लीन हो जाती हैं, फिर मन ही सब कुछ करता है। इसलिए कहते हैं कि मैं आज बहुत सुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। हर व्यक्ति मन को मैं कहता हुआ व्याख्या करता है, क्योंकि सुख दुख मन का धर्म है और उसी मन को मैं मान रहा है, इसका मतलब मन ही आत्मा है। आज मेरी आत्मा ठीक नहीं है और तुम्हारी आत्मा क्या ठीक नहीं होगी, मन ठीक नहीं है, लेकिन कह देते हैं कि मन को ही आत्मा मानकर मेरी आत्मा ठीक नहीं है। आज उसने ऐसा कहा कि बस मेरा, मैं बहुत दुखी हूं, और तुम क्या दुखी हो, मन दुखी है, तुम तो उस दुख के साक्षी हो, लेकिन इस बात को न जानने वाले व्यक्ति मन को ही मैं कह देता है। उसी को चलाम, अति चलायमान जो मन है यही आत्मा है। बुद्धिम च शून्यम विदुः, चलाम का अन्वय बुद्धि के साथ भी कर लेना, सुरेश्वराचार्य जी ने ये अन्वय किया है। मन भी चलायमान है, बुद्धि भी चलायमान है, क्योंकि क्षण क्षण में अलग अलग वृत्ति बन जाना यही उसकी चलायमानता है, यही उसका विचलन है। आप अनुभव करते हैं कि आपका मन एक रूप में रहता है सुबह से शाम तक, इसी का नाम चलायमान है, चलम। और बुद्धि भी चल है, क्योंकि हर क्षण में अलग अलग वृत्ति बनती है। घट देखा तो घटाकार बन गया, तो पट देखा पटाकार बन गया, मठ देखा तो मठाकार बन गया, जो दृश्य सामने आया तत्त दृश्य अनुरूप वह वृत्ति के रूप में परिणत हो जाना, इसी को चलायमान कहा है। इसको क्षणिक विज्ञान मान कहते हैं, ये बुद्ध का ही एक पक्ष है, क्षणिक विज्ञान वा, क्षणिक विज्ञानात्म। देहं प्राणम् अपि इन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः। और बुद्ध का ही एक और पक्ष है, बुद्ध में चार हैं, चार पक्ष हैं बुद्ध का, समयाचार, मध्यंदिन, मध्यमा, स्रोत्रांतरिक, वैभाषिक, ये बुद्ध के ही भेद हैं। ये लोग कोई क्षणिक विज्ञानवाद मानते हैं, कोई आत्मख्याति मानते हैं, कोई अनात्मख्याति मानते हैं, और एक बुद्ध का ही एक पक्ष है कि शून्य आत्मवाद, सारे के सारे जगत का मूल कारण शून्य है, अभाव है, अभाव से भाव की उत्पत्ति, शून्य से जगत की उत्पत्ति, असत से जगत की उत्पत्ति, पहले नहीं था वो नहीं था इससे जगत की उत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं शून्यवादी। सुषुप्ति अवस्था में शून्यवाद का अनुभव होता है, न किंचित अवेदिशम, कुछ भी भान न होना, यही मूल उसका शून्यात्मवाद का उदाहरण है। सुषुप्ति अवस्था में इसका अनुभव होता है। देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः। इस प्रकार के भ्रांत समाज में कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, और शंकराचार्य जी किस आशय से कह रहे हैं, इसको राजनीतिक नहीं बना लेना, बात समझ रहे हैं ना, मैं आप लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, शंकराचार्य जी जिधर संकेत कर रहे हैं।

0: ऐसी कोई औरत नहीं मिलेंगे जो एक छोटा सा मिरर अपने साथ में लेकर न चलती हो, लेकिन ऐसे बहुत से पुरुष हैं जो कभी भी जेब में मिरर लेकर नहीं चलते। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? मिरर किसको दिखा रहा है? हैं? आत्मा को दिखाता है मिरर। वो क्या आत्मदर्शन करने के लिए मिरर लेके चलते हैं? और कोई महिला हो और उसके कमरे में खाने पीने का सब कुछ दे दो, पहनने का भी बढ़िया दे दो, लेकिन उसको कह देना कि तुम कभी भी दर्पण नहीं देखना, मिरर नहीं देखना, तो उसके लिए इतना बड़ी सजा हो जाएगी, उसको तिहाड़ जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको भले खाने पीने का कुछ साधन न दो, भले खिचड़ी दे दो, आम के फजी तो दे दो, पहनने का खूब ज्वेलरी दे दो, अलग अलग आइटम, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आकृति के मैचिंग, देख लो, बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी, सब कुछ उसके कमरे में रख दो, और फुल साइज का मिरर रख दो, वो भी दो दो तीन तीन, है, लेफ्ट साइड में भी एक मिरर, फ्रंट में एक मिरर, राइट साइड में और दूसरा मिरर, क्या आनंद है। खाने के लिए तुमको बस फजी तो और खिचड़ी मिलेगा तो राजी हो जाएगी। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये लौकिक, ये अनुभव में आ रहा है, उसको लेकर शंकराचार्य ने ये किया है। ये कहना उनका आशय नहीं है कि स्त्री समझदार नहीं होती, ये कहने का आशय नहीं है। देह के प्रति ज्यादा लगाव होने के कारण ही यहां शंकराचार्य जी ने उनका स्मरण किया है। इसको अन्यथा राजनीति नहीं कर लेना। हाँ, तो शंकराचार्य ने स्त्री की निंदा क्यों की करके कल फिर झंडा लेकर खड़े नहीं हो जाना। स्त्री बालांध जड़ो, जैसे बालक बच्चे हैं, वो बात समझते नहीं है और छोटे छोटे बात पर ही विवाद करते हैं और कागज के नोट बनाकर खरीदारी करते हैं, पत्थर के बीवी बनाकर शादी करते हैं, पत्थर के बच्चे बनाकर दोनों को दूध पिलाते हैं, गोद में लेते हैं। गुड़िया से खेलने वाले कौन है? बोलो, गुड्डा गुड़िया से खेलने वाले कौन? बच्चे। समझते नहीं है वो। इस अर्थ में स्त्री बालांध जड़, अंधा व्यक्ति, जड़ व्यक्ति, ये लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सब में अहम अहम करते हैं। जैसे स्त्री शरीर में अहम करती है तभी उसको याद्यास होता है, तभी हर समय में फुर्सत हुई, फुर्सत भी न हो तो भी उबारो उबारो हूं आऊं सुभाष, फिर अंदर जाएगी, फिर दर्पण के आगे खड़ी होगी, पति बाहर बुलाता रहेगा, मोड़ो थी गये, उबारो उबारो हूं आऊं छू बस, फिर दर्पण के आगे खड़ी होगी। आप कहोगे कि आपको कैसे पता चला है? तो समय 35 हो गया, फिर लेट होगा भाई, इसकी पूरी व्याख्या कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस, 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kootruva Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। भक्तों, अभी हम सुनेंगे और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी, जिनका नाम कुटरूवर है। प्राचीन काल में तमिलनाडु के कलंदई नामक नगर में एक भूमिपति कुटरूवर रहते थे। उन्होंने अपने बाहुबल से कई राजाओं को युद्ध में हराया और कई छोटे भूपतियों को अपने अधीन कर लिया। इस भांति वे स्वयं राजा बन गए। उनके पास अपार धन संपदा, ऐश्वर्य, सब कुछ था, पर राजाओं द्वारा धारण किया हुआ मुकुट या किरीट नहीं था। कुटरूवर तिल्लई नगरी चिदंबरम के ब्राह्मणों के पास गए और अपने राज्याभिषेक का अनुरोध

0: किले के ब्राह्मणों ने उन्हें स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि वे चोल राजाओं के अतिरिक्त किसी को मुकुट नहीं पहना सकते। ब्राह्मणों ने इनकार तो कर दिया, पर राजा से दंडित होने के भय से वे चेर राज्य पलायन कर गए। चोल राज्य के योग्य मुकुट प्राप्त न होने पर शिवभक्त राजा कोटरोवर को शिवजी ने स्वप्न में अपने चरण कमलों से उनके शीश पर स्पर्श किया। उन्हीं चरण कमलों को शीश पर धारण कर वे उसी में संतुष्ट रहे और न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। कूटरूवर के पास चतुरंगिनी सेना थी, पर वे सदा त्रिशूलधारी शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करते थे। शिव सिद्धांत दर्शन में ईश्वर और मानव रूप से दो हैं, पर जब भक्त अपनी पूर्ण चेतना शिव के साथ जोड़ लेता है तो वास्तव में वे अनुभव के धरातल पर एक ही हो जाते हैं। कूटरूवर को जब रत्नजड़ित मुकुट धारण करवाने से तिल्लय के ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो उन्होंने न तो शक्ति प्रयोग किया और न ही न्याय का मार्ग छोड़ा। अपने प्रभु शिव के साथ तदात्म्य कर सेवा भावना से राज्य कार्य करने लगे। तमिलनाडु में तिल्लई ब्राह्मणों द्वारा परंपरा के अनुसार चेर चोल और पांड्य वंशों के राजाओं को ही मुकुट धारण करने का पात्र माना जाता है। अपनी नीति में दृढ़ता और प्राणों की चिंता न करते हुए स्पष्ट वचन कहने का उनका साहस प्रशंसनीय है। दूसरी ओर कूटरूवर के पास शक्ति थी, पर अपनी सहनशीलता और उदारता दिखाते हुए वे ब्राह्मणों को कोई क्षति या हानि नहीं पहुंचाए। इस कथा से यही परिलक्षित होती है। इसीलिए कूटरूवर एक महान संत या नायनमार माने जाते हैं। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Pugalchoda Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Dosto, abhi hum ek veer santya Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Pugalchoda hai. Ati prachin kaal mein Chol vansh ke naresh पुगलचोलर एक निष्ठावान शिवभक्त राजा थे। उनकी राजधानी उरैयूर थी। केरीपत्तर नामक एक शिवभक्त ने जब शिव अपराध होने पर उनके हाथी की सूंड को काट दिया तो हाथी का स्वामी स्वयं को मानते हुए उन्होंने अपने आप को दोषी माना और राजा ने अपनी तलवार एरीपत्तर को सौंप दी। पर एरीपत्तर राजा के हृदय में व्याप्त शिवभक्ति भावना को जानकर हाथी को सूंड को काटने के लिए स्वयं को ही दोषी मानने लगे। पुगलचोलर की दूसरी राजधानी कुरुवत थी। एक दिन महाराज ने उन छोटे राजाओं की सूची देखी जिन्होंने वार्षिक कर राशि नहीं दी थी। पर्वत प्रदेश मलयनाडु के एक राजा अधिगन की वार्षिक कर राशि बकाया थी। महाराजा को क्रोध आ गया। उन्होंने आदेश दिया, अधिगन की इतनी हिम्मत कि चोल साम्राज्य का इसका सामना करे, अभी आक्रमण करो और उनके किले को नष्ट कर दो। महाराज के आदेश के अनुसार घमासान युद्ध हुआ जिसमें अधिगन पराजित हो गए। उस युद्ध की प्रथा के अनुसार युद्ध में मारे गए योद्धाओं के सर राजा को दिखाए गए। इनमें से एक सिर पर जटाभार था और माथे पर शिव चिन्ह भस्म लेपित था। शिव भक्त के वध पर महाराज को इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने उस शीश को स्वर्ण की थाली में रखकर उसके साथ अग्नि प्रवेश कर लिया। यह एक विशेष घटना थी। एक सम्राट के रूप में कर राशि न देने वाले छोटे राज्य को दंडित करना राजकीय दायित्व का पालन है, पर युद्ध में शिवभक्त के की अनजाने में भी हत्या हो जाए यह जानकर शासक को अधीनस्थ के अपराध का
0: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू Shaivam.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Narasingha Munayarayar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. भक्तों, अभी हम सुनेंगे और एक दक्षिण भारतीय संत या नायनमार की कहानी जिनका नाम नरसिंह मुनैयर है। तमिलनाडु के तिरुमुनईपाड़ी क्षेत्र में नरसिंह मुनैयर शासन करते थे। इनको हम सुंदरमूर्ति नायनार के धर्मपिता के रूप में भी स्मरण करते हैं। सुंदरमूर्ति का बचपन का नाम नंबियारूर था। एक दिन जब वे गली में खेल रहे थे तो उधर से नरसिंह मुनैयर निकले। बालक के प्रति उनके हृदय में इतना प्रबल प्रेम भाव उत्पन्न हुआ कि वे बालक नंबियारूर को उसके माता पिता की अनुमति से अपना दत्तक पुत्र बनाकर राजमहल ले आए। नंबियारूर ने भी राजवंश की संतान रूप में विभिन्न कलाओं और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया। नरसिंह मुनैयर के जीवन का लक्ष्य था शिव भक्ति करना और शिव भक्तों की सेवा करना। नरेश नरसिंह मुनैयर तिरुवादिरई आर्द्रा नक्षत्र के दिन शिव भक्तों को अपने यहाँ आमंत्रित करते, उनका पूजन करते और प्रत्येक भक्त को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप प्रदान करते। इस सेवा से उन्हें अपार आनंद आता था। एक बार शिव भक्तों के समूह में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो अनियंत्रित काम भोग के कारण भयंकर चर्म रोग उपदंश से पीड़ित था। उसने शिव चिन्ह तो धारण किए हुए थे पर अपने हाव भाव के कारण दूसरे संतों के तिरस्कार का भागी बन रहा था। अन्य भक्त उसे तुत्कार कर अलग कर रहे थे। इस पर मुनैयर ने टिप्पणी की, शील और सदाचार में खोट करने होने पर भी भस्म धारण किए हुए व्यक्ति का अपमान उचित नहीं। उन्होंने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा दुगुनी दक्षिणा दी, सोने की 200 मुद्राएं भेंट कर सादर विदा किया। शिव वेश धारण करने का प्रभाव मानव को दुर्गुणों से परे रहने की प्रेरणा देता है। अतः शिव वेशधारी का सम्मान करने की एक पुरानी प्रथा है। शिव वेश अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित किसी भी जाति का व्यक्ति धारण कर सकता है। वेश धारण करने वालों की खोज संभव नहीं, अतः नरेश नरसिंह मुन्नैयार प्रत्येक शिव वेशधारी को सम्मान प्रदान करते हैं। 12 शती पूर्व की यह पौराणिक कथा उस युग के चिंतन के एक पक्ष को प्रस्तुत करती है। नरसिंह मुन्नैयार एक अत्यंत बड़े शिव भक्त या संत थे, जो कि हर शिव भक्त को एक समान देखते थे और उनका सादर सत्कार करते थे, इसीलिए उनका नाम पेरिय पुराण में शामिल हुआ। ओम नमः शिवाय।
0: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Adibatta Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhaktam, yeh Shravan ka mahina hai, kyunki Shiv ke liye atyant lokpriya hai. Aaj hum sunte hain aur ek Nayanmar ya sant ki kahani, jinka naam Atipattar hai. Nagapattinam mein machuaron ke ek samudra kul mein Atipattar नायनमार का जन्म हुआ। वे प्रतिदिन समुद्र में जाकर मछली पकड़ते और इस भांति अपनी जीविका चला रहे थे। उनका एक प्रण था कि जब भी मछली पकड़ें, सबसे पहली मछली सृष्टि में नृत्य कर रहे नटराज को अर्पण करके फिर से समुद्र में छोड़ देते थे। एक समय की बात है, कई दिन लगातार अतिपत्र के जाल में केवल एक ही मछली आती और अपने प्रण के अनुसार वे प्रतिदिन उस एकमात्र मछली को शिव अर्पित करके समुद्र के जल में छोड़ देते थे। भोजन के अभाव से शरीर दुर्बल हो गया था, पर प्रण के अनुसार शिव के प्रति समर्पण भावना से मछली समुद्र में फेंकना बंद नहीं हुआ। एक दिन उनके जाल में अद्भुत सुनहरे रंग की स्वर्ण और रत्न जड़ित एक मछली फंसी। उसे देखकर अतिपत्र ने विचार किया, यह देखने से मछली है पर रत्न जड़ित होने के कारण मेरे प्रभु को अर्पित करने के लिए भी उपयुक्त है। वह प्रभु जिससे मुझे अपने दास के रूप में स्वीकारा है, उनके चरणों में इसे अर्पित करता हूँ। यह विचार कर वह बहुमूल्य मछली तरंगों से उद्वेलित सागर में शिव को भेंट कर दी। उसी क्षण उन्हें वृषभ पर आरूढ़ शिव के आकाश में दर्शन हुए। नीलकंठ प्रभु की असीम अनुकंपा हुई और करबद्ध प्रणाम करते हुए शिव भक्त हरिपत्र को शिवलोक में स्थान मिला। सुविधा संपन्न लोगों द्वारा व्रत और पूजा पर महत्व दिया जाता है। सुविधाओं के अभाव में भी सच्चे भक्त अपने व्रत और प्रण का किसी भांति भी पालन करते हैं। इस कथा में यह दर्शाया गया है, तमिल प्रदेश के लोगों ने अनेकानेक मंदिरों का निर्माण किया, किंतु उनकी यह मान्यता कदापि नहीं कि ईश्वर केवल मंदिर में निवास करते हैं। वे वन उपवन, ताल तलैया, नदी, चौराहा, सशामंच, पर्वत आदि स्थानों पर सर्वत्र व्याप्त हैं और उपासना करने वालों के लिए उनकी भावना और इच्छा के अनुसार प्रकट होकर वरदान देते हैं। ऐसा विचार तिरुमुर्गा तरुपड़ई नामक प्राचीन तमिल तीर्थ कविता में आता है। नर्तित नटराज, तिल्लई के स्वर्ण मंदिर और तिरुवालम काड़ो के ही समान अरिपत्र की नाव के निकट समुद्र की उत्ताल तरंगों पर भी नृत्य करते हैं। इसलिए शिव भक्त अरिपत्र अपने हाथ में आने वाले हर पहले कौर या मछली को ईश्वर अर्पित करते हैं। निरंतर कई दिन तक उपवास के बाद भी नवरत्न जड़ित सुनहरी मछली मिलने पर भी अरिपत्र ने उसे बेचकर निर्धनता से मुक्ति पाने का विचार तक नहीं किया। उस दिन की एकमात्र पहली मछली प्रण के अनुसार नृत्यशील नटराज को समर्पित हुई। यही भक्त को अपने प्रण के प्रति अटूट निष्ठा का प्रमाण है। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Kalikamba Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om Namah Shivaya. Bhaktum, abhi hum aur ek Dakshin Bharatiya Sant ya Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Kalikambar hai. Pinnadagam Nagar mein एक वणिक परिवार रहता था। उस परिवार में कलिकम्बर का जन्म हुआ। वे प्रतिदिन मंदिर जाते, भक्तिभाव से शिव पूजन करते और बड़े प्रेम से शिव भक्तों को भोजन कराते थे। भोजन कराने से पहले वे श्रद्धापूर्वक पत्नी के साथ शिव भक्तों के चरण पखारते थे। पखारते यानी सेवा करते थे। एक दिवस नित्य नियमानुसार उनकी पत्नी कलश में पानी भरकर भक्तों के पांव पर उंडेल रही थी और कलिकम्बर हाथों से उनके चरण धो रहे थे। अचानक पत्नी की दृष्टि शिव भक्तों में से एक के चेहरे पर पड़ी। वह पहचान गई कि यह तो वही व्यक्ति है जो कुछ समय पूर्व घर में सेवक था और बिना सूचना दिए भाग गया था। मन में विचार आया कि आज यह स्थिति आ गई कि ऐसे व्यक्ति के भी पांव धोने पड़ रहे हैं। इसी चिंतन प्रक्रिया में कलश से पानी डालने में बाधा पड़ गई। कलिकम्बर ने यह देखा, पत्नी की मनस्थिति को समझा और तुरंत उसे दंडित कर दिया। प्रिय पुराणम के रचयिता चिक्किलर ने इस घटना पर एक विचार दिया है। हम अपने समक्ष खड़े व्यक्ति की पहचान उसकी वेशभूषा, बात करने और काम करने के ढंग, हाव भाव आदि से करते हैं। जिन्हें हम पहले से जानते हैं, बहुत समय बाद भी यदि उनसे भेंट होती है तो उनके प्रति हमारी पूर्व धारणा बनी रहती है। इस बीच कितना परिवर्तन हुआ है, कालक्रम में उस व्यक्ति ने विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं अथवा पतन की ओर, हम इसका विचार नहीं करते। इन सब सूचना बातों को आधार बनाकर समक्ष आए व्यक्ति का मूल्यांकन असंभव है। धनी समृद्ध उच्च अधिकारी को यदि उनकी मनोवृत्ति के आधार पर तोलें तो अनेक ऐसे होंगे जिनका हम सम्मान नहीं कर पाएंगे। भक्त वेशधारी सभी भक्त नहीं होते। मुक्त नादन और अतिशूरन इसके उदाहरण हैं। इसलिए प्राचीन काल में हमारे पूर्वज वेश और चिन्ह को आदर देने लगे। शिव चिन्ह को शिव रूप में देखकर उसकी उपासना का यही आधार है। कलिकम्बर भी इस तथ्य को जानते थे, अतः शिव भक्त के वेश में आए प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते थे। उनकी पत्नी इस विचार को आत्मसात नहीं कर पाई थी। इससे उनके हृदय में भेदभाव उत्पन्न हुआ। कुछ समय पूर्व जो घर का नौकर था प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था और पति को उनके पांव धोने पड़ रहे हैं, यह विचार उसे दुख प्रदान कर रहा था। कलिकम्बर ने उसे दंड दिया। उन्होंने सोचा कि यह तो ठीक नहीं है। आगत व्यक्ति पुराना नौकर है, यह जानते हुए भी उसे आदर सत्कार शिवभक्त जैसा ही मिले, यही उनकी इच्छा थी। इसीलिए यह देखा जाता है कि कलिकम्बर हर एक शिव भक्त को एक समान देखते थे। इसीलिए वे एक महान नायनमार्य संत हैं। ओम नमः शिवाय।
3: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
4: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம்.org, த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் சுவாமி ஸ்ரீ ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
5: ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभम् चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशु मृगवरा भीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृतिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्र नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महंतं गोविंदयोगींद्रमताश शिष्यं श्रीशंकराचार्यमताश पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः शान्तिः

0: मां चंद्र से खर रक्ष ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित तथा दैया परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत सायंकालीन ये प्रवचन का कार्यक्रम कल 16 तारीख से शुरू हुआ और ये 29 तारीख तक चलेगा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर ये प्रवचन माला चिंतन माला 3 वर्ष पहले आरंभ हुई थी। 100 श्लोक का यह शिवानंद लहरी स्तोत्र है। गत वर्ष तक के चिंतन के क्रम में 66 श्लोक तक का चिंतन किया था और उसी के बाद के श्लोकों पर विचार आरंभ किया। कल 2 श्लोकों पर विचार हुआ, आज 69वां श्लोक 69 इस पर हम विचार करेंगे कि शंकराचार्य जी भगवान शिव जी से कौन सा भाव व्यक्त करते हैं, किस प्रकार का भाव अपने व्यक्त करते हैं। हमने कल कहा था कि स्तुति प्रार्थना भाव प्रदान होता है, प्रार्थना भावना से की जाती है, शब्द और भावना, तो भावना की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होता है। महात्मा लोग कहते हैं शब्द तो साधारण व्यक्ति भी सुन लेता है, तो साधारण व्यक्ति और परमात्मा में यही अंतर है कि परमात्मा भावना को भी सुनता है, निःशब्द भावना को भी सुनने की क्षमता परमात्मा में है। तो ये श्लोक के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी किस प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं अभ्यास करें। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदा भरणस्य नास्मि किं पात्रम् जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम् अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या वरिवसि तुम सुलभः प्रसन्न मूर्ति अगणित फलदायक प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजसे कुरोस्ति अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या वरिवसि तुम सुलभ प्रसन्न मूर्ति अगणित फलदायक प्रभुर्मे जगदधिकोरिधि राजशेखरोऽस्ति। अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्धिया। भगवान शंकराचार्य जी, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव से कहते हैं कि महाराज, आप मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? मेरा तिरस्कार आप क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? जहां तक है कि मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं, हर व्यक्ति अपना मूल्यांकन अपने आप करे वो गलत है। व्यक्ति के मूल्यांकन कोई दूसरा करे तो वो सही होता है। अपने आप को महान व्यक्ति तो हर व्यक्ति कहेगा, दूसरा व्यक्ति तुम्हें महान कहता है कि नहीं इस पर निर्भर करता है तुम्हारी महानता में। अपने आप को महानता तो हर व्यक्ति कहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मुझमें बहुत सी कमी कमजोरियां हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा तिरस्कार करने योग्य तो नहीं हूं। मुझे लगता है कि आपके अनुग्रह का पात्र मैं बन सकता हूं, लेकिन आज तक आपके अनुग्रह का पात्र क्यों नहीं बना? तीन चार चीज को यहां प्रस्तुत किया है, जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वम, ये चार चीज हैं। जहां तक कि मुझमें ये चार भाव नहीं है, जड़त भाव भी नहीं, मैं इंसान हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं जीवंत हूं, मैं जड़ नहीं हूं। और ये मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं कि मैं बिल्कुल ही जड़ नहीं हूं, जड़ हो सकता हूं, जड़ भी हो सकता हूं, लेकिन इतनी मात्रा से आप मुझे परित्याग कर दें, स्वीकार न करें, तिरस्कार करें, ये गलत है। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं इंसान हूं, पशु तो नहीं हूं। शायद विषयों के प्रति आसक्त होने के कारण या अपने ही कर्म बंधन से बंधे हुए के कारण कुछ पशु भाव मुझमें भी हो सकते हैं। पशुता सर्वथा पशुता नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता हूं। मुझमें कुछ बंधन है और शायद उन्हीं बंधनों के चलते मैं मुझमें पशुता हो सकती है, लेकिन इतनी मात्र से आपके द्वारा मैं सर्वथा तिरस्कृत हूं, आप मुझे सर्वथा तिरस्कार कर दें, ये बात तो नहीं जचती है। कलंकिता तीसरा भाव है, जहां तक ख्याल है कि मुझे कि जीवन में मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया। कहने के लिए तो हर इंसान ये कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, गलत काम करते हुए भी वो यही कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि अपने कर्मों का मूल्यांकन जो है वो अपनी वासना से प्रेरित होकर करता है। हम कभी किसी को कहते हैं, व्यापारियों को कहते हैं कि तुम ईमानदारी से व्यापार करो, तो व्यापारी जवाब देते हैं, महाराज हम बड़े ईमानदारी से व्यापार करते हैं, और सारी दुनिया ही जानती है कि व्यापारी कितनी ईमानदारी से व्यापार करते हैं। हर व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे तो समाज में कोई मिलावट नहीं हो सकती है। लेकिन आज समाज में कोई सामान खरीदने जाओ तो हर सामान में मिलावट मिलता है। शुद्ध वस्तु मिलना तो आजकल असंभव हो गया। और हर व्यापारी को कहो कि ईमानदारी से व्यापारी क्या करो, बोले महाराज हम बड़े ईमानदारी से व्यापार करते हैं। और उसी के सामने कहा कि ये देखो तुम्हारी ईमानदारी, इसमें ये मिलावट की है, ये गड़बड़ी किया है। तो बड़ी शालीनता से, मधुर भाषा से, बड़े शिष्ट भाषा से जवाब देता है, महाराज थोड़ा बहुत तो इस जमाने में करना ही पड़ता है। बड़ी शालीनता से जवाब देता है, विनम्रता से जवाब देता है। ये थोड़े बहुत नीचे ऊपर न करो, इधर उधर न करो, तुम्हारा चलेगा ही नहीं जमाना में। आज के जमाने में ये सब करना ही पड़ता है। अपने कर्म को इस तरह वेरिफिकेशन कर रहा है, बिल्कुल प्रमाणित कर रहा है कि मैं शुद्ध ईमानदारी से काम कर रहा हूं। जो हेर फेर हुई, नीचे ऊपर हुई है, वो तो अनिवार्य है, बाध्यता है, समसापेक्ष है, तो कैसे मूल्यांकन होगा। और हर व्यक्ति स्वयं गलत काम करते हुए भी उद्घोष नहीं कर सकता, सार्वजनिक नहीं कर सकता, घोषणा नहीं कर सकता कि मैं गलत काम करने वाला व्यक्ति हूं। कर सकता है? ऐसा मिला है आपको समाज में आज तक कोई जो गलत काम करने के बाद स्वयं उसने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की हो, ये समाज के लोगों सुन लो, देख लो, मैंने ये अपराध की है, ऐसा कहने वाला कहीं मिला है आपको? कलंकिता। इसलिए कहते हैं कि करना पड़ता है। हमें जवाब देते हैं, महाराज गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में थोड़ी बहुत तो नीचे ऊपर होती है, यानी गृहस्थ आश्रम में गलत काम चल जाता है, नहीं? क्योंकि हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थ में ये सब चल जाता है। अब आश्चर्य की बात यह है, हम गिरस्त होकर ये सब गलत काम कर लें तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप साधु होकर गलत काम करो, ये अपराध है। ये कहते हैं कि नहीं, बोलो हैं? यही कहते हैं कि नहीं? पब्लिक होकर गलत काम करे ये तो ठीक है, ये हजम हो जाता है समाज को, लेकिन पुलिस होकर गलत काम करे समाज को हजम होता है? अब जबकि साधु ये कहे तुम गृहस्थ हो, तुम गलत काम करो तो तुम्हारे समाज में चलता है, तो तुम्हारी रोटी खाकर हम भी गलत काम करें तो वो क्यों नहीं चलता है? है? चलना चाहिए ना, उसको भी चला लो भाई, दाल रोटी तो तुम ही खिला रहे हो। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं ईमानदारी से, मैं ये नहीं कह सकता गारंटी के साथ कि मुझ में कोई कलंक नहीं, कोई गलती नहीं है। जहां तक ख्याल है मैं अपनी मूल्यांकन में खुद करूं तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की। आप भी ये कहोगे कि नहीं, बोलो? अभी यही कहोगे कि नहीं? लेकिन जब गलती की है कि नहीं अनुसंधान करने लगेंगे तो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, गलती के बाद गलती सामने जब आता रहेगा तो कहोगे ये तुमने गलती की है, या तुमने गलती की है, तो तुम जवाब क्या दोगे? महाराज ये संसार में तो ऐसा होता ही रहता है, तो अपने बचाव में तुम ये बात कहोगे कि नहीं बोलो? हम कहते हैं कि नहीं अपने बचाव में ये शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं? महाराज ये तो होता ही रहता है, जमाना ऐसा है, समाज ऐसा है, थोड़ी बहुत नीचे ऊपर न करो, हेर फेर न करो तो ये समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वम च नास्ति मई देव। दो संबोधन है शिव जी के लिए, शंकराचार्य जी दो संबोधन कर रहे हैं, एक देवा ये संबोधन कर रहे हैं, हे देवा मई मुझ में जड़ता नास्ति, पशुता नास्ति, कलंकिता नास्ति, कुटिलचारत्वं च नास्ति, तब मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे हो? और यदि अस्ति, हे राजमौले, ये संबोधन है राजमौले, हे राजमौले यदि अस्ति आपके दृष्टि से मुझ में ये दोष यदि हैं, हालांकि मेरे दृष्टि से मुझ में ये दोष नहीं है, मैंने भूमिका में कह दिया ना, हर व्यक्ति अपने गलती को नहीं देखता है, दूसरे को गलती को जल्दी देखता है, अपने गलती को नहीं देखता है, ये जीव का स्वभाव है। आपके दृष्टि से यदि मुझ में ये दोष हैं भी तो, हैं भी तो, ध्यान देना, क्योंकि जड़ पदार्थों के सेवन करते करते और जड़ वस्तुओं के साथ आत्म तादात्म्य करने के कारण आध्यात्मिक जड़ पदार्थों के साथ संबंध से मुझ में जड़ता आपके दृष्टि से हो सकती है। आप नहीं मानोगे कि मैं जड़ हूं, आप लोग यहां बैठे हो, आप अपने को जड़ मानते हो कुर्सी की तरह, बोलो है? सही रूप में विचार करें, आपका शरीर और कुर्सी में अंतर नहीं है, सही रूप में विचार करें तो आपका ये जो कुर्सी यदि 100% जड़ है तो आपका शरीर भी 100% क्या है? जड़ है। लेकिन कुर्सी को 100% जड़ आप मानने को तैयार है, लेकिन अपने शरीर को 100% जड़ मानने को तैयार है?
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Che Achar Par Yati Viram Aur Aagi Gar Achar Par. आप इसमें गिन के देख सकते हैं, हर छठवें अक्षर पर विराम होता है और बाद में ग्यारह अक्षर पर। रसई रुद्रई छिन्ना, इसके लक्षण में भी घटा दिया है। रसई रुद्रई छिन्ना छह हो गए। रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी, इस शिखरिणी छंद है और इसके देवताएं भगवान शंकर और आचार्य पुष्प दंताचार्य। पुष्प दंताचार्य जी का नियम था, हमेशा एक बगीची से फूल चुरा कर लाते और भगवान शंकर की पूजा करते। पुष्प दंताचार्य जी का हर दिन का एक काम था, उनके पास अंतर्धान होने की शक्ति थी, सामर्थ्य था। राजा ने अपने नौकरों को डांटा कि तुम लोग ठीक से हमारे बगीची की सुरक्षा नहीं करते हो, क्योंकि बगीची के फूल चोरी हो जाते हैं। नौकरों ने कहा कि राजन, हम लोग बड़ी सावधानी से तत्परता से फूलों की रक्षा करते हैं, पर न जाने कौन आता है और फूलों को चुरा के ले जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। राजा ने समझा कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास अंतर्धान होने की शक्ति, उस शक्ति से चुराता होगा। राजा ने नौकरों को बुलाया और कहा कि भगवान शंकर के निर्माल्य, निर्माल्य बोलते हैं जो शिव जी पर चढ़ा हुआ, जो चावल हो, पुष्प हो, बिलपत्र, उसका नाम निर्माल्य है। निर्माल्य को उस पुष्प वाटिका के चारों तरफ बिखेर दिया। गंधर्व राज पुष्प दंताचार्य जी जैसे ही आए और आकर फूल तोड़कर जैसे ही आकाश गमन करना चाहे, शक्ति कुंठित हो गई, क्योंकि भगवान शंकर का अपराध हो गया, निर्माल्य का अतिक्रमण कर दिए। वैसे भी नियम है प्राचीन, आजकल तो लोग ध्यान ही देते हैं कि अपने से बड़े का, बुजुर्ग का, श्रेष्ठ का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अतिक्रमण कि वो आगे जा रहा है तो रास्ता काट के न जाए, उसके आगे न चले। तो भगवान शंकर के निर्माल्य का अतिक्रमण करने से अंतर्धान होने की शक्ति कुंठित हो गई, नष्ट हो गई। उन्हें विचार किया, हमसे क्या अपराध हुआ। उन्हें मालूम हुआ कि हमने कोई न कोई अनजाने में अपराध किया है। वहीं विचारने लगे, ध्यान से देखा तो भगवान शंकर का निर्माल बिखेरा हुआ था। सोचे कि अब तो भगवान शंकर को ही प्रसन्न करना पड़ेगा, अन्यथा राजा पकड़ेगा, बंदी बना लेगा, दंडित करेगा, बहुत पीड़ा होगी। वहीं पर तत्परता से खड़े होकर भगवान शंकर की वंदना करने लगे। जब मनुष्य को मौत दिखाई पड़ती है तो एकाग्रता से भगवान का स्मरण करता है, और दिन तो बस खाना पूर्ति करता, औपचारिकता बस करना इसलिए करता है। देखिए, कुछ रोगी ऐसे होते हैं कि दवाई खाना इसलिए दवाई खाते हैं, चाहे स्वास्थ्य हो या न हो, बस दवाई खाना है, नियम बना लिया। ऐसे ही हम लोग और दिन तो बस भगवान का स्तोत्र करते हैं, तत्परता नहीं होती है, पर जब मौत दिखाई पड़ती है तत्परता हो जाता है, एकाग्रता आती है। उस दंताचार्य ने एकाग्रता से आंख बंद करके भगवान शंकर की स्तुति प्रारंभ कर दी। उसी स्तुति का नाम है शिव महिमना स्तोत्र। जरा हम लोग उच्चारण कर लें, इसके बाद अर्थ। तो आप ध्यान रखना, छह पर और ग्यारह पर रुकना है। महिम्ना पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुति ब्रह्मादीना मपि तद्वसन्नास्त्वयि गिर अथा

कर। हाथ जोड़कर दंताचार्य जी अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ते महिमना पारम, पहले संबोधन यहाँ पर हरा है, देखिए हरा जो नीचे है ना, सबसे चौथे चरण में है, संबोधन है। हे हरा, हर का अर्थ होता है हरतीति, हर की मरती, कोई धन हरण करता है, कोई सोना चुराता है, कोई किसी का आजीविका। यहाँ पर एक सर्वान पापान हरतीति हर, जो हमारे कस्मल को पाप को हरण करे उसका नाम हर है। उपनिषद में आता है ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः। मनुष्यों को ज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब पापी या कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे बाहर की नजर के लिए ये पतली सी दीवाल प्रतिबंधक है, जब तक पतली सी दीवाल है तब तक बाहर के नजारे को हम देख नहीं सकते। ऐसे ही ज्ञान रूपी सूर्य का प्रतिबंधक पापीय कर्म है। जो लोग विमान में यात्रा किए होंगे उन्हें पता है कि जब विमान ऊपर जाता है तो बादल बीच में होते हैं, मतलब कि मनुष्य जो पृथ्वी लोक में है उनके और सूर्य दोनों के बीच में बादल होता है, विमान तो ऊपर चलता है। हालांकि सूर्य का प्रतिबंधक बादल नहीं, पर हमारे आंखों के सामने बादल आ गया इसलिए हम सूर्य की रोशनी से वंचित हो जाते हैं। परंतु जो विमान बादल के ऊपर गमन कर रहा उसका प्रतिबंधक वह नहीं होता। ऐसे ही आत्म साक्षात्कार जो ब्रह्म चैतन्य है, जो ब्रह्म और जीव के बीच में ये बादल है अविद्या का, वासना का, जिसको हम पाप कहते हैं, कस्मल कहते हैं, इसके क्षीण होते ही तत्व का साक्षात्कार होता है। इसलिए संबोधन किया, हे हर, हमारे पापों का हरण करने वाले ते मतलब आपकी महिमना कारते महिमा परम पारम, आपकी महिमा के पार को कोई भी नहीं समझता है। देखिए परम पारम दो शब्द है, परम कार्य सर्वोत्कृष्ट और पारम कार्य की सीमांकन करना, जैसे नदी के पार जाना, सागर के पार जाना, गांव कुछ पार जाना, मतलब सीमा का अतिक्रमण करना। इस प्रकार से भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप महिमा का कोई अतिक्रमण पार नहीं कर सकता, सीमा को जान नहीं सकता। जैसे किसी व्यक्ति के सीमा को हम जानते हैं, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतने गुण वाला है, इतनी इसमें कारीगरी है, पर भगवान शंकर के सर्वोत्कृष्ट महिमा को, सीमा को कोई भी नहीं जानता, अविदुषः नहीं जानने वाले। स्तुति मतलब स्तवन, यदि मतलब अगर असदृशी, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो त्वयि अवसन्ना, आपके अनुकूल नहीं है, अयोग्य है। अवसन्ना कहते अयोग्य, आपका अनुकूल योग्य नहीं है। जैसे कि आज के लोग प्रशंसा करते किसी की, अब प्रशंसा करते हैं उसको नहीं जानकर, तो प्रशंसा भी एक तरह से उत्तेजक हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज आपको बड़ी मोटी बुद्धि है, बहुत बड़ी बुद्धि है, अभी प्रशंसा है कि जो है अवज्ञा है। अब भोला वाला व्यक्ति इसको पता नहीं है, वो तो अपने हिसाब से प्रशंसा करता है कि बड़ी मोटी बुद्धि, बहुत बड़ी बुद्धि, मतलब कि ज्यादा बुद्धिमान है। उसके भाव में दोष नहीं, शब्द भले उत्तेजक हो पर भाव शुद्ध है। ऐसे पुष्पदंताचार्य जी करते हैं, हम आपके महिमा को, स्वरूप को न जान करके यदि आपके अयोग्य स्तुति करते हैं, स्तुति आपके अनुरूप नहीं है, तो फिर ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण भी आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि वह किसी के बुद्धि का विषय नहीं, वाणी का विषय नहीं, तो वह भी अयोग्य है, वह भी ठीक नहीं है। यदि उनकी प्रार्थना, उनकी मतलब ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर की प्रार्थना स्वीकृत है, योग्य है, अनुकूल है, तो फिर हमारा भी यह प्रार्थना उचित होना चाहिए। क्योंकि तो सभी व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो अपने बुद्धि के अनुसार,
देखा ना, स्वमति परिणामावधिगृहणन, अपने मति के अनुसार ही कोई किसी का तारीफ करता है, चाहे ब्रह्मा करते हो आपकी प्रशंसा, या विष्णु करें या इंद्र कुबेर वरुण करें। तो मैं भी आपके अपने बुद्धि अनुसार आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, यह भी आपको स्वीकार होना चाहिए, निरपवाद होना चाहिए। जैसे आकाश में अपने सामर्थ्य के अनुसार मच्छर भी उड़ता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार चील गिद्ध भी पक्षी उड़ते हैं। मच्छर थोड़ा उड़ता है, चील गिद्ध 10-20 किलोमीटर उड़ेंगे, तो गरुड़ जी बहुत ज्यादा उड़ सकते हैं। परंतु उस आकाश के पार को, सीमा को, न गरुड़ जी पा सकते हैं, न मच्छर, न चील, न गिद्ध। अब आप कहो कि भाई जब आप आकाश की सीमा को पार ही नहीं कर सकते हो तो फिजूल में क्यों उड़ते हो बिना मतलब का, उड़ना बेकार है, व्यर्थ होगा कहां कथन। भाई मच्छर भी उड़ता अपने शक्ति अनुसार, अपना काम चला लेता है, चील गिद्ध भी उड़ते, गरुड़ भी उड़ते हैं। ऐसे ही जैसे कि आकाश का कोई भी सीमा बांध नहीं सकता है, पार नहीं कर सकता है, फिर भी अपने शक्ति अनुसार उड़ते हैं, अपना काम चलाते हैं, ऐसे मैं भी अपने बुद्धि अनुसार आपकी स्तुति प्रार्थना को कर रहा हूँ। इस प्रकार से कुछ दंताचार्य ने भगवान से प्रार्थना किया है। तव तत्त्वम् न जानामि, भगवान के तत्व को न जान करके भी आप जैसे वैसे उसी प्रकार से हमारे प्रार्थना को स्वीकार करना। अक्सर क्या होता है, जब हम किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसके रहस्य को न जानने के बाद हमारा मन बायां दायां होता है ना। कई बार यदि आप किसी स्तोत्र के शब्द के अर्थ को ठीक से जानते हो तो ठीक से जानने के बाद हमारी मन, हमारा बुद्धि उसमें लग जाता है। एक बड़े भारी विद्वान थे, अक्सर वेदांत पढ़ाते थे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि। उसमें से कहीं से प्रसंग आ गया जो है दृष्टांत, उष्ट्रमुख चंद्रमुख आता ना संकेत में, चंद्रमुख तो प्रसिद्ध है, उष्ट्रमुख आया कहीं तो जिज्ञासु ने पूछा क्या उष्ट्रमुख का उदाहरण दे रहे, उष्ट्रमुख क्या होता है, उष्ट्र किसे कहते हैं। अब बेचारे जो है ऊंट को देखे नहीं थे, काशी में ऊंट होता भी नहीं, उन्होंने कहीं सुन रखा था कि उष्ट जो है उड़ता है, उष्ट्र में उड़ने में बोले देख भाई उड़ने वाले पक्षी का नाम ऊंट है। दस से व्याकरण में बताया उष्ट्र नाम पक्षी विशेष, उष्ट्र पक्षी विशेष का नाम है। विद्यार्थी ने कहा गुरु जी जब पक्षी है मतलब उड़ता होगा, उड़ता होगा तो यहां भी दिखाई देना चाहिए। तो विद्यार्थी ने कहा कि गुरु जी ये बात संगत नहीं, तो उसमें राजस्थान एक था, उसने कहा उष्ट उड़ता नहीं, वो तो एक पशु विशेष है,

पीओटी पॉट होता ना, पॉट का अर्थ है बर्तन। आप किसी को बोलो कि ब्रिंग अ पॉट तो घड़ा ला कर रख देता है। प्रवास में पॉट शब्द का अर्थ घड़ा नहीं, उसका तो अर्थ है कि जिसमें जल रखा जाए, दूध रखा जाए, उसका नाम पॉट है। परंतु हमने भाषांतर में अनुवाद कर लिया घड़ा अपने समझने समझाने के लिए, पर पॉट शब्द का अर्थ घड़ा नहीं होता। उसका अर्थ है जिसमें दूध दही जल रखा जाए, उसका नाम पॉट है। ऐसे हम लोग अपने बुद्धि के अनुसार शिव विष्णु कृष्ण इत्यादि इन शब्दों के अर्थ को परिकल्पित कर लेते हैं। तो शास्त्र के अनुसार जो भगवान की महिमा है उसको अपरंपार कर दिए। भगवान शिव की ऐसी महिमा है कि चाहे कोई कैसे भी भगवान की उपासना करे, ये अवगढ़ दानी भोले बाबा है। काशी विश्वनाथ की कोई पूजा करे और पूजा करते समय सोने के घड़े में गंगा जी के जल को चढ़ाए, इसके बाद में केसर युक्त चंदन का लेप कर दे, सुंदर कीमती चंपा बेली की मालाएं हो या कमल के मालाओं से भगवान शंकर को आच्छादित कर दे, ढक दे, चढ़ा दे। इसके बाद मानो कोई बुढ़िया आई, अब बुढ़िया तो गरीब है, टूटी फूटी, उसके पास लोटिया है, अब हाँ उंगली से छिद्र को बंद किया, जल भरा और उस महादेव पर हर हर महादेव करके छोड़ दिया। सामने वो सेठ खड़ा है पर वो बोल नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं कि भाई हमने सोने के बर्तन में गंगा जल को चढ़ाया, इतना सुंदर माला सजाया, केसरुक चंदन का लेप किया, और तूने जो फूटी टूटी लोटिया में जल डालकर सब धुल दिया, ऐसा बोल सकता है? भाई सेठ का सामर्थ था, सोने के घड़ा मिलाकर जल चढ़ाया, कमल के फूल से पूजा किया, केसरुक चंदन का लेप किया, तो बुढ़िया के अंदर सामर्थ है तो टूटी फूटी लोटिया में से ही जल चढ़ा देती है। और वह बेचारे गेंद के फूल को चढ़ा दिया, उसके फूल को हटा करके, तो भी न भगवान शंकर आक्षेप करते हैं न वो सेठ करता है। भगवान शंकर ये मस्त पड़े हैं, सेठ भी साहब ने देख रहा है कि भगवान शंकर ऐसे हैं कि चाहे जैसे भी हो आप इनकी पूजा करो, महिमा गुणगान करो, ये हमेशा प्रसन्न ही होते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण भी भगवान श्री के महिमा को नहीं जान सके तो सामान्य व्यक्ति कैसे जान सकता है? एक बार की घटना है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि चतुर्भुजधारी कोई पुरुष आ रहा, भगवान विष्णु, उनसे पूछा तुम कौन हो? विष्णु भगवान ने कहा कि मैं जगत को उत्पन्न करने वाला तुम्हारा पिता भगवान विष्णु हूँ। ब्रह्मा ने कहा आश्चर्य की बात है, सारा दुनिया को हमने बनाया, लोग हमें प्रजापति ब्रह्मा कहते हैं, परम पिता कहते हैं, और तुम कहते हो कि हमने तुमको उत्पन्न किया? झूठ मूठ की बात है, कोई प्रमाण नहीं। अब भगवान विष्णु कहे कि मैं तुम्हारा पिता, ब्रह्मा जी कहे मैं पिता, मैं जगत को उत्पन्न किया, तुमको ही हमने बनाया। ब्रह्मा जी ने तर्क दिया, यदि तुम मुझे उत्पन्न किए होते तो तुम दुनिया को भी बना लेते, मैं दुनिया को बनाता हूं इसीलिए तुमने हमको उत्पन्न नहीं किया है। अब दोनों विवाद बढ़ गया, कौन बड़ा, कौन पिता, कौन पुत्र। उनके सामने विवाद को देख करके ज्योतिर्मय एक लिंग प्रादुर्भूत व स्तंभ, एक पिलर बहुत लंबा, दोनों ने विचार किया कि हम में से जो सबसे पहले इसके अंत को पार को जान लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा, वही पूजित होगा। ब्रह्मा जी रजोगुणी थे, झट हंस पर सवार होके और सीधा ऊपर चले गए। जो रजोगुणी होता ना अहंकारी, वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखता है। अब ब्रह्मा विष्णु ही सत्वगुणी देवता है, उन्होंने जो है अपने गरुड़ पर सवार होकर नीचे गए। कई जिद्द वर्षों तक जाते रहे पर पता नहीं लग पाया इसका ओर छोर कहाँ है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कहीं ऐसा न हो कि हमारे से पहले विष्णु सीमा को जान करके और आ गया हो तो मुझे लज्जित होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। उन्होंने बीच में देखा एक गऊ आ रही है और केतकी फूल, दोनों को बहुत समझाया बुझाया और ईश्वर दिया, घोष दिया, कहा कि ऐसा है तुम खाली साक्षी बन जाना, गवाह बन जाना, गर्दन हिला देना,

0: बता देना कि हम जो है शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कर रही थी। अब फूल को सिखाया कि तुम कहना कि मैं बरसों से ऊपर से गिरते हुए आ रहा हूँ। और ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, केतकी को साक्षी बना लिया हो, गऊ को, दोनों को साक्षी बना करके और प्रलोभन दिया कि तुम्हारी पूजा होगी, हर तरह से तुम्हें जो है मैं श्रेष्ठ बनाऊंगा। दोनों साथ आ गए। भगवान विष्णु आराम से नीचे करके बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने हंस कर कहा, देखो हमने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया, ज्योतिर्लिपिंड का। विष्णु का अच्छा साक्षात्कार कर ली, साक्षी क्या, गवाह क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो दो दो गवाह हैं, एक गौ, दूसरा केतकी फूल। गौ ने भी गर्दन हिला दिया, केतकी ने भी हां भर दी। इस झूठ को भगवान शंकर सहन न कर सके, तुरंत अट्टहास हुआ, भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शंकर ने कहा, अरे ब्रह्मा तो लोकपाल है, लोकपाल हो कितना झूठ बोला कि मैंने इस ज्योतिर्पिंड का साक्षात्कार कर लिया, सीमांकन कर लिया, जा तेरी आज से पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम हमारे समान पूज्य बंद हो गए क्योंकि तुमने झूठ नहीं बोली। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दे डाला। देखो एक बार झूठ बोलने से ब्रह्मा जी की पूजा बंद, आज ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती। और गौ ने झूठ बोला तो क्या हुआ, श्राप दिया कि तू जो है ना क्या मलिन, अशौच, अशुद्ध पदार्थों को खाएगी। इसीलिए गाय जो जब रास्ता में चलती है तो झट से जो है ना जो भी मलिन टट्टी मट्टी सब खा लेती है। एक बार गाय के झूठ बोलने से उसे इतना दंडित किया, पर जो लोग हमेशा झूठ बोलते उन्हें क्या खाना पीना पड़ता होगा, कल्पना कर लो। और केतकी का बहिष्कार कर दिया हमेशा के लिए। केतकी फूल कितना सुंदर सुगंधित होता है, पर भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ता है। तो यहां पर जब ब्रह्मा और विष्णु भी भगवान शिव के महिमा को नहीं जान सके तो सामान्य प्राणी भला कैसे उनकी महिमा को जान सकता, असंभव है। परंतु मनुष्य अपने बुद्धि से जो भी कुछ करता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आगे बढ़े क्योंकि बहुत कुछ करना है ना, अभी एक और उच्चारण कर लें। अतीत पंथानम तवच महिमा मां मनसयो रत व्यावृत्यायम चकितम भिदक्ते श्रुतिरपि सकस्यस्तोतव्य कतिविध गुण कश्य विषय पदे तर्वार्ची ने पतति न मन कश्य न वच। अतीत पंथानम, आप वाणी मन के रास्ते से अतीत है, परे हैं। भगवती श्रुति भी आश्चर्यचकित होकर नेति नेति निषेध मुख से आपके स्वरूप का प्रतिपादन करती है। सकस्य स्तोतव्य, वह किसके द्वारा स्तोत्य अर्थात किसी के द्वारा स्तुति का विषय नहीं बन सकता है। कतिविध गुण कस्य विषय, क्योंकि आप नाम रूप से अतीत हैं। जहाँ पर नाम होता है वह वाणी का विषय होता है, जिसमें रूप होता है उसको हम मन से चिंतन करते हैं। और आप असंग होने से किसी के संग से भी आपकी महिमा नहीं हो सकती। तो नाम रूप से परे होने कारण से मन वाणी की आप विषय नहीं है। फिर जब मन वाणी के विषय नहीं तो आपका भगवत स्मरण कैसे कर सकते हैं, महिमा कैसे गाई जा सकती है? तब जाकर बताया कि आपका जो एक सगुण साकार विग्रह है, जैसे एक ही जल के तीन स्वरूप है, सूक्ष्म, तरल और ठोस। सूक्ष्म वाष्प रूप है जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, और तरल है जो हमारे प्यास को बुझाता है, ठोस है जो हिमालय की यात्रा में सेतु का काम करता है। जल का एक ठोस स्वरूप है बर्फ। इसी प्रकार से उस परमात्मा का तीन स्वरूप है, निर्गुण निराकार जिसको ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार जिसका नाम ईश्वर है, जिसमें तीनों गुण है, जगत का कर्ता है पर उसके आकार प्रकार नहीं। तीसरा सगुण साकार है। सगुण साकार को यहाँ पर अर्वाचीन शब्द से कहा गया है, लिखा ना पदे त्वरवाचीने, जो अर्वाचीन तीन मतलब सगुण साकार विग्रह है उसमें कस्य मना कस्य वचः न पतति, किसका मन किसकी बाणी नहीं लगती, अर्थात सबका मन और सबकी बाणी उसमें लग जाती है। इसीलिए आपका जो सगुण साकार विग्रह है उसी का लोग जो है प्रार्थना करते हैं। लोग सनातन धर्म पर बार बार आक्षेप करते हैं, खासकर ईसाई और इस्लाम धर्म वाले, कहते ये लोग बहुदेववाद है, बहुत देवता मानते हैं, परंतु ये नाच समझी का कथन है। स्वयं ऋग्वेद में कहा है एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वह एक ही चैतन्य है, उसको नाना शब्दों से नामों से कहा जाता है। वह एक ही चैतन्य है, शिव बन जाता है, ब्रह्मा बनता, विष्णु बनता, कृष्ण बन जाता, राम बन जाता, दुर्गा देवी बन जाता है। दुर्गा सप्तशती में आता है कि जब शुंभ ने आक्षेप किया कि मैं तो अकेले संग्राम कर रहा हूं और तू अनेक रूप में हमसे लड़ रही, अधर्म है, उस समय देवी ने कहा एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया कावा ममा परा। पुराण में भी तत्व का एकत्व प्रतिपादन है, स्वयं भगवती ने कहा कि मैं एक ही वाहम, मैं अकेले हूँ, द्वितीया कावा, द्वितीया कुछ भी नहीं है। और ऐसा कथन करने के बाद सारी विभूतियां ब्रह्माणी रुद्राणी उस देवी के शरीर में अंतर्भूत हो गई, तब जाके महासंग्राम हुआ। उपनिषद में आता है एको देव सर्वभूतेश गुड्ढ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। आप विचार करें चाहे पौराणिक दृष्टि से या वैदिक दृष्टिकोण से, तो हमारे यहां भी एक ही देव एक ही चैतन्य है, वही नाना रूप धारण करके भक्तों का कल्याण करता है, परंतु अज्ञान से वे कहते हैं कि बहुदेववादी है, ये एक देव नहीं मानते हैं। सुनने में आता है कि मक्का में 365 मूर्तियां थी, पर मोहम्मद साहब ने 365 को खंडित करके केवल एक अल्लाह को छोड़ दिया। ऐसे ईसाई लोग बार बार आक्षेप करते हैं कि एकमात्र उनके यहाँ यहोवा देवता है, बस वही देवता है, सारे देवता शैतान है, उनके यहाँ सब शैतान का है। पर वास्तव में हमारे यहाँ भी एक ही देवता माने गए हैं, पर अनंत जो है लीलाओं को करने के लिए अनंत स्वरूप को धारण किया है। जैसे कि रंग मंच पर जब रास करना होता है तो अनेक प्रकार से वहां पर साजबाज करने पड़ते हैं, रूप बनाने पड़ते हैं, कोई रावण बन गया, कोई जो है राम बन गया, कोई लक्ष्मण बन गया, कोई हनुमान बन गया। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य नाना रूप में परिणत हो जाता है या लीला करने के लिए। और यह भी तार्किक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ सभी सत्संग से बाहर जाए, किसी ने आपकी चप्पल चुरा ली, तो आप इसकी शिकायत कहाँ करेंगे, प्रधानमंत्री से करेंगे, राष्ट्रपति से, किससे करेंगे? चप्पल चोरी हो गई या 10,000 का पर्स गुम हो गया तो पहले प्रेमपुरी आश्रम के व्यवस्थापक मैनेजर से करना पड़ेगा, इसके बाद ऊपर यहाँ के अध्यक्ष के पास शिकायत पहुंचेगी, वहां समाधान नहीं हुआ तो थाने में जाएगी, पर पहले यहाँ करना पड़ेगा। और सीधा थाने में जाएंगे या राष्ट्रपति के पास तो लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे बड़ा बेवकूफ है। ऐसे ही हमारे यहाँ ये व्यवस्था बनाई है, तत्त कामनाओं के लिए तत्त देवी देवताओं का उपयोग है। जैसे कि एक देश को चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं, एक प्रधानमंत्री है, एक वित्त मंत्री, एक रक्षा मंत्री, तरह तरह के विभाग बटे आवंटित हैं। ऐसे यहां पर भी देवताओं को उस चैतन्य विभाग बांट दिए हैं। यदि आपको विघ्न बाधा दूर करना है तो चंडी है, विनायक है, हनुमान जी हैं। धन प्राप्त करना तो लक्ष्मी जी की उपासना, ज्ञान प्राप्त करना तो भगवान शंकर की, ज्ञानम इच्छित शंकरात, स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो भास्कर की उपासना करें, सूर्य की एक वाक्य है, आरोग्य काम भास्करम यजेत, आरोग्य की कामना से भास्कर भगवान सूर्य की उपासना करें। यहाँ पर तत्त कामनाओं को लेकर तत्त उपासनाओं का विधान किया गया है, पर एक ही चैतन्य यहाँ पर दो नहीं है, यह भी एकेश्वरवाद है। अब समय पूरा हुआ, कल विचार करेंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 8.

0: நமஸ் சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நமஸ் சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தைத்திரியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஆனந்த அந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: பூமௌ ஸ்கலித் பாதானாம் பூமி ரேவாவலம்பனம். பிருத்வி பர் ஹம் கிர கே, तो गिरे कहां है? पृथ्वी पर. अब जहां पृथ्वी पर गिरे हो तो पृथ्वी को ही आप कोसते रहो, इस पृथ्वी ने गिरा दिया, ये दुष्ट है. लेकिन गिराया तो है, और वही पृथ्वी क्या है? कहा आपको उठाने में भी सहयोग करने वाली. तो भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम, आलंबन भी वही बनेगी. तो इसका मतलब सर्वथा हम शरीर का, संसार का, ये मिथ्या जरूर है. ये हमारे लिए जो है क्या है, के लिए हमारे आनंद की अवरोधक है, हमको गिराने वाली. लेकिन उसका सहयोग उठेंगे भी हम तो इसी के द्वारा. तो भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम, अवलंबन भी ये बनेगा, अवलंबन बनेगा, सहारा बनेगा, लेकिन मंजिल नहीं. इसलिए कहा कि जो ठोकर न खाए नहीं जीत उसकी, और जो गिरकर संभल जाए है जीत उसकी. निशा मंजिले ये पैरों के छाले, कहां जा रहा है वो जाने वाले. ये सारी की सारी हमारी जो मंजिलें हैं, जो हमने तय कर रखी है ना, जिनको हमने मंजिल समझा, वो सब क्या है? निशा रूप, अंधकार रूप, अज्ञान रूप. जिन्हें हम मंजिल समझते वो वास्तव में मंजिल नहीं. फिर आगे कहा, कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहां है? कभी ये विचार किया कि वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहां है? और आगे कहा, बहे से जहां में तेरा दर कहां है? ये संसार क्या है? प्रवाह रूप है. और इस प्रवाह रूप संसार में कभी विचार किया कि वास्तव में मेरा घर? और आगे संकेत कर दिया, इतना ही नहीं. तो अब जब ये सब स्थिति बतला दी, तो और कहने लगे कि बांधे थे बंधन क्यों तोड़ डाले हैं? तो अब क्या है, सारे हमने संबंध बनाए, लेकिन क्या कोई संबंध हमारा साथ देता है? जितने भी हमने संबंध बना लिए, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, मैं ज्ञानी हूं, इस प्रकार के जो है अपने विद्या और जो है बुद्धि के संबंध बना लेना, लेकिन ये कोई भी संबंध साथ देता और कोई भी मंजिल रूप नहीं है, तो ये जो है संकेत किया. इसलिए कहा, कहां जा रहा है हो जाने वाले, अंधेरा है दिल में दिया तो. दिवाली तो है, और किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी,

किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात क्या लिखा, दीपक तो जलाओ, हम लोग भी दीपक जलाते, दीपक जला लिए हैं, फटक्के चला लिए, मिठाइयां खा ली, दिवाली हो गई, लेकिन दिवाली का मतलब क्या? कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जाए। और कैसे दीपक जलाओ, संकेत किया,

न जाए, संकेत किया। हम लोग भी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान तो प्राप्त हो, ज्ञान का दीपक जले, हमारे जीवन में विद्या आए, हमारे जीवन में कला आए, लेकिन वो कला वो विद्या कैसी होनी चाहिए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर, और कहा नई ज्योति के धर नए पंख जिल मिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग। क्या सुंदर का, उसमें वह प्रकाश होना चाहिए जो हमने दीपक जलाया है। तो क्या होना चाहिए, तो कहने लगे वो प्रकाश वो होना चाहिए कि जिसके द्वारा हम जो है जिस पृथ्वी धरातल पर है नीचे पड़े हुए हैं, तो वहां से जो है वो प्रकाश हमको उठा करके क्या करे, गगन स्वर्ग छू ले, ऐसी ऊंचाई तक हमको ले जाने वाला हो, हमें उस उत्थान की तरफ ले जाने वाला हो, ऐसा प्रकाश ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में, तो उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छू ले। यह मर्त लोक की, तो मर्त क्या है, जहां मर धर्म जन्मना मरना है, पुनरप जननम पुनरप मरणम, तो इससे हमारी निवृत्ति हो, इस मृत्यु के स्थल से हम उठ जाएं, अर्थात हमारी मृत्यु न हो और मृत्यु न हो, और क्या है तो उस आकाश की असास गगन की है, उस चिदाकाश की हमें प्राप्ति हो, ऐसे दीपक हमारे जीवन में जलने चाहिए। तो जो हमारी पराधीनता है, जो सुख दुखों की श्रृंखला है, वो ही समाप्त हो जाए। और संकेत किया नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी है, ऐसा प्रकाश आ जाए कि वहां अंधकार जो है, उस अंधकार के होने पर भी वो अंधकार का है क्या है कि वहां अंधकार में तम प्रकाश जो है प्रवेश न कर पाए, माने वही मार्ग भूल जाए, अर्थात वो माने अंधकार हमें पराभूत, अज्ञान हमें पराभूत न कर। लेकिन होता क्या, संसार के अंतर्गत व्यवहार में जब हम लोग वर्तते हैं, और व्यवहार में वर्तते हैं, तो आप देखते हो दो भाई हैं, भाई भाई में क्या व्यवहार होना चाहिए, और भाई भाई में जब वो व्यवहार होता है तो दोनों सुखी होते हैं, लेकिन वहीं अज्ञान को लेकर के जब राग द्वेष आ जाता है तो भाई भाई को मारने को तैयार। इसलिए संकेत किया कि वो तम हमारे में न आ पाए, ऐसी रोशनी हमारे जीवन में आए, ऐसा ज्ञान हमारे जीवन में आए कि जिसको लेकर के वो तम ही मार्ग भूल जाए, और जब वो मार्ग भूल जाएगा तो राग और द्वेष आएगा नहीं। और इसी को भगवान कहते राग द्वेष भी युक्त इसु विषयान इंद्रिय स्तम, जीवन में जियो लेकिन कैसे जियो, तो राग द्वेष से रहे, तो जितना भी उपद्रव होता है वो सब किसको लेकर के होता है, राग और द्वेष को लेकर। तो लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का है वह कृण द्वार जगमग, उसा जा न पाए निशा। वो ज्ञान हमारे से अलग न हो, वो ज्ञान हमारे में सर्वदा बना रहे, वो इस प्रकार की जब स्थिति बनी रहेगी तब ये जो है हर्षित भय गए सब सोखा, ये बात होगी तभी सारा संसार प्रसन्न होगा, चारों तरफ आनंद की स्थिति होगी। और जब तक ये नहीं होता है तो हम दीपक तो जलाते रहें लेकिन फिर भी अंधकार मिटने वाला, तब तक वो दिवाली हमारे काम आने वाली नहीं। तो दीपावली का लक्ष्य क्या है वो हम समझें। और आगे तो बड़ा सुंदर उस कवि ने लिखा, सृजन है अधूरा अगर वे सुभर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी,

न जाए। क्या कल्पना, सृजन है अधूरा। आप जो अपने को कर्मयोगी मानते हो, तब तक आपका कर्म अभी अधूरा है। किसका? मानव का। सृजन है अधूरा, तब तक आपकी सृष्टि, आपका कर्तव्य है जो आपाधापी चल रही है, वो सब तब तक निरर्थक है, न्यून को प्राप्त है। सृजन है अधूरा, अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। यदि कहीं पर भी शारीरिक दृष्टि से ले लो, यदि किसी भी हमारी इंद्रिय के अंतर्गत बेचैनता है, तो समझ लेना अभी जो है हमने अपने में ठीक ज्ञान नहीं कर पाया और ठीक ढंग से अपने को नहीं समझ पाए, और तभी हमारे अंदर कहीं ना कहीं विक्षेप और दुख बैठा। और ऐसे ही समष्टि की दृष्टि से सृजन है अधूरा, अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। और कहने लगे, मानव जीवन की सार्थकता मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, तब तक मनुज शब्द का प्रयोग कर दिया, मनुजता, तो मनुज क्यों है, क्या है, तो मनोरपथ्यम इति मानवा भी बनता है, भौसी मनोर जाता है तो मनुजा बनता। तो जिस मन से, जिस अंतःकरण से तुम्हारा उदय हुआ है, तो ज्ञान भी उसी से उदय होता है। और जो मनु पूर्व में कह दिए गए, जो ब्रह्मा के पुत्र आदि, लेकिन उन मनु की स्थिति क्या थी, जिससे सारी सृष्टि को माना गया, वही मनु सतरूपा भी कहा गया और मनु श्रद्धा भी कहा गया, जो कामायनी आदि ग्रंथ हैं हिंदी के, उनमें आता, उनसे सारी सृष्टि को स्वीकार किया गया। लेकिन वो मनु ने जब सृष्टि की तो कैसे की, तो तप पूर्वक, यज्ञ पूर्वक। और तप किया तो मनु ने कैसा तप किया, तो रामायण में आप सुनते हो, ठाड़े रहे एक पग दो ऊ, इतना तप किया मनु और शत्रुपा ने मिलकर के कि दोनों जो है एक पग पर खड़े रहे। और जब एक पग पर खड़े रहे तो भगवान आए, और भगवान ने जो है उनको जो है उनके तप का फल देने के लिए कहा, वरदान के लिए कहा, तो उन्होंने क्या मांगा, तब समान शुत, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। अब जब ये कहा तो कौन आ गया, स्वयं भगवान ही आ गए। लेकिन ये कब हुआ, उसी समय नहीं हुआ, ये फल उसी समय नहीं मिला, कब मिला, तो मनु, तो मन को आप क्या कहते, मन समय दृष्टि की दृष्टि दे रहे हो, तो हमारा मन ही मनु है, इसके बगैर सृष्टि नहीं होती। और मनु के साथ में रहने वाली उनकी धर्मपत्नी कौन है, सतरूपा है, सततः रूपाण यस्य सा सतरूपा, सैकड़ों है रूप जिसके, मन की जो वृत्ति है उसका कोई एक रूप, तो मन की वृत्ति ही क्या है, सैकड़ों रूप। लेकिन जब वही मन क्या करता है, तप करता है, और तप करता है तो तप करने के समय जो सतरूपा उसका साथ देती है, वो वृत्ति भी उसका साथ देती, और वृत्ति जब साथ देती है तो दोनों क्या होते हैं, ठाड़े रहे एक पग दो, अब उनके अंदर विविधता नहीं, एक में स्थित हो जाते हैं, एक रूपता आ जाती है। और जब एक रूपता आ जाती है तभी उन्हें मनु और श्रद्धा कह दिया जाता, तब वो सत्य को ही धारण करने वाले होते। तो श्रुत दधानाति श्रद्धा, जो सत्य को ही धारण करने वाली वृत्ति है उसी का नाम है श्रद्धा। और जब ये जीवन में आता है तो फिर दूसरे जन्म में वो क्या हुए, राजा दशरथ बने मनु, और जो है तीन उनकी रानियां हुई, माने तीन वृत्तियां हुई। वो कौन सी वृत्ति, तो कौशल्या ज्ञानात्मिका और कैकेयी क्रियात्मिका और सुमित्रा उपासना। और दशरथ अर्थात इंद्रियों पर जो है संयम रखने वाले ऐसे राजा दशरथ हुए। फिर उनके यहां कौन आए, तो चारों पुरुषार्थी आ गए, मुदित अवधपत है, सकल सुत बदुन समेत निहार, जनु पाए महिपाल मन है, क्या है जन, क्रियन सहित फल चार, ये संकेत कर दिया। तो ये श्री, तो कहने का तात्पर्य है
कि यहां पर भी जो कह रहे हैं कि मनुष्य का अर्थात मनुष्य की सार्थकता क्या है, हम अपने पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर लें और प्रसाद चतुष्टय जब हमको प्राप्त हो जाते हैं तभी मानव जीवन की सार्थकता होती है। ऐसा नहीं कि कोई यदि छूट जाए तो बात नहीं बनेगी, चारों ही पुरुषार्थों की प्राप्ति होनी चाहिए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों ही उपादेय, लेकिन परम उपादेय कौन है तो वो है मोक्ष, इसकी चर्चा भी कर रहे। अब जो है यहां पर इस प्रकार से मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, तब तक जो है मानव की मानवता सार्थक नहीं है। यदि जरा भी कहीं पर है क्या है उपद्रव खड़ा हुआ है राग देश को लेकर के, तो अपने ही अंतर्द्वंद चलता रहता व्यक्ति के अंदर ही क्या होता अंतर्द्वंद, और जब तक उसके अंदर संकल्प विकल्प अंतर्द्वंद चलता रहता है तब तक उसके जीवन में शांति होती। अशांति हमारे जीवन में तभी होती है जब हमारा संकल्प मात्र रह जाता है और विकल्प ही समाप्त, या उन संकल्प और विकल्पों में राग और द्वेष निकल जाता है, उसमें केवल एक ही प्रकाश होता है, तो जो है वहां पर हमको शांति होती है, और यदि ऐसा नहीं तो शांति भी नहीं। इसलिए कहा सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के। अब आपने कुछ इंद्रियों को तो बस में कर लिया और कुछ इंद्रिय अभी जो है बस में नहीं हुई, तो तब तक क्या है, तब तक शरीर में युद्ध चलता, तब तक उपद्रव। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय के अंतर्गत आपकी वह बोलता, तो इसीलिए आत्मानम रथिनम विद्धि जो संकेत उपनिषद ने किया, उसी क्योंकि हम आत्मा के अनुसार हमारी बुद्धि हो, उस मणि को लेकर के बुद्धि चले और बुद्धि के अनुकूल मन रहे और मन के अनुकूल हमारी इंद्रियां रहें, और ये होगा तो राम राज्य, तो वहां प्रसन्नता हमेशा रहेगी। इसलिए यही मनुष्य का धर्म है, यही मानव जीवन है। इसलिए कहा मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लोहू के लिए भूमि प्यास, चलेगा सदा नाश का खेली हुई, और तब तक ये जन्म मरण का श्रृंखला जो है वो समाप्त होने वाली नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। तो चलेगा सदा नाश का खेली हुई भले ही दिवाली, तो हम ज्ञान हम आपको बताएं, आप हमको बताओ, बड़ी शिक्षाएं चल रही हैं, नई नई शिक्षाएं निकाली जा रही, लेकिन हम खड़े कहां, हम वहीं के वहीं। इसलिए संकेत किया कि वह ज्ञान होना चाहिए, वह दीपक हमारे जीवन में आना चाहिए जो हमारे अंधकार को मिटा करके और हमें एक मानवता प्रदान कर सके, और मानवता प्रदान जब हमारे में होगी तभी हम सब सुखी हो पाए। ये संकेत, और इतना ही नहीं कहा, आगे और बड़ी सुंदर बात कही।

0: अकेला कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जवो स्वयं धर्म मनुज दीप का रूप आए जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो क्या संकेत किया, कहा केवल दीपक की दीप्ति से काम चलने वाला, अर्थात केवल हम एक विषय का ज्ञान प्राप्त कर लें उससे भी काम चलने वाला, मगर दीप की दीप्त से सिर्फ जग में, और जो है सारे विषयों का ज्ञान कर लें का तो भी चलने वाला नहीं है। उतरन क्यों ना आवे नखत सब गगन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा, ये तब तक प्रकाश हो सकता नहीं, ये कब होगा। तो कहने लगे कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी, इस अज्ञान की निवृत्ति तभी हो सकती है जब क्या है स्वयं धर्म मनुज दीप का रूप, सारे मनुष्यों के अंतर्गत ये आत्मसत्ता का ज्ञान जब हो जाता है और एक आत्मसत्ता को जब देखने लगते हैं तो सर्वत्र जो है समदृष्टि, तब क्या होता है। तो भगवान जो गीता में कहते हैं आत्मउपमेन सर्वत्र शमम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो, वो कहा योगी नहीं कौन है, कहा जो व्यवहार में समत्व को धारण करने वाला है, ऐसा जो ज्ञान रखने वाला है, ऐसे जो अपने बुद्धि रूपी दीपक को जलाने वाला है। तो कहने लगे उसके लिए तो फिर क्या है, सुख दुख में जब सम हो गया तो वो योगी नहीं परम योगी है। गुफा में बैठ करके, मंदिर मस्जिद में बैठ करके समाधि लगाने वाला, एकांत स्थल में बैठ करके समाधि लगाने वाला योगी होगा, लेकिन ये कौन है, कहा ये योगी नहीं है, ये तो परम योगी, मैंने उस योगी का भी योगी। तो ये संकेत कर दिया, तो ये कब होगा, तो तब। सच तो ये है भारतवर्ष की संस्कृति, इसलिए क्या कहा गया, गायंत देवा किल गीत कानी धन्यासुते भारत भूमि भागे। संकेत किया देवता लोग जो है भारतवर्ष की का जो है गाथा गाते, अमेरिका की क्यों नहीं गाते, जापान की क्यों नहीं गाते, ये प्रश्न आप कर सकते हो कि वो तो बहुत विकास, कहा विकास तो उन्होंने किया लेकिन वो विकास सारा कहां है, कहा भटकने में ही है, वो विकास है लेकिन जो है जिस उत्थान को प्राप्त होना चाहिए वो उत्थान उनको प्राप्त, वो संस्कृति कहां थी, भारतवर्ष में थी, इसलिए भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है उसके वो गीत का गायंत देवा किल गीत कानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे। ये संकेत स्वर्ग अपवर्गा करके आगे भी संकेत कर दिया। तो ये क्यों, क्योंकि यहां की संस्कृति ही बड़ी उदात्त संस्कृति हमेशा रही, आज हम उस संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हमारे रीत रिवाजों में दैनिक चर्या में हमारी संस्कृति को बांध दिया गया था, जिसके अंदर एक वैज्ञानिकता भी थी। वैसे तो मास दिन पुराणों में आप देखो मास भी बड़े सोच समझ के नाम रखे गए, जैसे आप ज्वेलस स्मिथ के नाम से जो है पाश्चात्य लोगों ने जौलाई नाम रख दिया, उनके ऐसे नाम पड़े, लेकिन आपका उसी जिसे जौलाई आदि कहते वो हमारे यहां शुरू हुई हुआ श्रावण, क्या हुआ, और श्रावण का मतलब क्या, तो पहले ये साधन नहीं थे, ऋषि लोग घूमते थे विचरण करते थे और जब वर्षा ऋतु आ जाती थी तो एक जगह रह के चातुर्मास किया, अब तो फॉर्मलिटी होती है ना, चातुर्मास में नियम था कि हम उस परमात्मा का अनुष्ठान करते थे और सब शास्त्रों का श्रवण और मनन करते, इसका नाम था चातुर्मास। तो इसलिए श्रवणे भवायति श्रावण, श्रवण से होने वाला जो मास है उसी का नाम है श्रावण, और जब श्रवण करेंगे तो विवेक होगा, और विवेक होगा तो विवेक के अनुसार जो है आगे हम फिर उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे, इसलिए आगे रखा था कि जो कल्याण का मार्ग है उस कल्याण के मार्ग पर हम चलें, तो भाद्रपद रखा था, क्या रखा था, भद्रे भवायति भाद्र, तो भाद्रपद माने जिस मार्ग का हम अनुसरण करें वो हमारा कल्याण का मार्ग हो, और फिर भी जब कल्याण के मार्ग में चलते कोई ना कोई अवरोध आ जाते तो आश्विन मास को करके दे दिया, और अवरोध आ जाते हैं, वर्षा भी होती है तो वृक्ष गिर जाते हैं, रास्ते रुक जाते हैं, तो क्या करना, तो आगे कार्तिक मास आया था, क्रंति कतरनी अर्थ में धातु, कहा जो मार्ग में अवरोध आ गया जिसे गीता में भी संकेत किया उसे काट डालो, ये कार्तिक मास था, ये महीनों के नाम भी बड़े सोच के रखे, और उस कार्तिक मास में जब आपका विघ्न समाप्त हो गया तभी तो दिवाली आएगी, और वर्षा ऋतु से जो जीव जंतु वो भी सब वैज्ञानिक रूप भी था, लेकिन उसकी चर्चा करने समय फिर ज्यादा हो जाए। तो इस प्रकार से कार्तिक आदि मास दिए गए थे और उसी कार्तिक में फिर दीपावली की बात कही गई थी, जिसमें दीपक जलाने पर हैं सारे जो कीटाणु रह भी जाते हैं सफाई करने के बाद, और तो क्या होता कहा वो दीपक की लौ के पास आते हैं और वो भी जल करके, ये सब बहुत शोध करके रखा गया था। और उसके बाद आगे अगहन शब्द आता है, मने कहने लगे इतना करने के बाद भी यदि कोई पाप रह जाए, कोई विरोध बीच में आ जाए, तो कहा उसका भी हनन कर दो, और उसका भी हनन कर दो तब क्या होगा, तो पौष मास आया, तब जो है जब सारे पाप तुम्हारे निवृत्त हो गए, सारे विघ्न निवृत्त हो गए, तो जीवन में पुष्टि आती है, हैं पूसे भवायति पौष्य, तब हमारे जीवन में पोषण होता है। और फिर भी अब जो है ध्यान रखना माघ, माने नहीं अग माने पाप, अब आगे कोई पाप या कोई अशोक मार्ग का अनुसरण नहीं करना। और तब जब आ जाएगा फिर क्या करना, तो आगे फाल्गुन शब्द, फल्गु शब्द का अर्थ होता व्यर्थ, तो फल्गु का क्या करो, तो कहने जला दो उसको, इसलिए होली रखी गई थी, है ना, फाल्गुन माने वो जो भी फल्गु अब जो व्यर्थ है उसको जला डालो। और भी उसके वैज्ञानिक अर्थ है अन्य विद्यार्थि को लेके, और तब क्या आएगा, जब जो व्यर्थ था तुम्हारे पास पड़ा हुआ उसको भी जला दिया, तब कहने लगी तब नई चेतना आती। ऋतु भी यही संकेत करती, वसंत ऋतु सारे पतझड़ों को वृक्ष छोड़ देते हैं, प्रकृति भी संदेश देती है और उसमें एक नई चेतना आती है। और इसी प्रकार से है चैत्र शब्द ही उसको रखा गया, माने नई चेतना आती है। और जब नई चेतना आ गई तो नई चेतना भी किसका आश्रय ले, वैशाख, वही है सवई श्रेष्ठा सवई ज्येष्ठा, जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को क्या करो, वैशाखी कहते ना सहारा, उसी को अवलंब बनाओ, अब अन्य को अवलंब नहीं बनाओ। और जब ये करोगे तो क्या होगा, आषाढ़ आसमंता साढ़यति आनंदयति इति आषाढ़, तब जीवन में सम्यक रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। ये सारे के सारे थे, तो इसलिए चर्चा कर दी दीपावली के कारण। तो हमारे जीवन में भी दीपावली का वास्तव में क्या रूप है, कि राम राज्य जैसे हुआ वैसे ही हमारे जीवन में भी सबके जीवन में सुख आए, और वो कब आएगा तो मानवता, और वो मानवता कब आएगी कि हम सबको ज्ञान दें और हम स्वयं भी ज्ञान के अनुसार चलें और दूसरों को भी ज्ञान के मार्ग से चलाएं। वास्तव में तो समाज शब्द हम लोग बोलते हैं, पार्टियां भी बनी है समाजवादी पार्टी है आर्य समाज क्या क्या, लेकिन समाज शब्द का अर्थ क्या, समम सह यजंत यत्र स समाजा, किसी भेड़ों के इकट्ठे होने के नाम का को लेकर के समाज नहीं कहा जाता, जहां पर सब ज्ञान पूर्वक मिलकर एक साथ चलें उसका नाम है। तो ये सारे उपदेश हैं, अब ज्यादा चर्चा न करते, ओम सचिद
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

पूर्वम पूर्वियम सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्मा पूर्वियम तत्र योनिम् कृणवसे नहि ते पुर्त मक्षिपात। अब कहते हैं, पहले आपको बतलाया कि तीन प्रकार के क्या अग्नियाधान और सोम समाधि कहाँ ध्यान कहाँ करना चाहिए बताया था। आनी बस अभी समाधि लगाने की तरीका बता रहे हैं। सवित्रा प्रसवेन, सवित्रा यहाँ तृतीयांत है, सविता शब्द है, सविता सविता सूर्य को भी कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं। तो सवित्रा प्रसवेन, सविता माने सविता देव आदित्य भगवान सूर्य नारायण। तो सविता देव प्रसवेन, सवित्रा देव के द्वारा प्रसवेन माने उत्पन्न करने से। तो यहाँ क्या, सवित्रा देव के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके, हमने पहले प्रार्थना किया है ना, ध्यान करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की गई, अनुज्ञा लिया, अनुज्ञा लेकर के देवताओं से अनुज्ञा लेकर के ध्यान में बैठा। तो सवित्रा प्रसवेन पूर्वम ब्रह्म जुषेत, पूर्व माने पहले, पूर्व शब्द आया, पूर्वीय वेद का मंत्र होने से पूर्वीय उच्चारण करने के लिए, वेद का मंत्र जो हो ना डबल डबल उच्चारण करना पड़ता, याद रखना पूर्वीय पहले बाप।